0: पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

0: 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 100.7 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारे शेष रहे कार्यक्रमों की जानकारी। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना प्रसारित किया जाएगा 6:00।

बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम प्रसारित किया जाएगा सुबह 8:30 से। सुबह 9:00 हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से रिले करेंगे। सभी शहरों में देशगान आप सुन सकते हैं सुबह 9:10 पर। कार्यक्रम धारा की पुकार का प्रसारण किया जाएगा सुबह 9:15 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे निशा की वार्ता, विषय रहेगा जलवायु परिवर्तन। ईमेल्स पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकते हैं सुबह 9:30 से। देश की सुरीली धड़कन यानी विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे सुबह 10 बजे से। दिन में 11:05 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत प्रसारित किया जाएगा। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं दिन में 12:00 से। हमारे केंद्र से ही दिन में 12:30 पर राजस्थानी लोक रचनाओं का दैनिक कार्यक्रम माटी के स्वर प्रसारित किया जाएगा। माटी के स्वर कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार होंगे उमेश सिंह सैनी और साथी। दिन में 1:00 हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से रिले करेंगे। महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला जगत का प्रसारण किया जाएगा दिन में 1:05 से। आज के कार्यक्रम की थीम रहेगी फिटनेस फ्राइडे। चर्चा के विषय रहेंगे हौसले और विफलता कैसे जीवन को आगे बढ़ाती है। समय समय पर स्वास्थ्य जांच है जरूरी। सामयिक विषय के अंतर्गत चर्चा

हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। साथियों, आज चिंतन कार्यक्रम में बात कर्तव्य पालन के बारे में। कर्तव्य पालन का अर्थ है अपनी जिम्मेदारियों, नैतिक मूल्यों और कार्यों को निष्ठापूर्वक करना। यह न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में जहाँ हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं, वहीं हमारे अधिकार भी हैं। लेकिन अधिकारों के बारे में सोचने से पहले हमें हमारे कर्तव्यों के बारे में गहराई से विचार करने की आवश्यकता है कि समाज के प्रति, परिवार के प्रति और अंततः हमारे देश के प्रति हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं और उनका निर्वहन हम किस तरीके से कर रहे हैं, किस मात्रा में कर रहे हैं या कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि कर्तव्य का पालन जो है वो हमें जिम्मेदार बनाता है और समाज में एक साख, एक इमेज जो बनती है वो इसी पर निर्भर करती है। कोई भी व्यक्ति जब एक संतुलित जीवनचर्या का यापन करता है, अनुशासन की पालना करता है, तो वो अपने देश, अपने समाज के लिए और साथ ही साथ अपने परिवार के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका

ईमानदारी से करना ही सबसे बड़ा धर्म है और यही हमारे जीवन को सुखमय बना सकता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, इसका प्रसारण आकाशवाणी के चूरू केंद्र से किया गया। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:15 हो चुके हैं। यह समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। वंदना कार्यक्रम में हमारी आज के कलाकार हैं MS सुबू लक्ष्मी।

भक्ति संगीत का वंदना कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इसमें हमारी आज की कलाकार थी एमएस सुबू लक्ष्मी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के चूरू केंद्र से किया गया। एफएम बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 स्टूडियो के घड़ी में हो चुके हैं। ये समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत बहार का। तो आइए सुने गीत बहार।

कार्यक्रम की शुरुआत में यह है मोहम्मद रफी फिल्म दर्पण में। शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की।

0: जानवर फिल्म के गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
0: अंतराल के बाद गीत बहार कार्यक्रम में सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत।

हसीन हो तुम खुदा नहीं हो, तुम्हारा सजदा नहीं करेंगे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बदतमीज़ फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।

देखा है सभी ने चांद को, मोहम्मद रफी की आवाज में दिल ने पुकारा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा था इंदिवर ने और संगीत रचना थी कल्याण जी आनंद जी की। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार आप इस समय आकाशवाणी के चूरू केंद्र से सुन रखे हैं, FM बैंड के 100.7 मेगा।

मैंने चांद देखा है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में वो दिन याद करो फिल्म का गीत अभी आपने सुना, शब्द रचना आनंद बख्शी की।

कैसे समझाऊं ये नाजुक सा फसाना तुमको, ये वो मंजर है जो महसूस हुआ करता है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दुनिया फिल्म का गीत अभी आपने सुना। शदरसना थी हसरत जयपुरी की और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। दुनिया फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हो चुके हैं। ये समय है कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान का। एपिसोड नंबर है 376।

मेघनाथ के नागपाश में अपने को बंधा लेना श्री रामचंद्र की एक रणलीला थी। महर्षि नारद द्वारा भेजे जाने पर गरुड़ ने वह नागपाश तो काट डाला, किंतु उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि जो व्यापक विकार रहित और परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, वह ऐसे पाश में किस प्रकार बंध सकते हैं। अपनी शंका के निवारण के लिए पक्षीराज महर्षि नारद के पास पहुंचे। नारद जी ने उनके मोह का रहस्य ताड़कर उन्हें ब्रह्मा के पास भेज दिया, जिन्होंने संपूर्ण जगत की रचना की है। स्वयं उन ब्रह्मा को भी तो माया के प्रभाव में परमेश्वर ने कई बार नचाया है, अतः वह क्या कहते। उन्होंने गरुड़ को भगवान शंकर के पास जाने का परामर्श दिया, क्योंकि शंकर जी ही श्री राम की महिमा को भलीभांति जानते।

श्री रामचरितमानस गान के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आज का प्रसंग। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के चूरू केंद्र से किया गया। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। सुबह के 7:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

तो साथी, सुरीली पेशकश के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अलग अलग विषयों के ऊपर, अलग अलग टॉपिक के ऊपर इस कार्यक्रम में चर्चा की जाती है। इस बात से आप भली भांति वाकिफ है साथियों, टॉपिक कोई भी हो, चर्चा का विषय कोई भी हो, लेकिन उन सब की अपने जीवन में पूरी पूरी अहमियत होती है, उन सब का जीवन में बड़ा महत्व होता है। जिन विषयों को हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं, जिनके बारे में हम कुछ ऐसी बातें भी बताने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में हो सकता है कि हमारे कुछ साथी अपरिचित हो या उन्हें पहले से इसके बारे में जानकारी न हो, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए तमाम तरह की अच्छी आदतों का विकसित होना बेहद ज़रूरी है। उनसे हमें बड़े फायदे होते हैं। सबसे पहले तो जीवन में हम जो कुछ बनना चाहते हैं या हम कुछ भी लक्ष्य अपने लिए डिसाइड करते हैं, कुछ भी हम पाना चाहते हैं, वो तभी संभव है जब हमारी आदतें अच्छी हो, हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वो तमाम कार्य करें जो हमें कुछ बनने के लिए जरूरी है, और उनमें अच्छी आदतें एक ऐसा मंच हमें उपलब्ध करवाती है कि हम हमारे लक्ष्य को आसानी के साथ, सुगमतापूर्वक और यकीनन हासिल कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी बातें आती हैं साथियों। एक बात जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं वो है डायरी लिखना। डायरी लिखने का भी जीवन में बड़ा महत्व है, इसके बहुत सारे फायदे हैं और हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो नियमित रूप से ऐसा करते हैं, सालों से ऐसा वो करते आ रहे हैं, और उस डायरी लिखने के फायदे वो ही अच्छे से जान सकते हैं जिन्होंने इस काम को बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। हो सकता है हमारी आज की युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी जो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट डिवाइस में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, ज़्यादा महत्व देती है, उनको ये बात थोड़ी सी अजीब लग सकती है कि डायरी लिखना क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन साथियों, अभी वो अपने प्रोग्रेस की अवधि में हैं, उनका भी विकास हो रहा है, शारीरिक रूप से विकसित हो रहे हैं, मानसिक रूप से भी विकसित हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, समय के साथ साथ सारी चीज़ें, सारी बातें, सारी अच्छी आदतें उनके भी समझ में बखूबी आ जाती है। इसलिए डायरी लिखने का महत्व है, चाहे उन्हें आज ऐसा कुछ विशेष ना लग रहा हो, लेकिन समय के साथ वो भी इस बात को समझ जाएंगे। तो साथियों, इसके फायदे क्या क्या हैं ये हम जानते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमारे साथी भली भांति जानते हैं, लेकिन कई बार कुछ अच्छी बातों को रिपीट भी करना चाहिए। जैसे अगर मान लो कोई हमारा साथी थोड़ा सा लापरवाह हो रहा है, थोड़ा सा ये है कि आजकल चलता है ना साथियों, जब हमें कुछ नया शुरू करना होता है तो हम थोड़ा सा उसमें ढील देते हैं कि आज से नहीं, कल से नहीं, परसों से। ये कोई भी अच्छी आदत के लिए ये बात लागू हो सकती है। इसलिए आज कल परसों इसको टाल दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अगर वास्तव में सच्चे मन से कोई काम करना चाहते हैं, कोई अच्छी आदत को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो यही समय है, सही समय है, इसके ऊपर अमल कीजिए। वो अच्छी आदत कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसे टालना तो कतई नहीं चाहिए। आप जहाँ खड़े हैं, जिस स्थिति में हैं, वही स्थिति, वही समय सबसे शुभ माना जाता है किसी भी कार्यक्रम की या किसी भी योजना की शुरुआत के लिए। इसलिए किसी अच्छे समय, किसी

0: अच्छे टाइम की कल्पना या उसका इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए। शुरू कर दीजिए जहाँ हैं आप, जिस स्थिति में हैं, जो करना चाहते हैं, जो अच्छी बात आपको जीवन में उतारनी है, ढालनी है, उस पर अमल शुरू कर दीजिए। उसमें डायरी लिखना भी एक आदत हो सकती है। मानसिक स्पष्टता, तनाव कम करने और खुद का मूल्यांकन करने के लिए डायरी लिखने से बेहतरीन कोई आदत हो ही नहीं सकती। इससे आप छोटी शुरुआत के रूप में शुरू कर सकते हैं, जैसे प्रतिदिन महज 5 मिनट के लिए डायरी लिखना, सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि शुरुआत हमेशा छोटे छोटे कदमों से की जाती है। पहले ही दिन आप 1 घंटे की डायरी लिखेंगे तो फिर कभी नहीं लिख पाएंगे, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़िए और शुरुआत चाहे 5 मिनट से ही कीजिए। उसका भी एक समय तय कर लीजिए जो आपको सबसे सूटेबल हो, जो सबसे सही लगता हो। सुबह जल्दी आप उठते हैं, उठ पाते हैं, तो वह समय अच्छा रहता है। उस समय आपको समय नहीं मिलता, दिन की भागम भाग में समय नहीं मिल पाता, कोई बात नहीं है। रात को सोने से पहले 5 मिनट 10 मिनट अपनी सहूलियत, अपनी सुविधा के हिसाब से तय कीजिए। लेकिन एक बार जब आप कोई समय तय कर लेते हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि उसी समय पर प्रतिदिन वो काम किया जाए। कोई भी काम हो सकता है, कोई भी अच्छी आदत हो सकती है, उसे हम जब जीवन में उतारते हैं तो हमें उसका एक समय निर्धारित करना चाहिए। हमारी सुविधा के हिसाब से, हमारी जो लाइफस्टाइल है, भागम भाग भरी इस जिंदगी में जितना भी समय मिल पाता है उसमें भी कोई एक समय तय कर लीजिए और उसी टाइम पे प्रतिदिन उसी नियत समय पर वो काम करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो चीज़ आपकी आदत में शामिल हो चुकी है, उसको फिर आप भूल नहीं पाते हैं। जैसे ही वो समय होता है आप उस काम के लिए अपने आप तैयार हो जाते हैं, आप मानसिक रूप से भी तैयार रहते हैं। इसलिए अच्छी आदत जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, उसका समय निर्धारित कीजिए और प्रतिदिन उसका पालन अनुपालन सुनिश्चित कीजिए। कोई इमरजेंसी, कोई आपातकालीन स्थितियां अपवाद स्वरूप होती है, उसे छोड़ दीजिए, उसको हम मान लेंगे। लेकिन ऐसे ही लापरवाही में कभी भी अपनी अच्छी आदत उसको है वो ना छोड़े। बात हम कर रहे थे डायरी लिखने की, तो उसका समय तय कीजिए प्रतिदिन, चाहे 5 मिनट 10 मिनट, और किस समय सुबह या रात को सोने से पहले या जो भी आपकी सुविधा का समय हो, और बिना किसी पूर्वाग्रह के, मन में कोई भी प्रकार की, क्योंकि ये आपका निजी लेखन होता है पूरी तरीके से, आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसे शब्दों में उतारने की कोशिश कीजिए। यह न केवल भावनाओं को समझने में मदद करता है बल्कि स्मृतियों को, यादों को संजोने का सबसे बेहतरीन तरीका भी होता है। इसकी शुरुआत जो है वो आप छोटे छोटे कदम उठाकर कर सकते हैं। रोजाना 10, 15, 20 मिनट या सिर्फ 5 मिनट लिखकर आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके लिए है, ये आपके निजी विचार हैं, इसलिए जो महसूस कर रखे हैं वो ही लिखे। जी साथियों, जो मन में चल रहा है, दिलो दिमाग में जो बातें चल रही हैं उसे लिखिए। किसी भी प्रकार की ग्रामेटिकल मिस्टेक या आपकी हैंड राइटिंग कैसी, इस पर कतई न जाए, बिल्कुल भी इस बात की चिंता न करें। बस जो भी दिलो दिमाग में चल रहा है उसे शब्दों में ढालिए, उतारिए। केवल घटनाओं को न लिखें, उनके बारे में अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, कोई भी घटना हुई जीवन में, आपने कुछ भी देखा, सुना, समझा, उसके प्रति आपके पर्सनल ओपिनियन, आपके व्यक्तिगत विचार क्या हैं वो अवश्य लिखिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उसकी चूक आपसे ना हो जाए। सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन चीजों को जरूर लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। हम जीवन में किसी न किसी के आभारी होते हैं, कोई हमारी मदद करता है, किसी भी प्रकार तन मन धन से मदद करता है, या सिर्फ कई बार तो कोई हमारी हौसला अफजाई करता है, हमारे उत्साह को बढ़ाता है, तो और उनके प्रति हम दिलो दिमाग में कृतज्ञ भी होते हैं, आभारी भी होते हैं, तो उनको जरूर जरूर लिखिएगा। यदि बहुत कुछ लिखना पसंद नहीं है तो लिस्ट बना सकते हैं आप, अगर विस्तार से न लिख पाए, और इसे पूरी तरह से, चूंकि ये निजी मसला होता है इसलिए आप वो सारी बातें जरूर लिखिए जो आप महसूस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें साथियों जीवन में ऐसी घटित होती है जिन्हें हम किसी के साथ साझा नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें डायरी में जरूर उतार सकते हैं। डायरी लिखना मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविकास और हमारी याददाश्त को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका होता है। ये विचारों को स्पष्ट करता है, तनाव कम करता है, लक्ष्यों की समीक्षा समय समय पर करता रहता है। कड़वाहट या भावनाओं को बिना किसी झिझक के व्यक्त करने में हमारी मदद करता है। जब आप अपने डर, चिंता या गुस्से को लिख देते हैं कहीं पर, तो इससे मन का गुबार जो है वो निकल जाता है और मन हल्का हो जाता है। आप बहुत ही शांत चित अनुभव करते हैं। दैनिक घटनाओं को और अपनी प्रतिक्रियाओं को लिखकर आप खुद को, अपनी भावनाओं को और अपने व्यवहार का जो पैटर्न है उसको बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं। अपने लक्ष्यों और उन तक पहुंचने की प्रगति को नोट करने से आप प्रेरित रहते हैं और अपने समय का बेहतर प्रबंधन भी कर सकते हैं। डायरी लिखना पुराने अनुभवों, सीखों और महत्वपूर्ण घटनाओं को याद रखने का एक स्थायी, एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है। बिना किसी रोक टोक के लिखने से नए विचारों और कल्पनाओं को भी विकसित करने में बड़ी मदद मिलती है। जब आप अपनी पुरानी डायरी पढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप पहले भी बड़ी से बड़ी समस्याओं से निपट चुके हैं, जो आपको वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देती है। डायरी लिखना आपको एक ईमानदार और चिंतनशील व्यक्तित्व बनने में मदद करती है। इसलिए थोड़ी थोड़ी ही लिखना शुरू कीजिए, लेकिन लिखें जरूर।
1: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ,
2: नए सत्र में पहले 100 प्रवेश पर फीस में 25% की छूट।
1: कृषि, विज्ञान, कॉमर्स व कला सभी विषय उपलब्ध।
2: बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति।
1: अनुभवी स्टाफ, सुरक्षित वाहन सुविधा और शानदार परिणाम।
2: हजारों छात्र आज सरकारी सेवाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में।
1: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ 9413360977।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: अंतराल के बाद सभी सुरीले साथियों का कार्यक्रम नमस्कार चूरू में एक बार फिर दिल से स्वागत। साथियों, स्वस्थ जीवन हम सब की तमन्ना होती है। हम सब चाहते हैं कि हम पूरी तरह से फिट रहें, फिजिकली भी और मेंटली भी, और जीवन के तमाम सुखों का हम उपभोग करें, आनंद के साथ हम जीवन जिए, और हम ऐसा करते भी हैं। बहुत सारे हमारे साथी इसके लिए जी तोड़ परिश्रम भी करते हैं, क्योंकि साथियों कुछ पाने के लिए कुछ करना जरूरी होता है। हम सिर्फ इच्छा करें कि हम स्वस्थ रहें तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते, इसके लिए हमें बहुत सारे प्रयत्न करने होते हैं। और बात वही आ जाती है नियमितता की, कि नियमित रूप से करने होते हैं प्रयास, तभी उसके फायदे मिल पाते हैं। आप 5-7-10 दिन कोई अच्छा काम करते हैं या 5-7 दिन कोई गलत काम करते हैं, तो न तो इतने अल्प अवधि में किए गए काम का कोई फायदा होता है, न ही इतने अल्प अवधि में किए गए किसी बुरे काम का कोई बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हमें नियमितता को अपनाना होगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसे ही अनुशासन कहा जाता है। जब हम पूरी तरह से अनुशासित होकर किसी काम को तन्मय होकर करते हैं, उसके फायदे तभी मिल पाते हैं। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले कहा, इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति, परिस्थितियां वो अपवाद स्वरूप होती है और उसमें सब जायज होता है, लेकिन रोज प्रतिदिन कोई आपातकालीन स्थितियां नहीं होती, प्रतिदिन हमारे साथ कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं होती कि हमें हमारे डेली रूटीन से पीछे हटना पड़े। हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी दिनचर्या है, उससे हमें हटना पड़े। अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लापरवाह हैं, और लापरवाही की कीमत कई बार तो इतनी ज्यादा चुकानी पड़ती है कि जिन्हें बाद में शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए हर जगह सतर्क रहें, अनुशासित रहें, और वो तमाम काम, वो नियम कायदे जो हमारे लिए जरूरी है, हमारी सेहत के लिए जरूरी है, हमें सुरक्षित रखने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उसकी पालना में कहीं कोई ढिलाई, कोई कोताही, कोई लापरवाही कभी ना करें। आप देखेंगे कि अगर आप पूरी तरह से सारी बातों को फॉलो करते हैं, अच्छी आदतें जो आपने अपने अंदर बहुत परिश्रम से डेवलप की है, उन पर आप पूरा फोकस करते हैं, समय का ख्याल रखते हुए, टाइम मैनेजमेंट जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है, उसका भी जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए खाने पीने पर पूरा कंट्रोल कीजिए, जो चीज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, जो हमारा भरपूर पोषण कर सके, हमें ऊर्जा से, एनर्जी से लबालब कर सके, वही चीज़ें खानी चाहिए। हो सकता है कि वो चीज़ें स्वाद में उतनी अच्छी ना हो जितनी अच्छी हमें वो चीज़ें लगती है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, खतरनाक होती है। इसलिए उन चीज़ों से परहेज करें जो हमें नुकसान पहुँचाती है, और उन चीज़ों को फॉलो करें जो हमारे लिए जरूरी है। वही चीजें तो संतुलित आहार, वही बैलेंस डाइट कहलाती है, क्योंकि उसमें वो सारे आवश्यक पोषक तत्व जिसको हम कहते हैं वो शामिल होते हैं, मसलन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, पानी, सारी चीजें, और वो भी सही सही मात्रा में मौजूद होती है। ये शारीरिक विकास, ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने, उसे बढ़ाने में बड़ी सहायक होती है। साथ ही साथ डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी यानी मोटापा, हाई बीपी, इन सब पे भी वो कंट्रोल करने के लिए काम में आती है। स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को दिन भर के काम करने के लिए जो जरूरी की ऊर्जा है, एनर्जी और जो ताकत है वो हमें प्रदान करते हैं। पर्याप्त कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन से हमारी हड्डियां मजबूत होती है। जी हाँ साथियों, हमारे शरीर का ढांचा जब जहां जितना मजबूत होगा, आप उतने ही ज्यादा अपने आप को स्वस्थ फील करेंगे, कम समय में उतने ही ज्यादा कार्यों को आप कर सकेंगे। यानी आपकी क्रिएटिविटी, आपकी रचनात्मकता, आपकी सृजनात्मकता सब कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने आप को कितना स्वस्थ महसूस करते हैं। स्वस्थ महसूस करने के लिए जहाँ पर हमें बहुत सारी शारीरिक व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान ये सब करने होते हैं, वहीं खाने पीने का भी विशेष ख्याल रखना होता है, तो उसे ही हम बैलेंस डाइट कहते हैं। उस पर आप गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। विभिन्न विटामिन और खनिजों से युक्त जो भोजन है वो शरीर को संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो तभी मजबूत हो पाता है जब हम कुछ ऐसा आहार प्रतिदिन लें जिसकी शरीर को निरंतर आवश्यकता होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनकी शरीर को निरंतर प्रतिदिन आवश्यकता होती है, तो उसमें कोताही, लापरवाही ना करें। संतुलित आहार, जैसा कि हमने अभी कहा कि हार्ट डिजीज है या टाइप 2 डायबिटीज है और कुछ प्रकार के कैंसर के खतरे को भी कम करता है, और खास तौर से सही पोषण से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा रहता है। पाचन की हमारी डाइजेशन सिस्टम पूरी तरह से एकदम चुस्त दुरुस्त रहता है, जिसे शरीर का वजन संतुलित रहता है और मोटापा नहीं बढ़ता।

ये तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि मोटापा अनेकों बीमारियों का घर होता है। मोटे व्यक्ति के साथ जीवन में कितनी समस्याएं होती है, वो कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, ये वही जानते हैं। इसलिए कभी भी अपने वजन को ना बढ़ने दें, और इसके लिए वही बात अनुशासन की, पूरा परिश्रम करना होगा साथियों, खाने पीने पे भी कंट्रोल करना होगा और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी करनी होगी। शरीर को फिजिकली फिट रखना बेहद जरूरी है, और जब आप इन बातों को फॉलो करते हैं ना, तो फिर आप पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन हमारे दिमाग, हमारे स्वास्थ्य और हमारी मनोदशा यानी हमारे मूड को बेहतर बनाने में पूरी तरह से मदद करता है। यदि आप अपनी दैनिक जीवन शैली के अनुसार एक बेहतरीन डाइट प्लान बनाते हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों से सलाह लेते हैं और उसे फॉलो करते हैं, तो फिर कोई कारण नहीं रहता कि आप फिजिकली या मेंटली फिट ना हो, जीवन के लक्ष्यों को आप प्राप्त न करें, ऐसा संभव ही नहीं है। तो साथियों, नमस्कार, शुरू का आज का सफर अब यहीं तक। अगले प्रोग्राम तक अपने रेडियो दोस्त मुरारी वशिष्ठ को दीजिए इजाजत। यह आकाशवाणी का चिरू केंद्र है, FM बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले के जाएंगे। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं।

0: है जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री

0: कीमत 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106 रुपए 68 पैसे और डीजल 93 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108 रुपए 74 पैसे और डीजल 95 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 77 पैसे और डीजल का मूल्य 95 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
4: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धन शोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पुद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धन शोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।

0: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
1: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महा आवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाओ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET UG में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, NTA का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी।

0: Lines once again. Prime Minister Modi to embark on a six-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold in women's 52 kg category in Santa World Cup in Macau. That's all in Morning News. Have a nice day.
1: FM बैंड के 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। सुर संगम कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार हैं आशा भोसले।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम सुर संगम में आज आप सुन रहे थे आशा भोसले को। इसका प्रसारण आकाशवाणी के चूरू केंद्र से किया गया। एफएम बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर, पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी पहुंचेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। प्रदेश में भूजल स्तर और जल संचयन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए 25 मई से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में कई स्थानों पर तेज रफ्तार हवाओं के साथ आंधी बारिश का दौर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री श्री मोदी आज अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा

भारत का यूएई को निर्यात 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। इसके साथ ही यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस साल भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देश सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक की। श्री प्रधान के आवास पर हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में उच्च शिक्षा सचिव, विद्यालय शिक्षा सचिव, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक, सीबीएसई के अध्यक्ष और केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्तों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं कक्षा की दूसरी बार की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। 21 मई तक ये प्रदेश के 90 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी। इसके लिए राज्य के करीब 1,300 स्कूलों में 21,000 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। परीक्षा का आयोजन दो पारियों में किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए त्रिस्तरीय उड़न दस्तों का गठन किया गया है। वहीं आरबीएसई की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं भी कल से शुरू हो गई। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित अन्य शहरों में भी ईंधन के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल 3.25 रुपए और डीजल करीब 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं।

राष्ट्र प्रथम के संकल्प को आत्मसात करते हुए प्रदेश में ईंधन की बचत और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की कवायद शुरू की गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने काफिलों में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय किया है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने एस्कॉर्ट सुरक्षा छोड़कर ईंधन

0: ये हर भारतीय को ये सोचना होगा कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं राष्ट्रहित के लिए कहते हैं, आज मैंने तय किया है कि जो एस्कॉर्ट गाड़ी एक चलती है वो बंद, सिर्फ जो मेरी गाड़ी है ये गाड़ी जो मुझे मिली हुई है उस गाड़ी का मैं उपयोग करूँगा और एस्कॉर्ट गाड़ी उसका उपयोग नहीं करेंगे ताकि धन की बचत हो।
1: राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक सीजे संजीव प्रकाश शर्मा ने भी अपने वाहन के साथ चलने वाली एस्कॉर्ट कार को छोड़ दिया है। इसी तरह निचली अदालतों में कई मजिस्ट्रेट कार पुलिंग कर कोर्ट पहुंच रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में भूजल स्तर और जल संचयन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए 25 मई गंगा दशमी से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा। प्रदेश भर में ये अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में कल इस बारे में अहम बैठक हुई। उन्होंने कहा कि अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए हर जिले में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण का काम मिशन मोड पर किया जाएगा। अभियान के दौरान श्रमदान, स्वच्छता गतिविधियां, पौधरोपण, जल स्रोतों की सफाई, प्रभात फेरियां और जागरूकता रैलियां आयोजित होंगी। उन्होंने बताया कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के राज्य स्तरीय समापन समारोह के साथ ही वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का राज्य स्तरीय शुभारंभ होगा। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को जल जीवन मिशन 2.0 के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और प्रसूताओं तथा उनके परिजनों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पिछले दिनों हुई प्रसूताओं की मौत और तबीयत बिगड़ने की घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली एम्स की टीम भी आज कोटा में इस प्रकरण की जांच करेगी। अंतिम रिपोर्ट मिलने पर ही घटना के सही कारणों तक पहुंचा जा सकेगा।
2: जो भी है, चाहे दवाइयों में है, चाहे साफ सफाई में, जो भी इसका तो कॉज मालूम करेंगे। गंभीर विषय है और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल है मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम उस पर करेंगे और जो भी दोषी है उसका भी केस लड़ा जाए। तो कहते हैं उनके परिवार को मेरी तरफ से हार्टफेल्ट कंडोलेंस में देना चाहता हूँ कि बहुत दुखद घटनाएं हुई और हम सब इसमें हमारे खुद के आंखों में आंसू लगाए।
1: पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी बारिश का दौर बना हुआ है। इससे तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट आई है। हालांकि गर्मी का असर बरकरार है। कल हनुमानगढ़, फलौदी, बीकानेर, बारा और राजधानी जयपुर सहित कई शहरों में हल्की बारिश हुई। जयपुर में भीषण गर्मी के बाद शाम को तेज रफ्तार हवाओं और गरज के साथ रुक रुक कर करीब 2-3 घंटे बरसात का दौर चला। कोटपुतली बहरोड में देर शाम चली धूल भरी आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगह बिजली के खंभे और पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ। उधर पश्चिमी राजस्थान में प्रचंड गर्मी का प्रकोप है। प्रशासन की ओर से पानी की फुहारों से लोगों को गर्मी से राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। फलौदी, बाड़मेर और जैसलमेर में दिन का पारा 45 डिग्री से अधिक रहा। वहीं श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। चित्तौड़गढ़ और जालौर में रात का तापमान 30 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज शेखावाटी क्षेत्र, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं कहीं गरज के साथ बूंदाबांदी के आसार जताए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर। पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी पहुंचेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। प्रदेश में भूजल स्तर और जल संचयन में जन भागीदारी

0: बढ़ाने के लिए 25 मई से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में कई स्थानों पर तेज रफ्तार हवाओं के साथ आंधी बारिश का दौर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 100.7 मेगा हर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:10 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं समूह स्वरों में देशगान।

0: हम भारत की बेटी हैं, अब उठा चुकी तलवार। समूह सरों ये देश गान आप सुन रहे थे और इसका प्रसारण आकाशवाणी के चूरू केंद्र से किया गया। FM बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। यह प्रस्तुत है कार्यक्रम धरा की पुकार। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक वार्ता जिसका विषय है जलवायु परिवर्तन और वार्ताकार हैं निशा। तो आइए सुने ये वार्ता।
1: जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के समक्ष एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। जलवायु परिवर्तन वास्तव में पृथ्वी पर जलवायु की परिस्थितियों में बदलाव को कहा जाता है। यह विभिन्न बाह्य एवं आंतरिक कारणों से होता है, जिनमें सौर विकिरण, पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन, ज्वालामुखी विस्फोट सहित अन्य आंतरिक एवं बाह्य कारण सम्मिलित हैं। वास्तव में जलवायु परिवर्तन पिछले कुछ दशकों में विशेष रूप से चिंता का कारण बन गया है। पृथ्वी पर जलवायु के स्वरूप में परिवर्तन वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। जलवायु परिवर्तन के कारण के कई कारण होते हैं और यह परिवर्तन विभिन्न तरीकों से पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करता है। एक समय में सभी जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक हुआ करते थे। लगभग 220 वर्षों पहले औद्योगिक क्रांति आई, जिसके फलस्वरूप मशीनों द्वारा भारी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा। मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके लिए ज्यादातर ऊर्जा कोयले एवं तेल जैसे ईंधनों से प्राप्त होती है, जिन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जब इन जीवाश्म ईंधनों को जलाया जाता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड वायु उत्सर्जित होती है। औद्योगीकरण के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी वायुओं का उत्सर्जन भी बढ़ा है। इन वायुओं को ग्रीन हाउस वायु कहते हैं। पिछले 200 वर्षों के दौरान हमारी गतिविधियों के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस वायुओं की विशाल मात्रा उत्सर्जित हुई है। अब यह सुस्पष्ट है कि आज के समय में मानव ही जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। यह बदलाव सकारात्मक कम नकारात्मक ज्यादा है। जलवायु में हो रहे इन बदलावों ने समूचे जैव जगत के में खतरे की घंटी बजा दी है। आज यह वैश्विक स्तर पर एक गंभीर समस्या बन चुका है। जलवायु में हो रहे इन परिवर्तनों का तत्कालीन प्रभाव से रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है तो सघन वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा पड़ रहा है। बढ़ते तापमान से हिम क्षेत्रों में ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इससे तटीय स्थानों एवं द्वीपों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण पेयजल और सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता भी प्रभावित होती रही है। साथ ही सिंचाई पर आधारित भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में फसल चक्र में परिवर्तन होने का खतरा है। जलवायु परिवर्तन संकट के दीर्घगामी परिणाम है। चुनौतियां हर रोज ज्यादा बड़ी होती जा रही हैं। जलवायु में हो रहे परिवर्तन को यदि समय पर रोका नहीं गया तो अकारण ही मनुष्य समाज को विसंगत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। शिकागो विश्वविद्यालय के पर्यावरणीय वैज्ञानिक डॉक्टर वी रामनाथन कहते हैं, पृथ्वी का औसत तापमान जो ग्रीन हाउस गैसों के कारण इतना अधिक बढ़ चुका है और अब प्रदूषणकारी गैसें वायुमंडल में न भी छोड़ी जाएं, तो भी वर्ष 2030 तक 1980 की अपेक्षा पृथ्वी का तापमान कई गुना बढ़ जाएगा। इस तापमान वृद्धि के परिणाम बड़े भयानक होंगे। जलवायु का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक अभी भी इस तर्क वितर्क में उलझे हैं कि पृथ्वी किस दर से गर्म हो रही है तथा यह कितनी अधिक गर्म होगी, परंतु वे इस बात से सहमत हैं कि वास्तव में पृथ्वी गर्म हो रही है। इस समय जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न ग्लोबल वार्मिंग से विश्व का कोई देश अछूता नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के बहुत से कारण हैं। इनमें से एक है कि कोयला, तेल व गैसों के ज्वलन से वातावरण की परतों में सघनता आ जाना, जिससे सूर्य की किरणों की ऊष्मा का अपेक्षाकृत अधिकतर भाग पृथ्वी की सबसे निकटवर्ती सतह को प्रभावित करने लगा है। इसके कारण पृथ्वी के निकट उपलब्ध परिणामी ऊष्मा सदियों से चले आ रहे मौसमी संतुलन को विपरीत रूप से प्रभावित कर रही है। इस कारण आज की परिस्थिति में मनुष्य जाति और पृथ्वी के बीच सदियों से बने हुए संतुलन में तेजी से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वर्तमान जीवन में होने वाले तकनीकी विकास ने भी मनुष्य जीवन के हर पहलू को इतना प्रभावित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकताएं अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई हैं, जिसके कारण एक अकेला मनुष्य ही पृथ्वी के पारिस्थितिकीय संतुलन को कई गुना हानि पहुंचाने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त आधुनिक जीवन पद्धति व सामाजिक राजनीतिक आर्थिक कारणों के चलते मनुष्य समाज अपने जीवन में अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग करने लगे हैं, जिससे पारिस्थितिकीय असंतुलन में तेजी से वृद्धि हो रही है। दुनिया की बात करें तो अभी हाल में ही उत्तरी न्यूयॉर्क में तापमान इतना गिर गया है कि न्यूयॉर्क फॉल पूरा जम गया है। तटीय वॉटसन में तूफान के साथ बड़ी लहरें भी उठी हैं, जिसे ऐतिहासिक बाढ़ कहा गया है। एक पर्यावरणीय रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन व पारिस्थितिकीय असंतुलन का मुख्य कारण मनुष्य की प्रवृत्ति, जीवन शैली व आधुनिक जीवन संस्कृति ही है, और इन सब का एक कारण तेजी से बढ़ती जनसंख्या और उसका भरण पोषण व रहन सहन है। मनुष्य की 10,000 पीढ़ियों के बाद पृथ्वी की जो जनसंख्या पिछली सदी के मध्य तक 2 बिलियन थी, इस समय 7 बिलियन से भी अधिक है। वैज्ञानिकों की माने तो अगले 50 वर्षों में विश्व की जनसंख्या 9 बिलियन हो जाएगी, और यह बढ़ोतरी मात्र एक शताब्दी में लगभग 4 गुना हो जाएगी। इस अभूतपूर्व जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण लगभग 100% मानव जाति द्वारा अल्पकालीन हितों की पूर्ति को दी जा रही है। प्राथमिकता अत्यधिक ऊर्जा उपयोग, वातावरण को प्रदूषित करने की प्रवृत्ति व इन सब के दुष्परिणामों से पूर्ण रूपेण बेखबर होकर किया जा रहा योगदान है, जिसके फलस्वरूप इस परिवर्तन व असंतुलन का विपरीत प्रभाव कृषि, मानव स्वास्थ्य, वन संपदा, जंगली जीवों, व्यापारिक क्षेत्र पर अत्यंत स्पष्ट व प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। एक अध्ययन रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आर्कटिक क्षेत्र में तापमान की वृद्धि दर विश्व के अन्य भागों में हो रहे तापमान वृद्धि की तुलना में दुगनी है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में बर्फीली सतहें अधिक कारगर ढंग से सूर्य की ऊष्मा का परावर्तन करती रही हैं, परंतु अब हिमखंडों की तीव्रता से पिघलने के कारण अनावंछित भूक्षेत्र व सागर तल द्वारा अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा ग्रहण की जा रही है, जिससे यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म होता जा रहा है। साथ ही महासागरों का जल स्तर बढ़ने से सागर तट पर बसने वाली जनसंख्या कई कई देशों में पलायन कर रही है। एक नवीनतम अध्ययन में यह पाया गया है कि वातावरण में बढ़ रही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से समुद्र के जल का पीएच स्तर कम हुआ है, जिससे सागर का जल अम्लीय होने लगा है। यदि यह क्रम न रुका तो समुद्री जीव जंतुओं के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, और इसका परिणाम वर्तमान समय में अरब की खाड़ी में स्थित लक्षद्वीप, मालदीव और ऑस्ट्रेलिया में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। इस तरह साइंस पत्रिका व जियोफिजिकल रिसर्च लेटर में प्रकाशित अनेक अध्ययन रिपोर्ट

0: से यह स्पष्ट हो गया है कि वर्तमान जलवायु परिवर्तन की स्थिति से महासागरों के जल का तापमान अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है, जिससे समुद्री तूफान में तीव्र बढ़ोतरी हो रही है। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में यह पाया गया है कि यूरोप के अल्पाइन ग्लेशियर इस सदी में लगभग समाप्ति की स्थिति में पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार एशिया और अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति भी अच्छी नहीं है। इन सभी स्थितियों का मुख्य कारण वातावरण में पैदा होने वाला कई तरह का प्रदूषण है, जिसके कारण पर्यावरण तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। यदि प्राथमिकता के आधार पर त्वरित गति से प्रदूषण नियंत्रण के उपाय न किए गए तो वर्तमान पीढ़ी व अगली पीढ़ी के जीवन काल में ही ऐसी विकट स्थिति आ सकती है कि फिर कोई उपाय किए ही न जा सके और सभी को उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़े। जैसे बाढ़ या भूकंप आने से पहले सुरक्षित उपाय नहीं करने पर समाज को जनधन की हानि सहन करनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार समय पर यदि प्रदूषण नियंत्रण व जलवायु संतुलन के लिए कदम नहीं उठाए गए तो सब कुछ जानते हुए भी इसके दुष्परिणामों को सहने के लिए विवश होना पड़ेगा। वस्तुतः अनेक दुष्परिणामों को जन्म देने के लिए मनुष्य ही उत्तरदायी है और आज स्थिति इतनी भयावह व विषम हो चुकी है कि प्रदूषण की रोकथाम व जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों के निवारण के लिए यदि समय पर सशक्त वह समयबद्ध प्रयास विश्व के सभी राष्ट्रों द्वारा हर स्तर पर नहीं किए गए तो जल, भूमि, वायु व मनुष्य जाति का असंतुलन आगामी पीढ़ियों के विकास व स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मनुष्य समाज के लिए एक ऐसा ज्वलंत उदाहरण है जो यह बताता है कि जो सभ्यताएं भविष्य के प्रति सतर्क व दूरदृष्टि नहीं रखती उनका विनाश सुनिश्चित होता है। और श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन के बारे में एक खास बात यह है कि इस समय का अध्ययन एकांकी रूप से किसी देश विशेष के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि भूगोल और प्रकृति किसी देश विशेष की राजनीति सीमाओं को नहीं मानती। आज अगर हम हमारे भारतवर्ष में हो रहे जलवायु परिवर्तन का सटीक अध्ययन और विश्लेषण करना चाहते हैं तो हमें हमारे देश की सीमाओं के बाहर हो रहे बदलावों और परिवर्तन का अध्ययन भी करना होगा। इस गंभीर समस्या के निवारण के लिए विश्व के समस्त राष्ट्रों को एक मंच पर आकर गंभीर निर्णय लेना होगा और उनकी पालन को समस्त राष्ट्रों को अपना कर्तव्य समझना होगा। लिहाजा प्रदूषण नियंत्रण के लिए योजनाओं कि सही संरचना का निर्माण व उसका समयबद्ध क्रियान्वयन ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे जलवायु परिवर्तन की गति को नियंत्रण किया जा सके। इसके लिए पारिस्थितिकीय संतुलन की महत्ता की सर्वेता, जल उपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक, प्लास्टिक इत्यादि के उपयोग पर पूर्ण रोकथाम, वर्षा जल संचयन, पृथ्वी का कण कण हरित मामय बनाने का संकल्प व तंदुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन आज मनुष्य समाज के सुरक्षित भविष्य के लिए अत्यंत अनिवार्य हो गया है।
1: कार्यक्रम धरा की पुकार के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे एक वार्ता जिसका विषय था जलवायु परिवर्तन और वार्ताकार थी निशा। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के चुरू केंद्र से किया गया। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं।

अब आकाशवाणी के चुरू के इंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 100.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है इमेज पर आधारित फिल्म संगीत का आपका अपना कार्यक्रम आपकी पसंद। आपके पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी सुरीले साथियों को आपके रेडियो दोस्त मुरारी वशिष्ठ का नमस्कार। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज से। इस गीत को हमने लिया है फिल्म कभी कभी से, शब्द रचना साहिल लुधियानवी की।

0: थे कभी कभी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। सुनवाने का अनुरोध किया था गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरनूर सिंह, सुखदीप सिंह और इनके पूरे परिवार की तरफ से मेल हमें प्राप्त हुआ था। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से मेल भेजते हैं नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद साहिद शेख और इनके पूरे परिवार की तरफ से ये मेल हमें प्राप्त हुआ था। इसी गीत को सुनवाने का अनुरोध हमारे जो साथी करते हैं दतरंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र और इनका पूरा वर्मा परिवार। मरहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नावेद अल हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी, यसफ अब्बासी और इनका पूरा अब्बासी परिवार।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे
2: सो इजी
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
0: अंतराल के बाद आपकी पसंद कार्यक्रम में सभी साथियों का स्वागत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति पंकज उदास और अनुराधा पोडवाल की आवाज में फिल्म

0: दयावान फिल्म में अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास अनुराधा पोडवाल को सुनवाने का अनुरोध करने वाले हमारे साथी हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया और इनका पूरा परिवार, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वानकर, राही श्रीमती सरिता ग्वानकर, प्रिंस एकांश ग्वानकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता ग्वानकर, सिद्धांत अर्जुन टुकटुक, आकार हाइट्स बहादुरा, नागपुर से वैशाली शैलेश, सुमित कुमारी ध्वनि और इनका पूरा ग्वानकर परिवार हमें मेल भेजते हैं। इसी गीत के लिए जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो ने हमें मेल भेजा है। धनोरी तेलीवाला से लिखते हैं निसार सलमानी, नुसार सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

जो देख रहा हूं कहीं वो ख्वाब तो नहीं, कांटों के भेस में छुपा गुलाब तो नहीं।

ऐसी वैसी ना समझ सजना। आशा भोसले शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज़ में जानी दुश्मन फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा था वर्मा मलिक ने, संगीत रचना थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, और सुनवाने का अनुरोध था चंडीगढ़ सिटी से बिमला अनेजा सतीश अनेजा, छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल और इनका पूरा देवांगन परिवार। इसी गीत के लिए हमें ईमेल भेजते हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती और इनका पूरा परिवार। इस गीत को सुनने के लिए नगर निगम वार्ड नंबर 28, महसोल सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन, प्रिंस बेगम, इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कुआत बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर, ये तमाम साथी अनुरोध करते हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के रूप में किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दोस्ताना फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

सलामत रहे दोस्ताना हमारा। मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की आवाज़ में ये सुरीला सा गीत दोस्ताना फिल्म से अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और सुनवाने का अनुरोध किया था भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, ईशान छिम्पा और पूजा परिहार ने। इसी गीत के लिए आदाब गांव कुमार हेडा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम और इनका पूरा परिवार इसी गीत को सुनवाने का अनुरोध करते हैं। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्रव्य और इनका पूरा रामटेके परिवार। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश आपले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश की तरफ से यह अनुरोध हमारे पास आया था। कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं अलका याग्निक की आवाज से। इस गीत को हमने लिया है फिल्म राजा हिंदुस्तानी से, शब्द रचना समीर की और सुनवाने का अनुरोध हमारे इन सभी सुरीले साथियों का। फवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिर

जिला जिला चुरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल सोनगरा, कार्तिक सोनगरा और पूरे सोनगरा परिवार की तरफ से। इसी गीत के लिए राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हमें ईमेल भेजते हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा की तरफ से। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार की तरफ से। जिला मुरादाबाद ग्राम तुलापुर उत्तर प्रदेश से मेल भेजते हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजली सीमा, मानसी तनवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह की तरफ से। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय और इनके सभी साथियों की तरफ से। तो आइए सुने अलका याग्निक को फिल्म राजा हिंदुस्तानी में।

तो साथियों, इस सुरीले से कार्यक्रम आपकी पसंद का आज का सफर अब बस यहीं तक। अगले प्रोग्राम तक अपने रेडियो दोस्त मुरारी वशिष्ठ को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: समय सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब देश की सुरीली धड़कन यानी विविध भारती के कार्यक्रम हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं। विविध भारती के कार्यक्रमों की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: भारती।

0: श्रोताओ नमस्कार, आपके चहेते फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश के साथ हाजिर हूँ मैं शिफाली कपूर। साथियों, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो सिर्फ हमारे दिल के लिए हों, और उन्हीं खूबसूरत पलों को सजाने के लिए हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जहां फोन के जरिए आपसे होगी बातचीत और साथ होंगे आपके पसंदीदा गाने। साथियों, कुछ गीत मुस्कान बन जाते हैं, कुछ धुने यादों का कारवां ले आती हैं, और कुछ फरमाइशें दिल से सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बातों और गीतों का सिलसिला, लेते हैं पहला कॉल। सुन रहे हैं ना, फोन की घंटी बज रही है, कहीं ये आपका ही कॉल तो नहीं? हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी। नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला।
0: आहा, क्या बात है, अपना नाम तो बताएं।
1: प्यार का ही एक पर्यायवाची शब्द है प्रेम। मैं प्रेम कुमार गौतम बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: मेरा नाम ही है मोहब्बत प्यार प्रेम।
0: वैसे कहते हैं ना कि प्यार बांटते चलो, प्यार जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता है ना?
1: जी। तो मेरे आगे दो शब्द लगे हैं, तो प्रेम, दूसरा गौतम, और गौतम बुद्ध, दोनों ने ही प्रेम का संदेश दिया।
0: क्या बात है, तो आज आप क्या संदेश दे रहे हैं और किस शहर से बात कर रहे हैं, जरा तो ये भी बता दें।
1: कि मैं झांसी से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी।
1: फूल लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: बिल्कुल।
1: और गर्व करते हैं।
0: बिल्कुल गर्व है।
1: आपको भी गर्व होगा।
0: बिल्कुल गर्व है जी, बिल्कुल गर्व है। अपने बारे में भी कुछ बताएं प्रेम जी, आप क्या करते हैं?
1: मैं शब्दों की साधना करता हूँ, मैं राइटर हूँ, लिखता हूँ।
0: क्या बात है।
1: कविता से मेरे आत्मिक जुड़ाव है, मैं मूल रूप से कविता का विद्यार्थी हूँ।
0: अच्छा, कैसी कविताएं लिखते हैं आप?
1: छंद में तो मैंने बहुत कम लिखा, लेकिन हम मुक्त छंद की कविताएं लिखते हैं। हम मानवतावादी कविताएं हैं जो मुक्त छंद की हैं, हम मुक्त लिखते हैं।
0: अच्छा, तो चार लाइनें आप क्या हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ पर सुना सकते हैं?
1: जी जी, जरूर सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है 2 मिनट का मौन। आओ मित्र 2 मिनट का मौन रखें। आओ मित्र 2 मिनट का मौन रखें। वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला। वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला। प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा। प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा। आओ मित्र 2 मिनट का मौन रखें।
0: क्या बात है, क्या बात है भाई, आपकी तो इस कविता ने निशब्द कर दिया। तारीफ में क्या बोलूं मैं, और बहुत खूब आपकी कलम यूं ही चलती रहे और दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करें। प्रेम जी, तो बताएं आज के इस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत आपकी पसंद का सुनवा दिया जाए?
1: एक बहुत फिलोसफी का गीत है, तीसरी कसम का, और बहुत भोले भाले राज कपूर पर फिल्माया गया, मुकेश ने गाया, शैलेन ने लिखा। सजन से झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। आप इजाजत दे तो मैं गुनगुनाऊं।
0: चलिए

0: हेलो फरमाइश
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम तो बताएं।
1: जी मैं तकिया मड़िया हूँ, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से। मैम मैं जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ।
0: जमील भाई नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार मैम, नमस्कार। और मैम क्या हाल चाल है?
0: बस सब मेहरबानी है ऊपर वाले की, और आप सभी की शुभकामनाएं हैं, वो विविध भारती परिवार के साथ तो हमेशा है ही, तो हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं।
1: बहुत आज खुशकिस्मती है मेरी कि आज मुझसे शिफाली कपूर जी से मेरी बात हो रही है।
0: जमील भाई खुशकिस्मती तो हमारी है जो आप सभी श्रोताओं से बात करने का मौका मिला हमें। जी
1: 2019 में मेरा कॉल लगा था, अब जाके मेरा कॉल लगा है मैम।
0: अरे वाह, बड़ा लंबा अरसा हो गया। अच्छा ये बताएं जमील भाई कि इतना लंबा अरसा 2019 से आज है 2026, तो इतना जो दरमियान जो वक्त रहा, तो उसमें आपने ट्राई किया होगा फोन बीच में, अभी जब शुरू हुआ है ये हेलो फरमाइश, तो निराश तो नहीं हुआ ना?
1: निराशा हुआ है मैम, बहुत अच्छा। दिल से मैं ट्राई कर रहा था, आज जाके कामयाबी मिली है तो बहुत खुशी मिल रही है।
0: आपकी खुशी हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद को आपकी जगह रखकर महसूस कर सकती हूँ भाई कि कितनी खुशी होती है। तो बताएं जरा जौनपुर के हालचाल बताएं, अपने हालचाल बताएं।
1: जी जौनपुर का हाल तो मैम बहुत गर्मी पड़ने लगी है मैम, और लगभग इस वक्त 37 डिग्री हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर है मैम।
0: मुंबई भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर भी।
1: जी जी, और गाने पे आ जाते हैं मैम।
0: आ जाइए गाने पे, बिल्कुल अपनी पसंद बताएं।
1: टीम का नाम है महबूब की मेहंदी, और आवाज मोहम्मद रफी साहब की, और इसको मैं मैम थोड़ा सा गुनगुना देना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल गुनगुनाइए।
1: ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, ओ ये जो चिलमन है दुश्मन।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। विविध भारती के कार्यक्रम हेलो फरमाइश में किसने फोन किया, कहां से फोन किया?
1: जी नमस्कार मैम, मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से फोन किया है। मैं विश्वजीत पाल बोल रहा हूं।
0: विश्वजीत जी, अपने बारे में तो कुछ बताइए।
1: मैं ब्लाइंड हूं तो इसीलिए रेडियो कार्यक्रम सुनता हूं, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है विश्वजीत जी?
1: हेलो फरमाइश छाया गीत, और बहुत ही प्रोग्राम आपका है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप ये बताइए कि आप मोबाइल ऐप पे सुनते हैं या ट्रांजिस्टर रखा हुआ है आपने?
1: नहीं नहीं, ट्रांजिस्टर रखा हुआ है तो ट्रांजिस्टर में बहुत अच्छा से सुन लेता हूँ, आवाज का बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, ये बताएं कि आप करते क्या हैं?
1: मैं ब्लाइंड आदमी हूँ, खेती बाड़ी में काम करता हूँ। मेरा घर के आसपास से थोड़ा सा खेती बाड़ी में काम कर लेता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: मेरा माँ है, पापा है तो उसके साथ जाता हूँ खेत में, वो थोड़ा सा देखभाल करती है तो इसीलिए थोड़ा सा खेती बाड़ी में कुछ कुछ काम मैंने कर लेता हूँ।
0: और गीत संगीत से लगाव है आपका?
1: हाँ, तो गीत तो जब भी कार्यक्रम सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा इधर मौसम बहुत बारिश हो रही है, ज्यादा तो गर्मी थी तो इसीलिए बारिश हुआ है तो बहुत अच्छा है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, तो हमारा इधर एक मंदिर है, विख्यात मंदिर है माँ त्रिपुरेश्वरी मंदिर।
0: अच्छा।
1: तो ये से बहुत ही लोग आती है वो तो घूमने के लिए बाहर से। डिगी है और डिगी का आसपास बहुत ही सुनसान है, बहुत अच्छा लगती है वो डिगी के बारे में।
0: तो वहाँ पर आने का कोई खास मौसम होता है या किसी खास महीने में आया जाता है घूमने के लिए, या 12 महीने में किसी भी समय आ सकते हैं?

0: समय में आप योग को दिक्कत नहीं है, तो हमारा इधर तो हर मौसम में बहुत अच्छा है।
1: अच्छा ये बताएं कि आज आपने भैरव फरमाइश कार्यक्रम में फोन किया है, तो कोई गाना भी तो चुना होगा अपनी पसंद का।
0: जी जी, मेरे को गाना सुना दीजिए, सजन चले ससुराल मूवी से, तुम तो धोखेबाज हो वादा करके वादा निभाना चाहती है। हमारे इधर बांग्ला चलते है, बंगाली भाषा
1: जी,
0: तो बंगाली लोग रहती है, तो कार्यक्रम हिंदी में होती है तो बहुत अच्छा, लोग जानती है, हिंदी भाषा सीख जाती है
1: जी,
0: तो बहुत अच्छा लगती है आपका कार्यक्रम।
1: और विश्वजीत जी, आपने जितने मेहनत से हिंदी बोली है बहुत अच्छा लगा। और आपने जो ये बात कही कि आप विविध भारती सुनते हैं, हिंदी में कार्यक्रम आते हैं, उसके माध्यम से आप हिंदी सीख लेते हैं, तो ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा। और पूरी करते हैं आपकी पसंद, सुनिए ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। बहन जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी, आप बताएं कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूं। बहन जी
0: बताएं जरा अपने बारे में।
1: एकदम अच्छे हैं और हम खेती करते हैं और साथ में फूल वाला काम डेकोरेशन का।
0: अच्छा, और वैसे खेत में आजकल क्या लगा हुआ है?
1: इस समय खेत में कुछ नहीं है, खेत तो खाली है। समय बस जुताई हो चुकी है, अब बारिश हो जाए और उसके बाद

0: मूंगफली की बुवाई होगी।
1: अरे वाह, अभी तो चटक गर्मी होगी।
0: जी जी।
1: तो खेत वेत में जाते हैं अभी कि नहीं जाते हैं?
0: जी जाते हैं, अभी क्या है ना, कुछ कटहल के और आम के पेड़ लगे हुए हैं।
1: अच्छा,
0: तो जाते रहते हैं, उसमें फल भी लगे हुए हैं।
1: कौन से फल लगाए हैं?
0: अभी आम है और कटहल है।
1: आम कौन सा है, आम की कौन सी जाति?
0: दशहरी है, दशहरी।
1: क्या बात है भाई, अपने उत्तर प्रदेश की तरफ का जो दशहरी होता है उसका तो स्वाद ही अलग होता है।
0: बिल्कुल, सबसे नंबर एक का स्वाद होता है उसके।
1: और बताएं, आपके जो शहर है वहाँ के क्या हालचाल है और क्या चीज प्रसिद्ध है? अगर हम आते हैं महोबा तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा?
0: हमारे यहाँ तो देखने के लिए जैसे काफी मंदिर भी है, जैसे झांसी हमारे पास में झांसी रानी लक्ष्मीबाई का किला है और महोबा भी किला बने हुए हैं राजाओं के, और हमारे बुंदेलखंड में जो चरखारी है वहाँ पे कई तालाब है और एक दूसरे से सभी तालाब ज्वाइंट है।
1: अच्छा,
0: वो भी बहुत जी देखने लायक है।
1: क्या बात है, तो यानी हमें एक बार महोबा आना ही पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल आना पड़ेगा आपको।
1: हाँ, लेकिन ऐसे सीजन में आना पड़ेगा जब हमें दशहरी आम मिले।
0: अभी 15-20 दिन बाद बस पकने ही वाले हैं।
1: अरे वाह, क्या बात है, खूब आनंद लीजिए भाई, तो बहुत ही अच्छा फल है और इस तो आमों का राजा कहलाता है ये। बहरहाल चलिए, ये बता दीजिए कि आज आपका फोन लगा हेलो फरमाइश में, तो कौन सी पसंद है आपकी, गाना बताएं?
0: जी मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है संगीत और गीत के बोल है सुनो हसीना काजल वाली।
1: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: अरे सुनो हसीना

0: हेलो फरमाइश।
1: शेफाली कपूर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद बनारस से आपकी मुखातिब हूँ मैम।
0: भाई बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत।
1: और मैं 2003 से रेडियो विद भारती का सुनने वाला हूँ। मैं घाट को ऊपर में रहता था तब से सुनता हूँ, लेकिन अभी आज मेरी बात हो रही, मैं बनारस से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: तो ये बताएं कि मुंबई के घाट को ऊपर से बनारस कैसे पहुँच गए?
1: जी मैं वहाँ 5 साल हेयर कटिंग किया हूँ मैम, उसके बाद मैं फिर बनारस शिफ्ट हो गया हूँ। बनारस में ही यहाँ एक दुर्गा कुंड एरिया है, अस्सी घाट के बगल में वहीं मैं रहता हूँ मैम।
0: अच्छा, तो वहाँ क्या

0: करते हैं?
1: यही अपना ही बिजनेस है, हेयर कटिंग का ही काम करता हूँ मैम।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, अपना सैलून है परवेज भाई का वाराणसी में?
1: जी जी 20 साल से ऊपर हो गया, मेरी फोन आज लगी है।
0: क्या बात है भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि ये आप सभी का अपना कार्यक्रम है। हेलो फरमाइश।
1: रेडियो सुन सुन के मैं जो की बचपन से फिर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता आप लोग की आवाज।
0: जो इस समय आपकी आवाज है और आपके अंदाज है ना, वो बता रहे हैं कि आप खुशी से लबरेज हैं इस समय। विविध भारती के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और जरा ये बताएं कि बनारस की गलियों में वो जो आलू की सब्जी और कचौड़ी मिलती है, उसका आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं?
1: जी जी मैम, बहुत फेमस है, उस गली का नाम है कचौड़ी गली मैम, बहुत फेमस है वो रहता है। उस गली की खूबसूरती है कि अगर आप गली के अंदर जाएंगे, इतनी अच्छी खुशबू आती है, हींग की खुशबू आती है, घी या देसी घी की खुशबू आती है कि एकदम खाने का मन तो हो ही जाता कोई भी रहे। यहाँ तक विदेशी पर्यटक भी स्वाद चखते हैं मैम। और एक नया घाट बना है हमारे यहाँ नमो घाट मैम, वो बहुत फेमस घाट हुआ है।
0: गंगा आरती तो बहुत ही बढ़िया होता है।
1: गंगा आरती मैम आप दशा समेव घाट पे देखिएगा, बहुत खूबसूरती होता है। और हमारे अस्सी घाट पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी अब गंगा आरती होने लगी है मैम, बहुत ही अच्छी होती है।
0: जी जी, और उसका जो अक्स गंगा जी में पड़ता है वो तो अद्भुत होता है। चलें परवेज भाई, आपकी इस खुशी को हम दुगना कर देते हैं, अब बताएं आप कि आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
1: जी मैम, फिल्म रहेगी लव इज शिमला मैम, गाने का बोल है अलिफ जवर आल अली जवर आल अली जवर ए अलिफ तो, ये मोहम्मद रफी जी की मीठी आवाज में है मैम गाना ये।
0: अच्छा सुने अपनी पसंद का ये गाना।
2: अलिफ जबर अलिफ जरे अलिफ पेशो अज बे जबर बा बे जर बे बे पेशबो अलिफ से अपन अपन बिहुर मन अपन अबौवा बे से बपन बपन बिहुर मन बपन बबौवा अलिफ जबरा अलिफ जरे अलिफ पेशो।

अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार शिफाली दीदी।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बात कर रहा है हमसे?
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: ओ साहिल भाई, क्या हालचाल हैं?
1: ठीक हो? आप सुनाइए दीदी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक हैं। आप सबकी शुभकामनाएं साथ में हैं। और अपने बारे में बताएं साहिल भाई।
1: जी मैं जो कश्मीर आर्ट है ना, उसी के साथ करता हूँ दीदी।
0: शॉल वगैरह बनाते हैं?
1: जी बिल्कुल।

0: अच्छा, तो ये सारा हाथ का काम होता होगा, हाथ से ही करते होंगे आप?
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपकी अपनी शॉप है या आप कहीं जाते हैं या घर से करते हैं ये काम, कैसे करते हैं?
1: मैं घर से ही करता हूँ दीदी, ये काम बनाते हैं तो फिर उसको खुद ही बेचते हैं।
0: अच्छा, कब से कर रहे हैं ये काम?
1: जी बिल्कुल, लगभग 2012 से।
0: तो काफी लंबे समय से जुड़े होंगे आप विविध भारती के साथ भी?
1: जी विविध भारती के साथ तो मैं जुड़ा हूँ, और आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने 2 मई से प्रोग्राम शुरू किया है मन चाहे गीत।
0: जी जी जी जी
1: और आपने कुछ प्रोग्रामों में चेंजेस भी लाए, तो बहुत अच्छी लग रही है हमें वो आपकी चेंजेस।
0: अच्छा, तो आपको ये जो बदलाव हुए हैं ये पसंद आ रहे हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: और वैसे क्या आप हमारे सभी कार्यक्रम सुनते हैं या कुछ खास ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें आप बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं?
1: प्रोग्राम तो मैं सभी सुनता हूँ दीदी, आज के फनकार आता है, सुरीला सफर आता है, और छाया गीत, ये अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो आपके हमें मिलते हैं पिटारा, वो हमें सभी सुनने को मिलते हैं।
0: विविध भारती से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है?
1: प्रोग्राम तो सभी अच्छे हैं।
0: और अब ये बताएं जरा कि आप श्रीनगर के इस समय हाल कैसे हैं, मौसम कैसा है?
1: तो इस वक्त मौसम बहुत ही अच्छा है, गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, तो फिलहाल जो कुछ दिनों पहले यहाँ का जो तापमान था वो 31 भी हो गया।
0: अच्छा, तो आज साहिल भाई कौन सा गाना सुनवा दिया जाए आपको?
1: फिल्म का नाम है डोली, उसी का एक नगमा है आशा जी की आवाज में, आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर।
0: भाई साहिल भाई, ये तो आपने मेरी पसंद चुरा ली। तो चलिए अपनी इस प्यारी सी बातचीत को यहीं रोक देते हैं और अब सुनते हैं आपकी पसंद का, और हमारे तमाम श्रोता होंगे उनको भी ये गाना पसंद होगा, तो हम सब सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, जरा बताएं तो।
1: मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम भाई क्या हाल चाल है?
1: मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मैं सबसे बड़ा फैन आकाशवाणी विविध भारती का हूँ और उसमें से सबसे अच्छे मुझे आपके कार्यक्रम लगते हैं। हेलो सहेली में आप आते हो, सखी सहेली में आप आते हो, हेलो फरमाइश में आप आते हो, तो चार चांद लग जाते हैं।
0: चलिए भाई, आपको विविध भारती के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आप विविध भारती से जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
1: मेरी आपसे बात हो रही है ना, तो यूँ समझिए कि मेरी धड़कन एकदम से तेज हो चुकी है।
0: भाई ऐसा क्यों?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि विविध भारती पे कॉल लगना है ना, ऐसा होता है कि आपको मतलब सारी खुशियाँ मिल गई एक साथ में।
0: हम तो अपने सभी श्रोताओं के लिए हमेशा यही कामना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी में तरक्की करते रहें। तो अब अपने बारे में बताएं प्रेम भाई, क्या करते हैं वहाँ पे?
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और मोबाइल ऐप पे आकाशवाणी विविध भारती और जितने भी प्रोग्राम आते हैं ना उनको सुनता हूँ मोबाइल ऐप पे। और अगर हम कहीं बाहर भी जाए ना फिर भी हमें मोबाइल ऐप पे आपके कार्यक्रम आसानी से सुनने को मिल जाते हैं। मैं बताऊँ आपको, विविध भारती के जो कार्यक्रम आते हैं ना उसमें से मुझे हेलो फरमाइश और हेलो सहेली, इसके अलावा पिटारा के तहत में जो आता है, पहले सेहतनामा आता था, अभी सहेली लाइट के सितारे शुरू किए हैं, और इस तरह के जो कार्यक्रम आते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं। और जब रात में हवा मेल आता है ना 8 बजे, उसका तो हम सबसे बड़े फैन हैं।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। आपने तो सभी कार्यक्रमों के नाम ले दिए क्योंकि सभी कार्यक्रम आपको पसंद है, यानी आप तो सुबह से शाम सुनते ही सुनते हैं विविध भारती। जरा ये बताइए कि इस समय जो आप हमें कॉल कर रहे हैं, खेत से कर रहे हैं क्या?
1: इस समय तो हम घर पे ही हैं, अभी गर्मी का टाइम है ना, तो खेत में अभी काम कुछ भी नहीं बचा है, बस फसल निकाल के घर ले आए हैं। खेत को कुछ समय के लिए खाली कर छोड़ दिया है, तब बरसात हो गई है तो सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी जुलाई में।
0: अच्छा, तो जरा ये बताएंगे आज कौन सा गाना सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है अर्पण और गाने के बोले, लिखने वाले ने लिख डाला मिलन के साथ जुदाई, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में ये गाना, काफी अच्छा लगता है।
0: जी गाना है ही अच्छा, इसका गीत संगीत दोनों बहुत अच्छा है। सुनिए अब अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश,
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती विदर्भ महाराष्ट्र से हिम्मतराज श्रृंगारे बात कर रहा हूँ। दीदी आपका पुराना श्रोता।
0: हिम्मत भाई नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। अब आप अपने बताएं, क्या हाल चाल है आपके?
1: मैं अच्छा हूँ दीदी।
0: क्या चल रहा है आजकल?
1: आजकल कुछ नहीं दीदी, काम पर था, काम पर से अभी फोन लगाया मैंने।
0: अच्छा, तो आप बताएं वहाँ पर क्या काम करते हैं अमरावती में?
1: मैं मजदूरी का काम करता हूँ दीदी।
0: अच्छा, तो इस समय छुट्टी लेकर आए हैं फोन लगाने के लिए? चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने छुट्टी ली तो वो छुट्टी जो है हो गया कि आपका काम बन गया उस छुट्टी में।
1: आपकी आवाज़ सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सिपन दीदी हमारे आमने सामने बैठी है रेडियो के।
0: देखिए रेडियो ऐसा माध्यम है हिम्मत भाई कि ऐसा लगता है कि हम सब आमने सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बताएं अमरावती के क्या हालचाल है? खूब गर्मी पड़ रही है
1: अमरावती विदर्भ में, बहुत गर्मी दीदी, इधर पारा बहुत गर्म है दीदी, 70 डिग्री सेल्सियस है दीदी, 47 है।
0: तो ये बताइए कि गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं?
1: मैं तो दीदी छतरी लेके जाता हूँ साइड पर, कान को बांधता हूँ कपड़े और ठंडा पानी पीता हूँ और समय पर भोजन करता हूँ दीदी और शाम में 5 बजे घर पे आता हूँ।
0: आप जरा बताएं आज कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: पूरी जब जब जुल्फे तेरी और आशा भोसले यानी मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाना है दीदी।
0: तो चलिए अब पहुंच रहा है अमरावती में आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: आंखों में रहने वालों को याद नहीं करते, दिल में रहने वालों की बात नहीं करते। आप तो हमारी रूह में बसे हैं, इसलिए मुलाकात की फरियाद नहीं करते।
0: अरे वाह भाई वाह, ये कौन शायर आए हैं भाई, जरा बताएं अपना नाम तो बताएं।
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम।
0: दिलीप पाहुजा जी ने उदयपुर से झीलों की नगरी से हमें फोन किया है। गर्मी के क्या हाल चाल है उदयपुर में?
1: गर्मी तो 40-42 के आसपास चल रही है।
0: ऐसे में आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: अभी थोड़ा ठंडा है।
0: गर्मी के मौसम में कामकाज बहुत इफेक्ट करता होगा, क्योंकि इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपका किस चीज का काम है?
1: टेलरिंग व्यवसाय है, मतलब सिलाई का।
0: अपनी शॉप है?
1: जमा कोट वगैरह। अभी भैया की शॉप है।
0: अरे वाह क्या बात है। आप जेंट्स टेलर हैं और या लेडीज टेलर हैं या दोनों, लेडीज जेंट्स?
1: जेंट्स।
0: अच्छा,
1: जेंट्स ओनली।
0: तो गर्मी का मौसम है तो कामकाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपका? आपको जल्दी जल्दी देना पड़ता होगा, तो उसके लिए कारीगर ज्यादा लगाने पड़ते होंगे।
1: कारीगर तो ज्यादा ही है मैडम, मालिक की कृपा से, और उनको टाइम पे भी मिल जाते हैं कपड़े।
0: क्या बात
1: लेकिन
0: है।
1: इस बार थोड़ी सी शादियां कम है।
0: अच्छा,
1: इस हिसाब से थोड़ा फर्क है।
0: अच्छा,
1: पर्यटकों की तो भारी धूम मची हुई है अभिषान के अंदर।
0: हम इसी पॉइंट पर आने वाले थे, वही बात आपने छेड़ दी कि भाई उदयपुर और राजस्थान में पर्यटकों के क्या हाल चाल है, भाई इतनी गर्मी में भी पर्यटक हैं या नहीं है?
1: जी बिल्कुल है मैडम, 12 ही महीने उदयपुर के अंदर पर्यटक मिलेंगे ही मिलेंगे।
0: जी जी जी,
1: चाहे गर्मी कितनी भी हो।
0: तो ये बताएं कि उदयपुर में और चीजें ऐसी क्या हैं जो देखी जा सकती हैं झीलों के अलावा?
1: झीलों के अलावा तो एक मानसून पैलेस है, और वो भी अच्छा है। थोड़ा सा ही आगे कुंभलगढ़ है, और 40-45 किलोमीटर की दूरी पर नाथद्वारा सिद्धनाथ जी का शानदार मंदिर है।
0: जी जी,
1: उसके बीच में एकलिंगपुरा जी का, एकलिंगपुर मतलब एकलिंगगढ़ के नाम से महादेव जी का मंदिर है, और अभी पिछले 3-4 वर्षों में नया एक वैष्णो देवी माता का मंदिर है, उदयपुर में ही हमारे सिंधी समाज के द्वारा ही बनाया गया है, निर्मित किया गया है।
0: अच्छा,
1: सेम टू सेम जैसा वैष्णो देवी में बना हुआ है, जोत भी वही वैष्णो देवी माता जी से ही आई थी, और लंगर 12 ही महीने चालू रहता है।
0: अच्छा, अब ये बताएं कि हमें इंतजार है इस बात का कि आप बताएं अपने पसंद का फिल्मी गाना आज के कार्यक्रम के लिए।
1: एक रफी साहब का गाना याद आ रहा है मुझे।

0: हेलो फरमाइश
1: शेफाली बहन को नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। और
1: आज हमारे मन में इच्छा थी कि शेफाली बहन से बात करेंगे, तो आज पूरी हो गई।
0: क्या बात है, तो हम जाने कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: जी मैं आपका बड़ा भाई उदयलाल टेलर उदयपुर से बात कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, जरा हालचाल तो बताएं अपने।
1: हालचाल हमारा मस्त है, गर्मी 44 डिग्री चल रही है और राजस्थान में गर्मी बहुत ही होती है।
0: जी राजस्थान की गर्मी तो फेमस है। उदय भाई वहाँ पर क्या काम काज है?
1: हमारा टेलरिंग का काम है, जेंट्स कपड़ों की सिलाई करते हैं।
0: क्या बात है भाई।
1: मैं 55 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ और अभी मेरी उम्र है 74 साल।
0: क्या बात है, 55 साल से आप विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं।
1: जी
0: आपने इन 55 सालों में बहुत बदलाव देखे हैं विविध भारती
1: जी,
0: में।
1: मैंने सबसे पहले तो वाल वाले रेडियो सुने थे, उसके बाद में चार चार सेल वाले ट्रांजिस्टर आए थे, फिर 2 सेल वाले आए थे
0: जी,
1: और अभी तो मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं।
0: सबसे
1: परिवर्तन हुआ है।
0: अच्छा ये बताएं कि सबसे ज्यादा आनंद कहाँ सुनने में, कैसे सुनने में आया? मोबाइल पर अब आप ज्यादा अपने को सहज महसूस कर पाते हैं या पहले जमाने में जैसे आप सुनते थे उसमें अपने को सहज महसूस करते थे?
1: नहीं, रेडियो पर जो आनंद आता था वो मोबाइल में नहीं आता है।
0: ये बात बिल्कुल आपने सही कही है।
1: समय होता उसके 5 मिनट पहले से हम वो ट्यून कोशिश करते।
0: सही कह रहे हैं,
1: ट्यून बड़ी अच्छी लगती थी।
0: जी जी जी, तो अभी भी रेडियो अपने पास रखा है या नहीं रखा है?
1: नहीं रखा है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आज बंद है।
0: हाँ तो ये पुरानी यादें हैं जो हमेशा साथ रहती हैं।
1: जी जी।
0: तो अब ये बताएं दिल खुश करने वाला वो कौन सा गाना है जो आपने हेलो फरमाइश के लिए आज पसंद किया है?
1: फिल्म वो कौन थी का काल जी गाना है, लता जी की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान साहब के शब्द है
0: जी,
1: और मदन मोहन जी की मधुर धुन है
0: जी,
1: लग जा गले
0: जी,
1: हसी रात फिर हो न हो।
0: कालजयी गाना है, इसकी तो कोई बराबरी ही नहीं। अद्भुत गायकी, अद्भुत संगीत और कमाल के बोल हैं इसके। अब सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

तो साथियों, घड़ी की सुइयों ने कर दिया इशारा कि आज के लिए बस इतना ही। आपकी बातचीत और आपकी फरमाइशें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हम सिर्फ गाने नहीं सुन रहे हैं, दिलों को जोड़ रहे हैं। साथियों, जिंदगी चाहे जितनी तेज क्यों न हो जाए, एक अच्छा गीत हमें हमेशा कुछ पल ठहरना सिखा देता है। बहरहाल, आपको बता दें कि फोन पर हमारी अगली मुलाकात होगी अगले सप्ताह सोमवार को सुबह 11 बजे से विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से हम रिकॉर्ड करेंगे फोन पर आपसे की गई बातचीत। तो हमारे टेलीफोन नंबर्स फटाफट नोट कर लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 400-24662, नंबर एक बार फिर से 400-24662, मुंबई का STD कोड है 022022। चलिए अब हमारा दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 2867-0288, 2867-0288। और हाँ, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन, जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए, वे कृपया 2 माह के बाद ही हमें कॉल करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी उनके इस पसंदीदा कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिल सके। चलते चलते आपको ये भी बता दें, आज के कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस सुंदर सजीले कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। साथियों, रिश्ते सिर्फ मुलाकातों से नहीं, एहसासों से भी बनते हैं। तो हम फिर मिलेंगे इसी स्नेह और अपनेपन के साथ। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के चोरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 110.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आप जानेंगे हमारे केंद्र से प्रसारित शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में। सबसे पहले जानकारी लेते हैं प्रथम सभा के शेष रहे कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के बारे में।

अब से थोड़ी ही देर बाद 11:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन पाएंगे दोपहर 12:00। लोक संगीत के कार्यक्रम माटी के स्वर का प्रसारण समय होगा दिन के 12:30 का। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उम्मेद सिंह सैनी और साथियों को। आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे दिन में 1:00। महिलाएं अपना कार्यक्रम महिला जगत सुनेंगी दिन में 1:05 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले मिड डे न्यूज का प्रसारण होगा दोपहर 2:00। दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही होंगे दोपहर 2:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। ये सभी कार्यक्रम थे प्रथम सभा के शेष रहे। आइए अब जानकारी लेते हैं सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के बारे में। हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होगी 5:00 कार्यक्रम युववाणी के साथ। शाम 6:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही होंगे 6:05 पर। संस्कृत में समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से ही होगा 6:20 पर।

शाम 6:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से ही होंगे शाम 6:45 पर। जिले की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी जयपुर से ही आप सुन पाएंगे शाम 6:40 पर। कार्यक्रम खेती और गृहस्थी आप सुनेंगे शाम 7:00। रात्रि 8:00 आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार संध्या का प्रसारण होगा रात्रि 8:45 पर। न्यूज एट 9 का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से ही होगा रात्रि 9:00। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बाता ही चाले। ईमेल आधारित राजस्थानी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गोरबंद होगा रात्रि 10:00। 10:30 का समय रहेगा शास्त्रीय संगीत के लिए। सभा के अंत में हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 11:00। अंग्रेजी में समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से ही होगा रात्रि 11:05 पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, जिसमें आपने जानकारी प्राप्त की थी हमारे केंद्र से प्रसारित शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में।

ये आकाशवाणी का चोरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत की पहली गीत को आप सुन रहे हैं बाबुल सुप्रियो सुनिधि चौहान की आवाजों में। फिल्म का नाम आई प्राउड टू बी

चित्रपट संगीत में अभी आप सुन रहे हैं समीर की शब्द रचना को हिमेश रेशमिया के संगीत में। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम इंसान।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: अभी आप अपने रेडियो सेट पे सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत, जिसका प्रसारण आकाशवाणी के चूरू केंद्र से किया जा रहा है FM 100.1।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अभी आप सुन रहे थे इश्क है तुमसे फिल्म का गीत। आवाजें थी उदित नारायण, अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की। इस गीत को लिखा था समीर ने और धुन बनाई थी।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं समीर की शब्द रचना को अनु मलिक के संगीत में। फिल्म है इश्क विश्क, आवाजें अलका याग्निक और कुमार सानू की।

0: आकाशवाणी चूरू क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक कम लागत में अधिकतम पहुंच यही है आपका सही निवेश आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अब आपको सुनवा रहे हैं जान की कसम फिल्म का गीत। आवाजें हैं अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू की। इस गीत को बोल दिए हैं समीर ने और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति को। फिल्म थी राजा भैया। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का था।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अभी आप सुन रहे थे इंदिवर की शब्द रचना को राजेश रोशन के संगीत में। आवाज थी कविता कृष्णमूर्ति की, फिल्म का नाम कोयला।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का अंतिम गीत अभी आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौड़ की आवाज पे। फिल्म थी रब ने बना दी जोड़ी। इस गीत को कलमबद्ध किया था जयदीप साहनी ने और संगीत सलीम सुलेमान का था। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं NCE

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
1: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। उन्हें मैं

0: कभी कभी थातु मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थातु, क्यों ना हम चांद पर चले? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाता के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाता खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
1: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
0: थातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थातु और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातु का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थातु अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थातु, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थातु मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
1: अब सो जाओ।
0: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थातु से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम थातु और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे

0: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्धवीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
1: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
0: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारीगण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
1: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
3: हाँ।
1: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
0: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
1: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
0: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
1: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
0: समय की

सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी

0: खाइयां खोल देना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
1: जी सुबेदार साहब।
0: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
1: जी सुबेदार साहब।
0: बोले सोनिहा।
2: सत श्री अकाल।
3: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय, कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
5: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संकीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संकीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
0: तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
2: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं उम्मेद सिंह सैनी और साथियों को।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

उम्मेद सिंह सैनी और साथियों की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। कार्यक्रम था माटी के स्वर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 110.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित करेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में नीट यूजी परीक्षा को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जून में होने वाली अगली परीक्षा की फीस नहीं ली जाएगी। श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले साल से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को और मजबूत करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीबीआई नीट पेपर लीक मामले की तह तक जाएगी।
1: सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा

0: कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगा। हाँ, निश्चित रूप में एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया, इसको सुधार किया ही जाएगा।
1: गौरतलब है कि नीट परीक्षा 2026 3 मई को हुई थी, किंतु पेपर लीक होने के कारण इसे निरस्त कर दिया गया। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है, बढ़ी हुई दरें आज से ही लागू हो गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की है। श्री शर्मा आज जयपुर में राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। ईंधन बचत अभियान के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय से श्री शर्मा ईवी वाहन में कार्यक्रम में पहुंचे। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं।
2: राज्य में अभी तक 1,76,000 से अधिक उपभोक्ताओं के सोलर रूफ टॉप प्लग लगाए जा चुके हैं। राज्य में स्वच्छ ऊर्जा की को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के अंतर्गत राज्य में 250 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी।
1: खैरथल तिजारा जिले को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए हो रहे कार्यक्रम से मुख्यमंत्री श्री शर्मा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव वीसी के जरिए जुड़े हैं। ईंधन बचत अभियान को लेकर जागरूकता संदेश देने के लिए इस कार्यक्रम में ये लोग वर्चुअल भागीदारी कर रहे हैं। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की आज 16वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्हें नमन किया है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने लिखा कि श्री शेखावत ने भारतीय राजनीति में सुशासन, संवेदनशीलता और जनसेवा की अमिट छाप छोड़ी। गरीब, किसान और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए उनका जीवन प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर श्री शेखावत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भीलवाड़ा जिले के मांडल चौराहे पर आज एक तेज रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके साथ ले जाए जा रहे चोरी के आरोपी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और कुछ देर यातायात बाधित रहा। हादसे के शिकार पुलिसकर्मी चित्तौड़गढ़ जीआरपी थाने में पदस्थापित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत सुनने वाली सभी श्रोता बहनों का स्वागत है उनके अपने पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत में। और आज का महिला जगत लेकर आपके साथ हूँ मैं संगीता रोहिला। तो स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार।

इसीलिए सभी सदस्यों को चाहिए कि वो सभी मिलकर सारे जिम्मेदारियों को संभालें और सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार सबके साथ रखें, ताकि जो रिश्तों की डोर है वो हमेशा बनी रहे, क्योंकि रिश्तों की डोर से बंधा है परिवार, सुख दुख में देता है साथ हर बार, खुशियों का सागर प्यार का किनारा, इसके बिना जीवन अधूरा हमारा। जी बहनों, परिवार के बिना जीवन अधूरा है और यही बात हमें सिखाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। जी बहनों, आज है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की, क्योंकि बहनों परिवार सिर्फ खून के रिश्तों का नाम नहीं है, यह वह भावनात्मक जुड़ाव है जो हमें हर मुश्किल घड़ी में संभालता है। दुनिया के तमाम कोनों में परिवार को जीवन की नींव माना जाता है और इसी सोच को मन में रखकर हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि चाहे हमारी दुनिया कितने भी व्यस्त क्यों न हो, परिवार की भूमिका सबसे अहम होती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिन दुनिया भर में परिवारों की सामाजिक, आर्थिक और हम कह सकते हैं सांस्कृतिक अहमियत है उसको समझाने और उनकी भलाई के लिए काम करने का प्रतीक है। बहनों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस सबसे पहले 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता दिए जाने के बाद 1994 से इसे आधिकारिक रूप से मनाया जाने लगा है। इसका उद्देश्य यह है कि दुनिया भर में परिवारों की अहम भूमिका को उजागर किया जाए और संस्कारों का ध्यान रखकर उनकी जरूरतों और अधिकारों की ओर आकर्षित किया जाए। बहनों, परिवार वह जगह होती है जहाँ एक बच्चा बोलना, चलना, प्रेम करना, सहजना, समझना सीखता है। समाज में किसी भी व्यक्ति के अच्छे संस्कार, उसके व्यवहार और उसकी सोच है, वो उसकी शुरुआत है, वो घर से ही होती है। इसलिए कहा जाता है कि एक मजबूत परिवार ही एक मजबूत समाज की नींव रखता है और इस परिवार है उसी के साथ हम अपनी उन्नति है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि परिवार के बिना हम आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि परिवार ही हमारी पहली पाठशाला होती है। परिवार में बच्चा हर एक काम को सीखता है और व्यवहार को सीखता है और उसका नाम भी उसके परिवार से ही जाना जाता है। बहनों, आज की तेज रफ्तार भरी दुनिया में व्यक्तिगत आज़ादी और डिजिटल दुनिया के कारण संयुक्त परिवार तेजी से सिमटते जा रहे हैं। इसका सीधा असर बच्चों की परवरिश, उनके बुजुर्गों की देखभाल और भावनात्मक स्वास्थ्य पर पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र परिवार दिवस के जरिए हमें यही संदेश देता है कि व्यक्तिगत विकास के साथ साथ पारिवारिक संबंधों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। आजकल हर व्यक्ति मोबाइल या गैजेट्स में व्यस्त हो गया है, परिवार साथ होते हुए भी मानसिक रूप से दूर होते जा रहे हैं। एक घर में ही कितने ही लोग हैं वो सब मोबाइल पर बैठे रहते हैं। हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, वो सब विश कर दी जाती है, लेकिन जहाँ घर में सब लोग साथ में रहते हैं उनका जन्मदिन और जो शादी की सालगिरह है वो याद ही नहीं आती है। तो ऐसा माहौल बिल्कुल भी ना हो, परिवार की अहमियत समझे और परिवार को पूरा समय अपना दे, ताकि हम अपने परिवार के साथ बंधे रहें। यही उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हमें यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या हम अपने बुजुर्गों को उतना सम्मान और समय दे पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। दादा दादी, नाना नानी का अनुभव, कहानियाँ और संस्कार किसी भी बच्चे के लिए अमूल्य होते हैं, जिन्हें संरक्षित रखना बेहद जरूरी है। आजकल ये हो गया है कि परिवार का मतलब सिर्फ माता पिता तक सीमित रह गया है, लेकिन परिवार के अंदर हमारे दादा दादी, नाना नानी, बुआ, चाचा, ताऊ, ये सब शामिल होते हैं। यहाँ तक कि हमारे आसपास का जो पड़ोस है वो भी एक तरह से हमारे परिवार में आता है। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इन सभी पारिवारिक संरचनाओं को महत्व देता है। ये बताता है कि परिवार के बिना हमारा जीवन एक तरह से कुछ भी नहीं है। इसीलिए परिवार की हमें संस्कृति को समझना है, हमारी संस्कृति को मजबूत बनाना है, क्योंकि भारतीय समाज में परिवार को हमेशा एक पवित्र संस्था के रूप में देखा गया है। यहाँ परिवार केवल बंधन नहीं बल्कि हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारी परंपरा है। संयुक्त परिवारों की परंपरा आज भी गाँव में और थोड़ी बहुत देखी जा सकती है, लेकिन इसी के कारण हमारी जड़ें एक तरह से कह सकते हैं मजबूत बनी हुई है। बाकी तो संयुक्त परिवार धीरे धीरे विघटित होते जा रहे हैं और उसका रूप एकाकी परिवार लेते जा रहे हैं, जिनके कारण बच्चों में संस्कारों की कमी आ रही है। हम देख रहे हैं कि बच्चे हैं वो उतने संस्कारी अब नहीं है और उसका कारण यही है कि वो परिवार में नहीं रहते। आर्थिक युग आ गया है, माता पिता कमाने के लिए बाहर रहते हैं, बच्चा उनके साथ रहता है, ना वो दादा दादी के संपर्क में आता है, ना नाना नानी के संपर्क में आता है, और उनका संपर्क एक तरह से परिवार वालों से टूट जाता है, और फिर परिवार वालों के से टूटने के कारण उनमें जो संस्कार आने चाहिए वो नहीं आ पाते हैं। तो परिवार से जुड़े लोग अगर हम कहें तो मानसिक रूप से ज़्यादा संतुलित रहते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं और तनाव मुक्त रहते हैं।

और साथ ही जीवन की हर चुनौती का सामना आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि एक मजबूत परिवार उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो परिवार का महत्व हम समझें, इसीलिए हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के दिन ही नहीं बहनों, हमेशा हमें अपने परिवार का महत्व समझना है और हमें ये मानना है कि परिवार के बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं है। परिवार उसके साथ है तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करके

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: अंतराल के बाद बहनों फिर से प्रोग्राम की ओर चलते हैं और अब बात करते हैं हमारे हौसलों की और किस तरह से हम असफलता से आगे बढ़ने के लिए सीख लेते हैं, क्योंकि बहनों सब संभव होता है यदि दृढ़ इच्छा रहती है। फूल अगर संकल्प

सफलता खुद चलकर बाहें फैलाकर उनके पास आती है। वो कारण ढूंढे जिसने आपको असफलता का स्वाद चखाया है। पिछली गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ें, बेहतर योजना और प्रारूप तैयार करें, विषय की अधिक जानकारी लें और अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। तन मन से लगातार मेहनत करें, ऐसा समय आएगा कि वो दिन दूर नहीं जब मंजिल आपके नजदीक होगी। हमेशा यह तय करके रखें कि एक समय में एक ही काम करें और ऐसा करते समय उसमें अपनी पूरी आत्मा लगा दें, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हम एक काम के साथ कई काम शुरू कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि इस काम में सफलता नहीं मिलेगी तो इसमें मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी तो किसी न किसी काम में तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा करना दो नावों की सवारी के समान हो जाता है और दो नावों की सवारी हमें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती है, ये हम सभी जानते हैं। इसीलिए जब भी आप काम करें, एक समय में एक काम करें।

जीवन में सफलता पाने के लिए सकारात्मक सोच रखें, कड़ी मेहनत करें, आत्मविश्वास रखें और धैर्य और अनुशासन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम धैर्य नहीं रखेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सफलता है वो धैर्य की ही परीक्षा है कि हम कितना धैर्य रख पाते हैं, किस काम को कितने धैर्य से कर पाते हैं। अगर हमें धैर्य रखने की आदत है, हम धैर्य रख पाते हैं तो बड़ी ही अच्छी तरह से हम अपना काम करते हैं, और अगर धैर्य से काम किया जाता है तो उसमें सफलता भी जरूर मिलती है। बहनों, सफलता कोई अंतिम मंजिल भी नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसे सही समय प्रबंधन और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता से हासिल किया जा सकता है। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं और हम सोचते हैं कि नहीं, ये काम मुझे करना ही है, होगा या नहीं होगा ऐसा हमें नहीं सोचना है, उस समय तो हमें सोचना है कि करना है, और करना है तो उसमें हमें अपना पूरा कह सकते हैं पूरी आत्मा झोंक देनी है, तन मन धन से ही वो काम करना है, तो उसमें निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। लेकिन हम मन में ही विश्वास नहीं रखेंगे, हमारे मन में ही द्वंद्व रहेगा कि ये काम इस तरह से किया जाए या नहीं किया जाए, इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या मुझे इसके साथ दूसरा काम करना चाहिए, इस तरह की भावनाएं जब मन में आ जाती हैं तो हम सफलता से थोड़ी दूर हो जाते हैं। अगर दृढ़ विश्वास रखेंगे, धैर्य रखेंगे और निरंतर लगातार मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि विश्वास के साथ धैर्य रखना सफलता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बड़े परिणाम है बहनों उस समय लेते हैं। आलस्य त्याग कर लगातार मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ काम करना ही सफलता की कुंजी हो सकती है। इसके लिए लगातार सफलता के लिए काम करें और परिणामों की जिम्मेदारी है वो हम कह सकते हैं कि असफलता या सफलता की जिम्मेदारी खुद लें, ये नहीं है कि दूसरों पर या परिस्थितियों पर मत दें। परिस्थितियाँ भी विपरीत भी आती हैं और अनुकूल भी आती हैं, लेकिन उन विपरीत और अनुकूल परिस्थितियों में हमें हमेशा धैर्य रखना होता है, क्योंकि कहा भी जाता है कि धाराएं प्रतिकूल नहीं होती तो नाविक की परीक्षा क्या होगी। नाविक की धैर्य की परीक्षा तभी होती है जब धाराएं प्रतिकूल होती हैं। तो धाराएं प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, आपको मेहनत है वो लगातार करनी है, परिस्थितियों से घबराना नहीं है, और निरंतर और लगातार जब आप प्रयास करेंगे, अपनी असफलताओं से सीखते रहेंगे तो निश्चित रूप से

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ,
2: नए सत्र में पहले 100 प्रवेश पर फीस में 25% की छूट।
1: कृषि, विज्ञान, कॉमर्स व कला सभी विषय उपलब्ध।
2: बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति।
1: अनुभवी स्टाफ, सुरक्षित वाहन सुविधा और शानदार परिणाम।
2: हजारों छात्र आज सरकारी सेवाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में।
1: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ 9413360।
3: अंतराल के बाद बहनों फिर से प्रोग्राम की ओर चलते हैं और हम बात करते हैं हमारे घर परिवार की। जी बहनों, हमारा घर परिवार है वो, उसकी जिम्मेदारी हम कह सकते हैं महिला होने के नाते हमारे ऊपर ज़्यादा होती है, और जब जिम्मेदारी होती है तो हमें उस जिम्मेदारी को समझना भी होता है। लेकिन जब हम अपने परिवार की जिम्मेदारी समझते हैं, हम अपने प्रति जो जिम्मेदारी होती है उसको भूल जाते हैं। तो हमें अपने प्रति जो जिम्मेदारी है उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार होता है कि महिला का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता जाता है और उसकी तरफ महिला ध्यान नहीं देती है, और उसके बाद अचानक किसी बीमारी का

करवाते रहना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे भी सोचते हैं कि पहले से कोई जांच वगैरह करवाना कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि वो ठीक महसूस कर रहे हैं, लेकिन बात वो नहीं है। नियमित स्वास्थ्य जांच कराने से यह सुनिश्चित होता है कि किसी का शरीर है वो स्वस्थ।

उपचार की प्रगति जांच करने के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति के साथ साथ चल रही बीमारी वाले लोगों के लिए पूरे शरीर की जांच आवश्यक है। नियमित स्वास्थ्य जांच से कुछ बीमारियों के जोखिम कारकों की पहचान

ध्यान दें, और फिर अगर हम जांच करवा लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बीमारियां इतनी शुरुआती स्तर पर रहती है कि हम अपने खान पान में, अपने जीवन शैली में बदलाव करके ही उन बीमारियों से लड़ सकते हैं। वो उम्मीद नहीं, वो स्टेज नहीं आती है कि हमें उसके लिए दवाइयाँ लेनी पड़ेगी या किसी तरह का, जो कह सकते हैं, रेस्ट करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति नहीं आए इसके लिए समय समय पर स्वास्थ्य जांच है वो करवाते रहना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ जीने की संभावना है इससे और अधिक बढ़ जाती है। देर से निदान की जोखिम है वो भी कम हो जाती है, और किसी भी गंभीर या जीवन घातक स्थिति का समय से पता लग जाता है तो समय से उसका उपचार है वो, उसकी संभावना बढ़ जाती है, और इलाज का खर्च है एक तरह से वो भी कम हो जाता है, क्योंकि अचानक बहुत बड़ी बीमारी आती है तो एक साथ बहुत खर्चा है वो भी आ जाता है। तो साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच करवाने की सलाह तो हम देते हैं कि करवानी चाहिए, क्योंकि कई स्वास्थ्य समस्याओं के शुरुआती चरण में अगर कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं और जब लक्षण प्रकट होते हैं तब तक रोग है वो बहुत चरम अवस्था तक पहुँच जाता है। यह स्वास्थ्य समस्याओं का शीघ्र पता लगाकर उसका सबसे आसान तरीका है कि आप समय समय पर जांच करवाते रहिए। और चिकित्सा स्वास्थ्य की जांच के लिए हमें, उससे पहले हमें सावधानियां जाननी जरूरी है कि कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी है। बहनों, डॉक्टर के निर्देश

वो 10-12 घंटे के उपवास की आवश्यकता होती है। तो जब भी आप ऐसे परीक्षण करवाने के लिए जाएं तो आप खाली पेट जाएं, क्योंकि कई बार पता नहीं होता है, फिर जाके हमारा समय खराब होता है। तो अगर ऐसी जांच है वो की जाती है तो उस समय आप जहाँ तक कोशिश करें कि खाली पेट जाएं, और समय समय पर स्वास्थ्य जांच है वो बीमारियों का जल्दी पता लगा के उन्हें गंभीर होने से रोकने से हम सही समय पर वहाँ पहुँच जाते हैं। और कई बार होता है प्रारंभिक पहचान अगर बीमारियों की हो जाती है, जैसे मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, अगर शुरुआती चरण में हमें पता लग जाता है तो उसके हम इलाज करवा सकते हैं। समय पर जांच से बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है और भविष्य में

वर्ष के बाद अगर दीर्घकालिक बीमारियों की निगरानी के लिए आपको जांच करानी है, आपकी हड्डियों का घनत्व है उसकी जांच करानी है, आपके हार्ट की जांच करवानी है, आपके हार्ट कार्यप्रणाली कैसी है, आपके शरीर के अन्य अंग हैं किस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो इस तरह की जांचें जब आप करवाते रहेंगे तो आप एक तरह से कह सकते हैं स्वस्थ जीवन जीने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। क्योंकि कई बार होता है कि घर परिवार में ऐसी अनुवांशिक बीमारी होती है जो आगे वाली पीढ़ी में आने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर ऐसा कोई बीमारी आपके घर परिवार में अनुवांशिक बीमारी है जो आगे की पीढ़ी में आने की संभावना होती है, उन व्यक्तियों को तो अवश्य जाँच करवाते रहना।

से मिलने वाले होमवर्क के लिए रोज 1 घंटे का समय निकालना। बच्चे को हमें सिखाना है कि चाहे आपका होमवर्क जो मिला है उसे रोज 1 घंटे में पूरा कीजिए। बच्चा भी जानता है कि दिन के केवल 1 घंटे पढ़ना है, तो वह ध्यान लगाकर उस काम को करेगा। इसके बाद वह जैसा समय बिताना चाहता है उसे बिताने दे, कोई पाबंदी या रोक टोक ना करें, क्योंकि ये छुट्टियां हैं और छुट्टियों में बच्चा अपने हिसाब से काम करता है। और कई बार होता

चाहे तो इसकी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें पूछ भी सकते हैं कि बच्चा कौन सा कौशल है वो सीखना चाहता है या कौन से कौशल को सीखने में उसकी रुचि है। अगर उसी के हिसाब से काम करेंगे तो बच्चा बेहतर सीख पाएगा, क्योंकि जो भी जिस काम में भी रुचि होती है उसमें बच्चा मन लगाकर सीखता है और वो बेहतर तरीके से सीख पाता है। और ये ध्यान रखें कि बच्चा पूरी तरह मोबाइल टीवी पे ना लगा रहे, और ये भी ध्यान रखें कि वो अगर ये बंद करवाते हैं तो चिड़चिड़ा भी ना हो जाए। बेहतर होगा कि आप इसके लिए एक समय तय रखें कि जैसे कि 1 घंटा, ताकि उसे इंतजार भी रहे और संतुलन भी बना रहे। बाकी समय के लिए उसके साथ बैठकर पजल पजल है वो सॉल्व करें, कहानी सुनाएं।

यादगार भी बनाते हैं। इसमें रिश्तेदार और पड़ोस के बच्चों को बच्चे हैं उनको भी बुला सकते हैं, और इस तरह से बच्चा है वो पूरी तरह से उसमें लगा रहेगा, वो प्रकृति के साथ भी जुड़ेगा, प्रकृति को नज़दीक से देखेगा। उसी समय आप बच्चों के गार्डन में अगर कैंपिंग

ऐसे ही बनाओ या परफेक्ट बनाओ, ऐसा अगर हम बच्चों को कहेंगे तो बच्चा दबाव महसूस करता है। उसे आज़ादी दें, वो जैसा काम करना चाहता है उसे करने दें, और हमेशा यही कहें कि नहीं तुम बेहतर कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा करते हो। ऐसी बातें अगर बच्चे को कहेंगे तो वो बड़े ही मन लगा कर काम करेगा और उसे लगेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और खुद को खुलकर व्यक्त करेगा। इसीलिए बच्चों को जिस तरह से वो काम करना चाहे उसे करने दें। हाँ, जब वो काम हो जाता है उसके बाद अगर आपको लगता है कि उसमें थोड़ी कमी है और उसको इस तरह से सुधारा जा सकता है, तो थोड़े सुझाव काम करने के बाद बच्चों को दिया जा सकता है कि आगे फिर कभी तुम ये काम करो तो इस तरह से करोगे तो ये

धार्मिक अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाना, जिवेनों जो अल्पसंख्यक है उनको हर क्षेत्र में सशक्त बनाना इस 15 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य है। और इसी के अंतर्गत उर्दू शिक्षण के लिए और अधिक संसाधन है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। उन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में उर्दू भाषा के अध्यापकों की

प्राप्त हो, ताकि वो देश के विकास में अपना योगदान दे सके। तो बहनों, ये कार्यक्रम है, ये अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाए जाते हैं, और ऐसे ही कार्यक्रम में ऐसी ही योजना या ऐसी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप इनका लाभ ले

महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 110.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से पहले 2 बजे मिड डे न्यूज़,

0: last mile connectivity between Central Secretariat and Sevatirth metro stations and key government establishments in the Central Vista region. In badminton, India's top men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semi-finals of Thailand Open. The Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami with 21-12, 21-13 in Bangkok today. Later in the day, Lakshya Sen will face Thailand's Kunlavut Vidithsarn in the men's singles quarterfinals. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Chennai Super Kings at Ekana Stadium in Lucknow this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Earlier, Mumbai Indians defeated Punjab Kings by 6 wickets at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Tilak Verma was adjudged player of the match. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discuss energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchange key MOUs in defence, petroleum and investments. BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NETUG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Rotindra Bosho elected new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की दोनों नेताओं के बीच रक्षा पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की
2: ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और बिंदु का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय राष्ट्रीय एकता सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है होर्मुज को फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है

0: कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबू धाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी देर निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
4: जो एग्जामिनेशन होगी उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा

0: पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई, जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत वितरसरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 110.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं।

0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम तराने नए पुराने में अभी आप सुन रहे थे मोहित चौहान को। फिल्म थी अगली और पगली। इस गीत को लिखा था अमिताभ वर्मा ने और संगीत अनु मलिक का था।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

अभी आप अपने रेडियो सेट पे सुन रहे हैं उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल को। फिल्म है जाने होगा क्या। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत निखिल विनय का है।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: अच्छा तुम ये तो गाओ,
2: तेरे नैना
3: तेरी नैना तेरी।
1: तुम ऐसा करो, ये गाओ,

फिल्म संगीत के कार्यक्रम तराने नए पुराने में अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की शब्द रचना को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में। आवाजें थी सुरेश वाडकर और अनुराधा पोटवाल की। फिल्म का नाम भ्रष्टाचार।

तराने नए पुराने फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को के अंतिम गीत को अभी आप सुन रहे थे चांदनी चौक टू चाइना फिल्म से। आवाजें थी शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की। इस गीत को कलमबद्ध किया था रजत अरोड़ा ने और संगीत था शंकर एहसान लोय का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चोरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होते हैं। सायंकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

जी दोस्तों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है युवाणी और आज का हमारा खास सेगमेंट रहता है हेल्थ एंड फिटनेस। दोस्तों, सेगमेंट की बात तो हम हमेशा करते ही हैं और आज के खास दिन की अगर हम बात करें तो हर साल 15 मई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें परिवार के महत्व, रिश्तों की मजबूती और आपसी प्रेम की याद दिलाता है। दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो जाए, लेकिन दिन के अंत में उसे अपने परिवार की ज़रूरत होती है। परिवार ही वो जगह है जहां हमें बिना किसी शर्त के प्यार मिलता है, सहारा मिलता है और जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। परिवार की अहमियत वही जानता है जो बदलते समय में रिश्तों की चुनौतियों को स्वीकार करे और उन छोटे छोटे प्रयासों पर काम करे जिनसे परिवारों में खुशियां बरकरार रह सकती है। परिवार वही होता है जहां प्यार, सम्मान और अपनापन आपको महसूस हो। और परिवार केवल एक घर में रहने वाले लोगों का समूह नहीं, बल्कि एक एहसास है जहां हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, अपनापन महसूस करते हैं। आज के आधुनिक समय में जो जीवन है बहुत तेज हो गया है, लोग काम, करियर और मोबाइल की दुनिया में इतने व्यस्त हो गए हैं कि परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन सच तो ये है कि परिवार के बिना जो जीवन है वो अधूरा है। एक छोटा बच्चा सबसे पहले परिवार से ही संस्कार सीखता है। धन्यवाद, माफ कीजिए, बड़ों का सम्मान, प्यार बांटना, ये सभी बातें स्कूल से पहले घर में सिखाई जाती है। इसीलिए परिवार समाज की पहली पाठशाला माना जाता है। और अगर बात करें परिवार के साथ हमारे भावनात्मक जुड़ाव की, तो जब भी हम किसी कठिनाई में होते हैं तो सबसे पहले हमारे साथ कौन खड़ा होता है? हमारा परिवार। हम जब बीमार पड़ते हैं तो माँ रात भर जागती है, जब हम हार जाते हैं तो पिता हिम्मत देते हैं और जब हम उदास होते हैं तो भाई बहन मुस्कान बन जाते हैं। परिवार हमें केवल सहारा ही नहीं देते बल्कि मानसिक मजबूती भी देते हैं। आज के समय में तनाव, अकेलापन और डिप्रेशन जैसी आम समस्याएं जो है वो तेजी से बढ़ रही है। ऐसे समय में परिवार का जो साथ होता है वो किसी दवा से कम नहीं होता है। और अगर हम बात करें परिवार के बारे में तो दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, लेकिन एक और बात उतनी ही सच है कि स्वस्थ मन और शरीर के पीछे परिवार का साथ और प्यार बहुत ज़रूरी होता है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मना रहे हैं और परिवार की अहमियत को भी जानते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भावनात्मक सहारे के तौर पर परिवार जो होता है वो बहुत मजबूती का काम करता है। साथ ही हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखने के में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है परिवार। और परिवार जो है वो सहयोग का नाम है। आज की जो तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में लोग काम और जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए हैं, परिवार के लिए समय जो है वो कम होता जा रहा है। इसका असर केवल हम रिश्तों पर ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य पर भी देख सकते हैं। परिवार और स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई वो कड़ी है जिसको हम चाहकर भी अलग नहीं कर सकते हैं। परिवार का हमारे स्वास्थ्य से उतना ही गहरा संबंध है जो हम हमारे परिवार के साथ जोड़े रखते हैं, पूरे परिवार को जोड़े हुए रखते हैं। और जब भी इंसान तनाव में होता है तो परिवार का साथ उसे मानसिक मजबूती देता है। अगर कोई उदास हो, परेशान हो, अकेलापन महसूस कर रहा हो तो परिवार का प्यार और सहयोग उसके मन को शांत करता है। इस तरीके से जो हमारा स्वास्थ्य है, हमारी जो फिटनेस है, वो कहीं ना कहीं परिवार के साथ जुड़ी हुई ज़रूर रहती है। दोस्तों, 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है वो किसी खास उद्देश्य की वजह से ही मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1993 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य लोगों को परिवार के महत्व के

के प्रति जागरूक करना और समाज में पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करना है। हर साल इस दिन एक विशेष थीम रखी जाती है ताकि परिवारों से जुड़ी समस्याओं और समाधानों पर चर्चा हो सके। ये दिन हमें याद दिलाता है कि मजबूत परिवार ही मजबूत समाज और मजबूत देश की नींव होते हैं। अगर परिवार खुशहाल होंगे तो समाज में प्रेम

रिश्तों में संवाद बनाए रखेंगे और परिवार को हमेशा अपनी सबसे बड़ी ताकत मानेंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि एक खुशहाल परिवार है। दोस्तों, और भी बातें होंगी आज के कार्यक्रम में, फिलहाल लिए चलते हैं।

0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाव
1: नए सत्र में पहले 100 प्रवेश पर फीस में 25% की छूट
0: कृषि विज्ञान कॉमर्स व कला सभी विषय उपलब्ध
1: बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति
0: अनुभवी साफ सुरक्षित वाहन सुविधा और शानदार परिणाम
1: हजारों छात्र आज सरकारी सेवाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में
0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाव 9413366097
2: जी दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है युवाणी और आज का हमारा खास सेगमेंट रहता है हेल्थ एंड फिटनेस। दोस्तों आज की जो दुनिया है वो डिजिटल हो चुकी है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत से मोबाइल यूज़र्स हैं, लैपटॉप यूज़र्स हैं, टीवी और टैबलेट्स जो हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम किसी न किसी तरीके से स्क्रीन से जुड़े रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, ऑफिस का काम हो, ऑनलाइन क्लासेस हो या फिर मनोरंजन सोशल मीडिया, हर काम स्क्रीन पर आकर टिक गया है। तकनीक ने हमारी जिंदगी आसान जरूर बनाई है, लेकिन इसके साथ एक नई चुनौती भी सामने आई है और वो है आंखों की सेहत। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में दर्द, जलन, सूखापन, धुंधलापन, सिर दर्द और नींद की जो समस्या है वो तेजी से बढ़ रही है। खासकर बच्चे और युवा इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। इसीलिए आज सबसे जरूरी बात ये है कि हम स्क्रीन टाइम और आंखों की सेहत दोनों के बीच सही संतुलन जो है वो बनाना सीखें। तकनीक से दूरी बनाना जो है वो समाधान नहीं है, बल्कि इसका समझदारी से उपयोग करना असली उपाय हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में जो स्क्रीन टाइम में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, पहले लोग मनोरंजन के लिए टीवी देखते थे, लेकिन अब मोबाइल हर समय हाथ में रहता है। कई लोग दिन में 8 से 10 घंटे तक स्क्रीन देखते हैं, ऑफिस में कंप्यूटर, घर पर मोबाइल और आराम के समय टीवी। इस तरह आंखों को आराम मिलने का मौका ही नहीं मिलता है। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है। जब हम लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी पलकें जो होती है वो कम झपकती है। सामान्य तरीके से इंसान जो है वो लगभग 1 मिनट में 15 से 20 बार पलक झपकाता है, लेकिन स्क्रीन देखने के दौरान ये जो संख्या है वो घटकर 5 से 7 रह जाती है। इसका रीज़न ये होता है कि आंखों की जो नमी है वो कम हो जाती है और सूखापन महसूस होने लगता है। इसके अलावा स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट भी आंखों और नींद दोनों पर असर डालती है। देर रात तक जब हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो दिमाग को ये संकेत नहीं मिल पाता कि अब आराम का समय है। इससे हमारी जो नींद की क्वालिटी है वो भी खराब होती है और शरीर जो है वो थकान महसूस करता है और धीरे धीरे ये समस्या तनाव, चिड़चिड़ापन और मानसिक थकावट का कारण बन जाती है। इस तरीके से जो स्क्रीन टाइम है और हमारे आंखों की सेहत है, दोनों में जो संतुलन है वो लंबे समय तक नहीं बना रहता है और इससे कई तरीके की जो बीमारी है वो हमारे शरीर में, या यूं कहें कि हमारी आंखों के ज़रिए पूरे हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। अब बात करें डिजिटल आई स्ट्रेन क्या होता है। लगातार स्क्रीन देखने से दोस्तों होने वाली समस्या को डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें आंखों में थकान, जलन, गर्दन दर्द, सिर दर्द और फोकस करने में कठिनाई जैसी समस्याएं जो है वो शामिल होती है। ये समस्या आज हर उम्र के लोगों में देखने को मिल रही है, खासकर वो लोग जो घंटों कंप्यूटर पर काम करते हैं उन्हें ये समस्या ज़्यादा होती है। डिजिटल आई स्ट्रेन का मुख्य रीज़न ये है लगातार एक ही दूरी पर स्क्रीन को देखना। जब आंखें लंबे समय तक पास की चीज़ों पर फोकस्ड रहती है तो उनकी जो मांसपेशियां हैं वो थक जाती है। इससे फोकस करने की जो कैपेसिटी है वो भी प्रभावित होती है। कई बार लोग इसे सामान्य थकान समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन लंबे समय तक ऐसा होने पर आँखों की जो परेशानी है वो बढ़ सकती है। इस तरीके से जो डिजिटल आई स्ट्रेन है वो समस्या काफ़ी ज़्यादा हद तक धीरे धीरे बढ़ती हुई और भी ज़्यादा गंभीर रूप ले सकती है। अब बात करें बच्चों पर स्क्रीन टाइम का क्या प्रभाव पड़ता है। आज के समय में छोटे बच्चे भी मोबाइल और लैपटॉप टैबलेट के आदि होते जा रहे हैं और धीरे धीरे ये जो आदत है वो उनकी बन चुकी है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से बच्चों की आंखों पर बुरा असर पड़ सकता है, उनकी जो एकाग्रता है वो कम हो सकती है और पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा बाहर खेलने की आदत कम होने से जो शारीरिक गतिविधि है वो घट जाती है, जिससे उनमें मोटापा और मानसिक तनाव जैसी जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ सकती है। और अगर बात करें बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें स्क्रीन टाइम सीमित होना चाहिए। बच्चों को आउटडोर गेम्स, किताबें पढ़ने और परिवार के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित करना ज़रूरी है। माता पिता को खुद भी स्क्रीन का संतुलित उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो अपने आसपास देखते हैं। और अगर हम बात करें कि कितनी सही दूरी और सही रोशनी होनी चाहिए जब भी हम स्क्रीन यूज़ करें, और 20/20 का नियम का क्या महत्व है, और साथ ही अगर हम बात करें कि आंखों की सेहत के लिए ज़रूरी पोषण वाली चीज़ें क्या हो सकती है, और नियमित व्यायाम और आंखों का स्वास्थ्य किस तरीके से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये चलते हैं।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी और आज का खास सेगमेंट रहता है हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हम बात कर रहे थे स्क्रीन टाइम और आंखों की सेहत के अंदर हम संतुलन कैसे बना सकते हैं। दोस्तों हमने बात की कि बच्चों पर स्क्रीन टाइम का क्या प्रभाव पड़ता है, डिजिटल आई स्ट्रेन क्या होता है। अगर अब बात करें कि सही दूरी और सही रोशनी का क्या महत्व होता है, तो स्क्रीन इस्तेमाल करते समय सही दूरी बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। मोबाइल को पास, बहुत पास से देखने की आदत जो है वो आंखों पर ज़्यादा दबाव डालती है और मोबाइल और आंखों के बीच कम से कम 16 से 18 इंच की दूरी ज़रूर होनी चाहिए, जबकि कंप्यूटर स्क्रीन लगभग 20 से 24 इंच दूर होना चाहिए। स्क्रीन का ऊपरी जो हिस्सा है वो आंखों के स्तर से थोड़ा नीचे होना चाहिए, ताकि गर्दन और आंखों पर जो तनाव है वो कम पड़े। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो कमरे की रोशनी होती है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरे में मोबाइल चलाना आंखों के लिए नुकसानदायक होता है, ये बात हम सभी को पता है, और तेज़ चमक और कम रोशनी दोनों ही आंखों को प्रभावित करती है। इसलिए हमेशा संतुलित रोशनी में स्क्रीन का उपयोग करना चाहिए। स्क्रीन की ब्राइटनेस को आसपास की रोशनी के अनुसार आप एडजस्ट ज़रूर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें 20/20 नियम के बारे में, तो आंखों को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर अक्सर 20/20 नियम अपनाने की सलाह देते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी वस्तु को देखें। इससे आंखों की मांसपेशियों को आराम मिलता है और जो तनाव है वो कम होता है। ये जो नियम है वो बेहद सरल है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावी भी है। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन कंप्यूटर पर काम करता है तो उसे इस नियम को आदत बना लेना चाहिए, इससे आंखों की थकान काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अगर अब हम बात करें आंखों की सेहत के लिए ज़रूरी पोषण के बारे में, तो सिर्फ स्क्रीन टाइम पर काम करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आँखों को सही पोषण देना भी ज़रूरी होता है। विटामिन ए, सी, ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड आंखों की सेहत के लिए बेहद लाभकारी होता है। इसके साथ गाजर, पालक, शकरकंद, बादाम, अखरोट, संतरा और मछली जैसे खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो आंखों को पोषण देते हैं। इसी के साथ पर्याप्त पानी भी पीना जरूरी है, क्योंकि शरीर में पानी की कमी होने पर आंखों में जो सूखापन है वो बढ़ सकता है। स्वस्थ भोजन और अच्छी जीवन शैली आंखों को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। और इसी के साथ साथ नियमित व्यायाम जो होता है वो भी हमारी शारीरिक फिटनेस के साथ साथ आंखों की सेहत पर भी असर डालता है, क्योंकि उससे रक्त संचार बेहतर होता है और साथ ही साथ आंखों को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण पहुंचता है, जिससे आंखों पर जो सकारात्मक प्रभाव है वो पड़ता है। काम और आराम के बीच में भी हम संतुलन बनाएं तो इन दोनों चीज़ों में हम बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया और मानसिक स्वास्थ्य जो है इसके बीच में जो तनाव, तुलना और चिंता जो है वो बढ़ जाती है, तो इससे समय की बर्बादी के साथ साथ हमें मानसिक थकावट भी महसूस होती है। तो स्क्रीन का जो यूज़ है वो आप अपने उद्देश्य के लिए ही कीजिए, और ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के बजाय सीमित समय तय करना बेहतर होता है। इससे न केवल मानसिक शांति बढ़ेगी बल्कि आँखों को भी आराम मिलेगा, क्योंकि तकनीक जो होती है वो दोस्तों हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और इससे पूरी तरह दूरी बनाना संभव भी नहीं है। लेकिन अगर स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण ना रखा जाए तो इसका असर आँखों और पूरे स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम तकनीक का समझदारी से उपयोग करें, सही दूरी, सही रोशनी, नियमित ब्रेक, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और व्यायाम, ये छोटी छोटी आदतें आँखों की सेहत को बेहतर बना सकती है। स्क्रीन हमारी ज़रूरत है लेकिन आंखें हमारी अनमोल पूंजी है। अगर हम आज से ही संतुलन बनाना सीख लें तो भविष्य में स्वस्थ और बेहतर जीवन जी सकते हैं। तकनीक का उपयोग करें लेकिन अपनी आंखों और स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं। दोस्तों प्रोग्राम में और भी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल ये चलते हैं।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
5: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी और आज का हमारा खास सेगमेंट रहता है हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें अगर हम बात करें कि जो गर्मी का मौसम है वो शुरू हो चुका ही है और साथ ही साथ जब भी गर्मी का मौसम आता है तो शरीर से जुड़ी कई समस्याएं जो है वो बढ़ने लगती हैं। इसमें सबसे आम लेकिन खतरनाक समस्या जो है वो देखी जाती है डिहाइड्रेशन की। दोस्तों गर्मियों में सबसे ज़्यादा यही चीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है कि डिहाइड्रेशन यानी कि जो शरीर में पानी की कमी है वो बनी रहती है। दोस्तों हमारे शरीर का लगभग 60-70% जो हिस्सा है वो पानी से बना होता है और पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए, भोजन पचाने के लिए और पोषक तत्वों को शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने और शरीर में शरीर से विषैले जो पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। और जब शरीर में पानी की मात्रा ज़रूरत से कम हो जाती है तब डिहाइड्रेशन की जो सिचुएशन है वो हो जाती है। तो गर्मी के मौसम में तेज़ धूप, ज़्यादा पसीना आना, कम पानी पीना, बुखार या ज़्यादा मेहनत करने के कारण शरीर से पानी और ज़रूरी जो लवण है वो तेज़ी से बाहर निकल जाते हैं। अगर समय रहते इनकी भरपाई ना की जाए तो ये समस्या गंभीर रूप ले सकती है। अब सवाल उठता है कि डिहाइड्रेशन के लक्षण क्या है। तो अगर इनके प्रमुख संकेतों के बारे में अगर हम बात करें तो अगर किसी इंसान को बार बार प्यास लग रही हो, मुंह सूख रहा हो, कमज़ोरी महसूस हो रही हो, चक्कर आ रहे हो या सर दर्द हो रहा हो तो ये डिहाइड्रेशन के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ त्वचा का सूखना, थकान महसूस होना भी इसके संकेत हो सकते हैं। बच्चों और बुजुर्गों में डिहाइड्रेशन जल्दी हो सकता है। छोटे बच्चों में रोते समय आंसू न आना, होंठ सूखना, सुस्ती रहना, बार बार चिड़चिड़ापन होना इसके संकेत हो सकते हैं। और वही बुजुर्गों में ज़्यादा कमजोरी, भ्रम की स्थिति और बेहोशी तक हो सकती है। तो इसके अलग अलग जो लक्षण हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा बढ़ जाए तो व्यक्ति की धड़कन तेज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और स्थिति गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती तक कराना पड़ सकता है। इसीलिए इसे नज़रअंदाज करना तो बिल्कुल सही नहीं है। और अगर हम बात करें बचाव की तो डिहाइड्रेशन से बचना बहुत ही आसान है, बस कुछ छोटी छोटी जो सावधानियाँ होती है वो हमें अपनानी होती है। पहली और ज़रूरी बात ये कि दिन भर पर्याप्त मात्रा में आप पानी पीजिए। प्यास लगे तभी पानी पीना ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर में पानी जो है वो पीते रहना चाहिए। और गर्मियों में बाहर निकलते समय अपने साथ पानी की बोतल जो है वो आप ज़रूर रखें। और इसके साथ साथ आप नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, लस्सी, फलों का जो ताज़ा रस है वो शरीर में पानी और मिनरल्स की कमी पूरी करने में मदद करते हैं। तो इसके साथ साथ जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो भी आप ज़रूर खाइए, तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन जो है वो कम करें, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी बढ़ा सकते हैं। धूप में ज़्यादा देर तक रहने से बचें और हल्के रंग के सूती कपड़े पहने। तो इस तरीके से कुछ हद तक हम डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। और अगर ज़रूरत हो तो ORS घोल या जो नमक चीनी का घोल है वो अगर हम ले तो शरीर में पानी और जो ज़रूरी लवण होते हैं उनकी कमी पूरी होती है। तो दोस्तों पानी ही जीवन है, ये बात तो हम सभी ने सुनी ही है और ये गर्मियों के मौसम में तो बखूबी हम जानते ही हैं कि शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना कितना ज़रूरी हो जाता है। और थोड़ी सी लापरवाही डिहाइड्रेशन जैसी समस्या है उसको जन्म दे सकती है, लेकिन सही जानकारी और सावधानी से इससे आसानी से बचा भी जा सकता है। तो इस गर्मी में आप खुद भी पानी पिए और अपने परिवार को भी पानी पीने की आदत डालें, क्योंकि जो गर्मियां हैं वो बहुत ही पीक पर है, इसीलिए पानी पीना बहुत ही हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है वो एक ऐसी समस्या है जिसका निवारण हम घर बैठे कर सकते हैं, तो डिहाइड्रेशन से आप ज़रूर बचिए इस गर्मी के मौसम में। दोस्तों और भी बातें करेंगे।

जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी और आज का हमारा खास सेगमेंट रहता है हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हमने बात की कि स्क्रीन टाइम और आँखों की सेहत दोनों के बीच में हम क्या संतुलन बना सकते हैं और डिहाइड्रेशन के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या बचाव होते हैं, तो इसके बारे में हमने ढेर सारी बातें की। और जैसे कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो गर्मियों के मौसम में तेज़ गर्मी और बढ़ते तापमान का जो असर है वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे शरीर के ऊपर हम देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो असर है वो हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। इस दौरान जो शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन होने लगता है, जिससे डाइजेशन धीमा पड़ जाता है। और ज़्यादा तला भुना मसालेदार और बाहर का खाना अगर हम खाते हैं तो वो हमारे पाचन तंत्र पर सीधा असर डालता है। और गर्मी में शरीर को ठंडा रखने के लिए हमें हल्का और पौष्टिक भोजन जो है वो हमें लेना ज़रूरी होता है। कई लोग गर्मियों में पानी कम पीते हैं या लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं, जिससे पाचन संबंधित जो समस्याएं होती है वो भी बढ़ने लग जाती है। और जब गर्मी आती है तो डाइजेशन को सही रखने के लिए दिन भर हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। और खाने में दही, छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, मौसमी फल और हरी जो सब्जियां होती हैं वो ज़रूर से शामिल करनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा ऑयली और जंक फूड है उससे बचना चाहिए। समय पर भोजन करना और ज़्यादा देर तक भूखे न रहना भी ज़रूरी होता है। और इसके साथ ही नियमित व्यायाम और पर्याप्त जो नींद होती है वो भी पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में ज़रूरी होती है। दोस्तों, गर्मियों का मौसम जहाँ शरीर को थका देता है, वही इसका सीधा असर जो है वो हमारे पाचन तंत्र पर भी पड़ता है। और यही वजह है कि गर्मियों में अक्सर हम बहुत सारी ऐसी जो सामान्य समस्याएं हैं उनका हमें सामना करना पड़ता है। और गर्मियों के दिनों में हमारा जो शरीर है वो हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन मांगता है, लेकिन ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, फास्ट फूड और ठंडे कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होते हैं उनका ज़्यादा सेवन करने से पाचन तंत्र पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है और पेट की जो समस्या

खाने की जो हमारी चॉइसेस है वो अगर हम चेंज करें, योग करें और बहुत थोड़ी अगर हम शारीरिक गतिविधि भी करें तो पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकता है। और पर्याप्त नींद लेना, तनाव से दूर रहना भी ज़रूरी है क्योंकि मानसिक तनाव का असर भी पेट पर पड़ता है। तो

जी दोस्तों, आज के खास सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस में हमने ढेरों बातें की हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हुई और बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर की। उसके लिए आपने हमारे रेडियो स्टेशन से 100.7 FM से प्रोग्राम युवाणी में खास सेगमेंट में हिस्सा लिया हेल्थ एंड फिटनेस में। फिलहाल प्रोग्राम से जाने की इजाज़त दीजिए, आपकी दोस्त शालिनी को नमस्कार।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, से थोड़ी देर बाद यानी कि शाम 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार होंगे शाम 6:05 पर। शाम 6:10 पर हम आपको सुनवाएंगे देशभक्ति फिल्म की। संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से शाम 6:20 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। शाम 6:40 पर समय रहेगा जिले की चिट्ठी का। और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे शाम 6:45 पर आकाशवाणी जयपुर से।

हमारे किसान भाई बहनों का कार्यक्रम खेती और गृहस्थी आप सुन पाएंगे शाम 7 बजे। श्रोताओं, किसान भाइयों के इस कार्यक्रम में आज चर्चा होगी पशु आहार में हरे चारे की उपयोगिता के बारे में। इसी कार्यक्रम के माध्यम से एक और चर्चा आप सुनेंगे, किसान भाई प्रकृति के नियमों का किस प्रकार पालन कर सकते हैं, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में एक चर्चा होगी। चर्चा एक और होगी, गरीब की गाय बकरी किस प्रकार है।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुन पाएंगे रात्रि 8 बजे। समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:45 पर। न्यूज़ 8 का समय रहेगा रात्रि 9 बजे।

ईमेल्स पर आधारित कार्यक्रम भी होगा और उससे पहले रात्रि 9:15 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम बाता ही चाले और इसके बाद रात्रि 10 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम गोरबंद जो कि आधारित होगा आपके ईमेल्स पर जिसमें आप हमें ईमेल्स भेज सकते हैं राजस्थानी लोक गीत सुनने के लिए। अभी यानी कि 6 बजे से आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है gorbandchuru@gmail.com। यह कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10 बजे से 10:30 तक। शास्त्रीय संगीत हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:30 पर, हिंदी में समाचार 11 बजे और रात्रि 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्रों से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले।

0: समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और बिंदु का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉ. जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलालौद वितेदसन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: And that is the end of this news bulletin.
1: हम आपकी सेवा में आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 6:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया।

के लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेप

फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां,

लोगों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं था। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए।

0: और वही 71।
1: देशभक्ति फिल्मी गीतों में अभी आपने सुना बॉर्डर फिल्म का ये गीत, और इस गीत के साथ यह कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। शाम के 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले समाचार।

0: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा यूएई देशस्य राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान अबुधाबी नगरे ऊर्जा सहकारस्य द्विपक्षीय व्यापारस्य च विषये चर्चां कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ रक्षा पेट्रोलियम निवेशादि विषये प्रमुखानां संधिपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतवन्तौ। एस जयशंकरः 26,000+ वर्षे ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य सभायां प्रभावपूर्ण बहुपक्षवादं प्रति भारतस्य प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवान्। एनटीए इति अभिकरणं जून मासस्य 21 दिनांके 26,000+ वर्षस्य नीट यूजी परीक्षा पुनः आयोजयिष्यति। शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधानेन परीक्षा प्रक्रियायां निष्पक्षतां पारदर्शितां च आश्वासितम्। भाजपेति दलस्य विधायकः रथींद्र बसुः पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नूतनः सभाध्यक्षः निर्वाचितः। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग सेट्टी इत्येतयोः शीर्ष पुरुषयुगलं थाईलैंड ओपन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरातस्य यूरोपीय देशानां च 6-दिवसीय यात्रायाः प्रथमे चरणे अबुधाबी नगरे अस्ति। यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन विमानपत्तने तस्य स्वागतं कृतम्, औपचारिक सम्मानश्च प्रदत्तः। यदा तस्य विमानं एमिरती वायुक्षेत्रं प्रविष्टं तदा संयुक्त अरब अमीरातस्य F-16 युद्ध विमानेन तस्यानुरक्षणं कृतम्। ततः परं प्रधानमन्त्रिणा मोदिना राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु वार्ता कृता। पश्चिमेशियायां प्रचलिते द्वन्द्वेन सम्बद्धानां वैश्विकापूर्ति समाह्वानानां मध्ये एषा वार्ता अभवत्। स्वस्य प्रारम्भिके भाषणे प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना यूएई देशे सद्यः एव जातानां आक्रमणानां दृढतया निन्दा कृता।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और विनम्र का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए।
0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यमुं भ्रातेति शब्देन संबोधयन् सः कठिन काले यूएई नेतृत्वेन प्रदर्शितस्य धैर्यस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अमीरात देशाय भारतस्य समर्थनं पुनरपि प्रतिपादितवान् तथा च वर्तमान वैश्विक संघर्षस्य काले संवादः कूटनीतिः चैव एकमात्रः समाधानः अस्ति।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतं सर्वैः सहभागिभिः सह परिणामकारी बहुपक्षवादस्य लक्ष्यस्य प्रगत्यै प्रतिबद्धमस्ति। नवदिल्ल्यां 26,000+ वर्षस्य ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य द्वितीय दिवसस्य मुक्त सम्मेलनं संबोधयन् डॉक्टर जयशंकरः उक्तवान् यत् अस्य समूहस्य विस्तारितं सहभागित्वं द्रुतगत्या परिवर्तमानस्य वैश्विक सन्दर्भे बहुपक्षीय सहयोगानां सुदृढीकरणाय सर्वेषां नेतॄणां महत्वबोधं प्रतिबिम्बयति। सः इदमपि अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय संरचनायाः परिष्कारः अत्यावश्यकः अस्ति। ततः पूर्वं डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्यां ईरान देशस्य विदेश मन्त्रिणा अब्बास अराघची इत्यनेन सह मिलितवान्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् उभौ नेतारौ पश्चिम एशियायाः स्थितिं तस्याः प्रभावाञ्च चर्चितवन्तौ। द्विपक्षीय विषयेषु परस्पर हितसंबद्ध विषयेषु च मतानां आदान प्रदानम् अपि कृतवन्तौ। ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडले 26,000 वर्षे श्री अराघची वर्यस्य

0: भिवाड़ी में बनाया जाएगा। इस क्लस्टर से हर साल 6 करोड़ चिप का निर्माण होगा। राज्य में जनगणना के पहले चरण के तहत कल से मकान सूचीकरण का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता और प्रभावी विकल्प और मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित होगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी में बनाया जाएगा। इस क्लस्टर में 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। यहां से हर साल 6 करोड़ चिप्स का निर्माण किया जा सकेगा। साथ ही करीब 2500 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका शिलान्यास किया। इसके साथ ही 400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं में भिवाड़ी में एलसीना इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, 34 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और खैरथल तिजारा के कई विकास कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है और पिछले 2 सालों में 35 नई नीतियां लागू की गई हैं। उन्होंने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान को जोड़ने वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना और यमुना जल समझौते के काम में तेजी आने की भी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में कहा कि देश में सेमीकंडक्टर की 12 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिससे भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि देश ने पिछले 12 साल में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता और प्रभावी विकल्प है। श्री शर्मा आज जयपुर में राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संसाधनों के संयमित उपयोग से ही ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा। ईंधन बचत का संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री खुद इलेक्ट्रिक वाहन से कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की बचत एक सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी वाहनों के सीमित और विवेकपूर्ण उपयोग के निर्देश जारी किए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में अग्रणी है और आने वाले समय में ऊर्जा प्रदाता राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लागू की गई है।
2: राजस्थान भारत में अक्षय ऊर्जा के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। हमारे राज्य में 828 गीगावाट सौर ऊर्जा और 284 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता उपलब्ध है। अब तक राज्य में 47 गीगावाट से अधिक की अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है और राजस्थान सौर परियोजना स्थापित में देश में अग्रणी है। हमारी सरकार ने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है। इसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट क्षमता स्थापना के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
0: राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत कल से मकान सूचीकरण का काम किया जाएगा। 14 जून तक चलने वाले इस चरण के लिए प्रगणक घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इसके लिए प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से प्रगणकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा एंट्री करने, परिवारों की सही जानकारी दर्ज करने और सर्वे के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों का अभ्यास कराया गया। वहीं स्वगणना का विकल्प का आज आखिरी दिन है। स्वगणना के जरिए लोगों ने 1 मई से खुद अपने मकान और परिसंपत्तियों से जुड़ी

0: 23 से 25 मई तक आयोजित होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को स्थगित कर दिया है। कृषि आयुक्त ने आज इस बारे में एक आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि कार्यक्रम को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आयोजित करने वाली थी, जिसके लिए पिछले 2 माह से व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ बातचीत के दौरान चुनौतीपूर्ण समय में यूएई की भूमिका की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जून में होने वाली अगली परीक्षा की फीस नहीं ली जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
2: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने थोड़ी देर एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि NTA में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को और मजबूत करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि CBI नीट पेपर लीक मामले की तह तक जाएगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि स्वास्थ्य केवल व्यक्ति का निजी विषय नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र से जुड़ा मसला है। श्री शेखावत आज बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में एक अस्पताल के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बांसवाड़ा और कुशलगढ़ जैसे आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में लंबे समय तक संसाधनों की कमी रही, जिसके कारण स्थानीय लोगों को उपचार के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था, लेकिन केंद्र सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया है। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत के बाद अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सरिस्का प्रशासन ने कैनाइन डिस्टेंपर नामक खतरनाक वायरस के खतरे को देखते हुए अपनी निगरानी टीमों को सक्रिय कर दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार ये संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित कुत्तों के माध्यम से बाघों में फैलता है। वर्तमान में सरिस्का में 52 बाघ हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन अब आसपास के क्षेत्र

कुत्तों के टीकाकरण और बाघों की विशेष निगरानी पर जोर दे रहा है। भरतपुर के मुक्केबाज यश कुमार ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। यश ने 33 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के खिलाड़ी को 4-1 से हराकर ये उपलब्धि हासिल की। यश कुमार जूनियर वर्ग में इस चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतने वाला राजस्थान के पहले मुक्केबाज बन गए हैं। उनकी इस सफलता पर खेल जगत में खुशी की लहर है। और अब मौसम। प्रदेश के कई भागों में पिछले 24 घंटे में आंधी और बारिश की गतिविधियों से ज्यादातर स्थानों पर तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इससे आमजन को भीषण गर्मी से मामूली राहत मिली है। हालांकि अभी भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दूसरी ओर आज दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर और जयपुर जिले में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार कल से फिर तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। सीमावर्ती जिलों के लिए विभाग ने तेज गर्मी और लू का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी में बनाया जाएगा। इस क्लस्टर से हर साल 6 करोड़ चिप का निर्माण होगा। राज्य में जनगणना के पहले चरण के तहत कल से मकान सूचीकरण का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता और प्रभावी विकल्प। और मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं शिव कुमार वशिष्ठ। जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना के दौरे की। हाल ही में श्री मीना ने जिले के भुसावर क्षेत्र के झरोटी गांव में आयोजित पद दंगल कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में लोक गायन और लोक नाट्य को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये हमारी संस्कृति की पहचान है, इसकी जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने पर जोर दिया। डॉक्टर मीणा ने इस दौरे में दलपुरा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल लगाई। उन्होंने जनसुनवाई भी की। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क और अन्य समस्याओं से कृषि मंत्री को अवगत कराया। कृषि मंत्री ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नए बने कक्षा कक्षों का लोकार्पण किया। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने की अपील की। उन्होंने लोगों से राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और किसानों से जैविक खेती अपनाने की भी अपील की। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक सांसद संजना जाटव की अध्यक्षता में भरतपुर में आयोजित हुई। इसमें केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान सांसद ने कहा कि सरकार की योजनाओं का पारदर्शिता से समयबद्ध क्रियान्वयन कर आम लोगों को फायदा पहुंचाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को बिजली, पानी, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र लोगों का चयन कर गुणवत्तापूर्ण आवास बनवाने को कहा। साथ ही राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत पिछले दिनों एक दिन के भरतपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने अपना घर आश्रम में चार नए भवनों का लोकार्पण किया, साथ ही बालिका सदन का भूमि पूजन किया और राष्ट्रीय आश्रम तथा गौशाला की कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। इस मौके पर श्री गहलोत ने कहा कि दीन दुखियों की सेवा करना ही सच्ची मानवता है। उन्होंने सेवा और संस्कारों पर जोर देते हुए कहा कि तकनीकी प्रगति के साथ साथ बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, यही हमारी संस्कृति है, इसे बनाए रखना नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने पिछले दिनों शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से शैक्षिक सुधारों के लिए स्वयं प्रेरित होकर ब्लॉक वार कार्य योजना बनाकर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। जिला निष्पादन समिति की बैठक

में उन्होंने मिड डे मील योजना की सामग्री की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति शाला दर्पण पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड करवाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जिले में 428 कन्याओं के विवाह पर लगभग 1,96,00,000 रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। कन्याओं के विवाह के लिए दी गई सहायता राशि से गरीब परिवारों को आर्थिक संबल मिला है। जिले में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता फैलाई गई। इस दौरान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में किशोरियों और महिलाओं को जानकारी दी गई। आठवें पोषण पखवाड़े का आयोजन भी पिछले दिनों जिले में हुआ। इस दौरान बच्चों और महिलाओं में स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाई गई। विभिन्न स्थानों पर संगोष्ठियां आयोजित कर मातृ और शिशु पोषण के महत्व और एनीमिया से संबंधित जानकारियां दी गई। इसके अलावा मोटे अनाज और स्थानीय खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी लगाकर पोषण के महत्व से अवगत कराया गया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। इस मौके पर भरतपुर के श्री शमशानेश्वर महादेव मंदिर में विशेष धार्मिक कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान भजन कीर्तन सहित अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सहित आसपास के जलीय क्षेत्र में बीते दिनों सारस गणना की गई। मचानों पर बैठकर उद्यान के कार्मिकों, पर्यावरणविद, गाइड और पक्षी प्रेमियों ने इस काम में शिरकत की। इसके साथ ही भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: खास समाचार राज्य रो पहलो सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी माए बनायो जावेला हर साल 6 करोड़ चिप बनेला राज्य माए जनगणना 2027 रा तेत कालू मकाना री लिस्ट बनावन रो काम शुरू करियो जावेला मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ऊर्जा री बचत ना इनरा उत्पादन रो सब सस्तो और असरदार विकल्प बतायो और मेडिकल कॉलेज माए दाखिला सारू ली जावन वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून न ओजू हैला समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर हरे बे समाचार विगतवार राज्य रो पहलो सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी माए बनायो चावेला वो क्लस्टर बनावन रा काम माए करीब 1200 करोड़ रुपया रो निवेश फैला ये कारखाना माए हर साल 6 करोड़ चिप बनाई जा सकेला इस आगे करीब 2500 लोगों ने नौकरी धंधा रा मौका मिलेला मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज वर्चुअल तरीका इन रा काम री शुरुआत कीनी वह ईसा गई 400 करोड़ रुपये बत्ता खर्च वाली न्यारी न्यारी परियोजनावां रा काम री नींव रखी और पूरा व्या काम रो उद्घाटन कीनो ई मौके मुख्यमंत्री कहो कि राज्य सरकार प्रदेश माए निवेश ने बढ़ावो देवन सारू लाडला दो साल माए 35 नीतियां बनाई वह दिल्ली हरियाणा और राजस्थान ने जोड़बा वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना और यमुना नदी रा पानी जुड़िया करार रा तहत काम माए तेजी लावन री जानकारी दीनी श्री शर्मा बतायो कि सरकार नौजवाना सारू पंचायत लेवल माथे अटल ज्ञान केंद्र खोलन माथे ध्यान दे रही है ई मौके केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहो कि देश माए सेमीकंडक्टर बनावन रा 12 कारखाना लगाई चिया है और लाडला 12 साल माए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हल्का माए 6 गुना बढ़ोतरी सागे अब कुल उत्पादन 13 लाख करोड़ रुपया रा लेवल के न पोगरियो है
1: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ऊर्जा री बचत ना इंडरा उत्पादन रो सब सस्तो और असरदार विकल्प बतायो है वे आज जयपुर माए राखी जिया राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव माए बोल रहा है श्री शर्मा कहो कि पेट्रोल डीजल री बचत करण री सगला री जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यू लाडला दिना करी जी अपील पाछे मुख्यमंत्री कहो कि राज्य सरकार सरकारी गाड़ियां सीमित तादाद माए काम लेवण जुड़िया निर्देश जारी कीना है व कहो कि राजस्थान सूरज री रोशनी बिजली बनावण रा हलका माए देश माए अगाड़ी है मुख्यमंत्री कहो कि अक्षय ऊर्जा ने बधाओ देवण सारू राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लागू करी ची है व कहो कि सरकार साल 2030 ताई 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा रो लेवल हासिल करण न ध्यान रखता थका काम कर रही है
2: राजस्थान भारत में अक्षय ऊर्जा के लिए उपयुक्त क्षेत्र है हमारे राज्य में 828 गीगावाट सौर ऊर्जा और 284 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता उपलब्ध है अब तक राज्य में 47 गीगावाट से अधिक की अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है और राजस्थान सौर परियोजना स्थापित में देश में अग्रणी है हमारी सरकार ने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है इसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट क्षमता स्थापना के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं
0: राज्य में जनगणना 2027 रा पहला दौर रातेत काल मकानारी लिस्ट बनावन रो काम शुरू करियो चावेला 14 जून ताई चालन वाला इन काम सारू प्रगणक घर घर जार जानकारी भेड़ी करेला इन सारू प्रदेश माए न्यारी न्यारी ठोणा सिखावण शिविरां रे जरिए प्रगणका ने जरूरी सिखावण दीरी जी वाने मोबाइल ऐप रे जरिए जानकारियां रो इंद्राज करण परिवारां री जानकारी दर्ज करण हर सर्वे रे दौरान राखी जावण वाली सावधानियां रे बारे माए अभ्यास कराई चियो इबीचे स्वगणना करण रो आज आखिरी दिन है स्वगणना रे जरिए लोग खुद 1 मई उ हमारा मकान और परिसंपत्तियां जुड़ी जानकारी ऑनलाइन तरीका दर्ज करा रिया है जयपुर माए 23 उ 25 मई ताई रखी जावन वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 टालती रिची है कृषि आयुक्त रियोरू आज इं 12 मई हुक्म जारी करी चिया ध्यान जोग है कि इन कार्यक्रम सारू लाडला 2 महीनाओं तैयारियां करी जा रही है ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात रा अबू धाबी माए वठेरा राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सागे मुलाकात कीनी इन दौरान ऊर्जा सहयोग और दोनों देशों बीच कारोबार उन जुड़ी चर्चा करी ची प्रधानमंत्री मोदी यूएई माथे हाल ही माए करी ची हमला री कड़ी निंदा कीनी वे मुश्किल वक्त माए यूएई रा काम री सराहना करता थका यूएई सारू भारत री हिमायत री पुष्टि कीनी श्री मोदी कहो कि तनातनी रा मौजूदा दौर माए बातचीत और कूटनीति आगे चलन रो गेलो है
3: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है होर्मुज को फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा
0: देश रा मेडिकल कॉलेज माए दाखिला सारू नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून ने ओ जुली जावेला शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली माए नीट यूजी परीक्षा रे बारे माए खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी वे बतायो के इन सारू 14 जून ताई एडमिशन कार्ड जारी कर दिया जावेला श्री प्रधान कहो कि 21 जून ने ओजू ली जावन वाली ई परीक्षा री कोई फीस नहीं ली जावेला केंद्रीय शिक्षा मंत्री कहो कि हाल ताई ओएमआर शीट माथे ली जा रही नीट परीक्षा आवता सालों कंप्यूटर रे जरिए ली जावेला
4: परीक्षा में थोड़ा हमको

0: की फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
1: शिक्षा मंत्री कहो कि विद्यार्थियों ने परीक्षा देवन सारू पसंद रो शहर चुनबा रो मौको दियो चावेला। मंत्री कहो कि सीबीआई नीट पेपर लीक मामला री पूरी जांच करेला। ध्यान जोग है कि 3 मई ने भी नीट परीक्षा 2026 पेपर लीक वेवन री शंका पाछे रद्द करती रिची ही। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि स्वास्थ्य केवल इंसान रो निजी मुद्दों नहीं है बल्कि पूरा समाज और देश हूं जुड़ियो है। वे आज बांसवाड़ा जिला रा कुशलगढ़ में एक अस्पताल रा उद्घाटन रे मौके बोल रहा है। केंद्रीय मंत्री आयुष्मान भारत योजना रो जिक्र करता था कहो कि इन तहत 5 लाख रुपया ताई रा खर्च रो इलाज मुफ्त करावन रो सुबी तो दियो चावे है। मध्य प्रदेश रा कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघा री मौत रा मामला पाछे अलवर जिला रा सरिस्का टाइगर रिजर्व में सावचेती बधाती रिची है। प्रशासन कैनाइन डिस्टेम्पर नाम रा खतरनाक वायरस रा खतरा न ध्यान रखता थका निगरानी टीमा ने काम माथे लगाती नी है। जानकारा ने मुजब ओ संक्रमण संक्रमित कुत्ता रे जरिए बाघा में फैले है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में 52 बाघ है जाने संक्रमण को बचावन सारू आरएसआरए रा कुत्ता रे टीका लगावन माथे जोर दियो चारियो है। भरतपुर रा मुक्केबाज यश कुमार उज्बेकिस्तान रा ताशकंद में राखी जी एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सोना रो तमगो जीतियो है। वह 33 किलोग्राम भार वर्ग रा फाइनल मुकाबला में कजाकिस्तान रा खिलाड़ी ने 4-1 हराया। यश कुमार ई चैंपियनशिप रा जूनियर वर्ग में सोना रो तमगो जीतन वाला राजस्थान रा पहला मुक्केबाज बन गया है। अरबे मौसम प्रदेश रा कई हल्का माए लाड़ला 24 घंटा माए आंधी और बारिश फेवन रे कारण पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई उतरियो। इनु गर्मियों थोड़ी सत्ता मिली। हालांकि हाल ये कई छोड़ा ऊंचो ऊंचो तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस बीच दर्ज करियो चाहियो है। दूजिकानी आज दौसा करौली सवाई माधोपुर और जयपुर जिला माए कठे कठे जोरदार बायरो बजन सागे हल्की बिरखाफी। मौसम विभाग रे मुजब काल उजू पारो चढ़बारा आसार है। महकमो सरहदी जिला सारू तेज गर्मी और लू बाबत चेतायो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नंबर ओजू सुन ले राव सा 1800-117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माई खास समाचार एक और फिर सुन ले राव। राज्य रो पहलो सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी माए बनायो जावेला। हर साल 6 करोड़ चिप बनाई जावेला। प्रदेश माए जनगणना 2027 राते कालू मकाना री लिस्ट बनावन रो काम करियो जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ऊर्जा री बचत न इनरा उत्पादन रो सबू सस्तो और असरदार विकल्प बतायो। और मेडिकल कॉलेज में दाखिला सारू ली जावन वाली नीट UG 2026 परीक्षा 21 जून ओजू भैला। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: हम आपकी सेवा में आकाशवाणी के चूरू केंद्रों से बोल रहे हैं FM 110.7 MHz पर। श्रोताओं शाम के 7 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं हमारे किसान भाई बहनों का कार्यक्रम खेती और गृहस्थी।

0: खेतीयर गृहस्थी सुनाले सगळे किसान भाई बहना ने भाई किसने कनिशू
1: और गोपाल भाई कनिशू मोकला मोकला
0: राम राम गोपाल भाई राम राम
1: राम राम सा।
0: तो गोपाल भाई देखो मौसम को जो मिजाज है
1: हाँ हाँ
0: वो इस साल के मायने तो देखो के बदलता बारी को लागे कदी जोर की गर्मी पड़न लाग रही है अचानक की बिरखा को मौसम बन जाए फिर जोर की आंधी और अब काला तो देखो आप मान लो के 15-10 दिन से आंधी तो पूरा आपके जोर शोर में आपने जिकी महिलाएं बहन देखो पूरी तरह से परेशान कर रहा है।
1: अब किसना भाई बात नहीं यहाँ होगी के पुराने जमाने का माँ अपना जगह बटका आने
0: हाँ
1: बे एक एक दो दो जोड़ी गब्बा सिमाया करता ढीला ढीला सुतु सिमाता
0: हाँ
1: तो दो जोड़ी बाहें गब्बा होता एक पैर था एक दो की आपका अर्थ की एक तड़े सामने की मेल देता
0: प्रेस हो जाती
1: प्रेस हो जाती ठीक है
0: ठीक है।
1: अब बे मेला होता बे काट लेता बंद हो सुखा देता अर्थ की एक तड़े बन मेल देता अब टेम इश्यू आ गयो के घंटा घंटा में दो दो घंटा में देखो के गब्बा इस जगह बदले और जे हुए घर ब्याह शादी
0: अच्छा
1: तो एक अलग ही देखो ठाडो कमरो हैं और बीम देख लियो तो भाज भाज के जा घंटा घंटा बांधे चक्कर है फोटो डारो हैं कब बांध बांध की ड्रेस पैर पैर की आवे और वे फोटो डाई जगह पड़ा पड़ पड़ा पड़ मारे पड़का
0: हैं सही है
1: पण आओ काम की ताक दिन चल सी है भाई अपन प्रकृति का जगह बताएड़ा गेला इन्हें वे छोट गेर अपा के उजड़ो लिया अब बुढ़िया कवे ने के उजड़ चलिया गांव
0: आवे को नहीं
1: गेला चले यहाँ से हैं अब धरती के ऊपर खूब हरियाली होनी चाहिए सन बेरु ही बात को के भाई पूरी धरती जी की है एक ऊपर 33% जो इलाको है बिक ऊपर हरियाली को होना बहुत जरूरी है पर्यावरण संतुलन के लिए क्योंकि प्राणवायु ऑक्सीजन गैस है बापन पेड़ पौधा से मिले
0: मिले
1: हैं। अब यहाँ सड़क बन रही है पहले एक ही सड़क है अब तीन तीन चार चार बन गई रेलवे लाइने वह बढ़ रही शहरीकरण हो रही है पब्लिक जी यहाँ बढ़ रही है जनसंख्या बढ़ रही है तो भी साबु मकान बढ़ रहे हैं
0: मकान बढ़ रहे हैं व्हीकल बढ़ रहे हैं
1: तो अब आगे सीध में जगह दरखत आ रहे हैं भाई कट रहे हैं अब जो दरखत कट रहे हैं तो वो तो 30 साल पुराण है नए रूम आपा एक बिलान को ठूंगे में ले आगे लगाए जुलाई में हो जद अब बताओ वो कद वो बड्डो है गो
0: है 15 साल लगेंगे
1: 15 साल लगेंगे अब कोजड़ती गैस की है बिन तो पेड़ पौधा आपके श्वास के रूप में ग्रहण करें और बदले में आपन ऑक्सीजन गैस दे में तो बताओ कितो बड़ो काम हो गयो पेड़ पौधा को पर फिर भी किसान है जिसका आंकी अहमियत जिसकी है बा आ सलाम देखने को मारी है कि क्यों कम कर दी है प्रकृति का बताया जिसका नियम है गेला है कानून कायदा है बाकी आप अनदेखी करने यार भी को परिणाम नतीजो जो है वो आंधी उड़ा रोज को मौसम चेंज हो रही है ना कीड़ा इतरिया दिन के क्यों दोपहर क्यों चार बजे क्यों रात ने गड़गड़ाहट रोड़ा में बताओ हैं
0: हो रहे हो रहे
1: तो इको मतलब वो क्योंकि प्रकृति के सागे जो को इंसान है वो छिड़खानी कर रहे हैं
0: तो थारो कहने को मतलब यो है कि भाई प्रकृति ने आपने मान लो अगर अपनी सहयोगी मित्र बनाई रखनी है
1: राजी राखो
0: तो राजी राखनी पड़ेगी राजी राखने खातर इका जका नियम कानूनी बाकी अपन जानकारी राखनी पड़ेगी रिपी के हिसाब से अपन चलना पड़ेगा
1: सही बात है
0: भाई जी हाँ मान लो प्रकृति के सागे अगर अपन ने अपनी दोस्ती बढ़ानी है तो पहलो काम तो वही होगी के भाई हरियाली ज्यादा से ज्यादा हो पेड़ पौधा जका मान लो चाहे आप घर के रूप में या कोई और कोई कारण से कट रहे हैं तो बिकी एवज का मायना आपने पेड़ पौधा लगाने की ख्याल रखनी चाहिए पहलो काम तो वो बीगे बात के मायने जे आप प्रदूषण की बात करा तो प्रदूषण देखो गाड़ी घोड़ा से फैक्ट्रिया से और जक्का भी मान लो के इच्छा धंधा

0: पेट्रोल डीजल की जले से देखो प्रदूषण हुए
1: होगा ऐसा,
0: तो झक्का देखो जरूरी काम ही तो अपन करना पड़ेगा बांधा पर वो कौन सा पर कुछ काम इच्छा ही झक्का ने जहाँ मान लो के आपने एक डेढ़ किलोमीटर जानो है और भी एक डेढ़ किलोमीटर के बीच का मैंने आपने वक्त है भी आधी घंटे को पूर्ण घंटे को तो आप होश के बैठे अगर पैदल जा सका तो आप पैदल जाओ
1: जानो सी
0: है और नहीं तो देखो जिया मान लो आपका जगह पर्सनल साधन ही देखो छोटा मोटा साधन तो सक नहीं और हरेक काम खातर अगर आप वाहन उपयोग में करने लग रहे तो वो प्रदूषण बढ़ाने को एक जरियो है तो एक तो आप बिना कम कर सका। फिर जे किसान भाई यहाँ की आप जे बात करा तो वन जे मान लो प्रकृति के नियमों को जे पालन करना है तो पिछले लंबे कई साल से देखो आप प्रकृति का जगह नियम अभी को पालन को नहीं कर रहे क्योंकि रासायनिक जगह प्रक्रिया ही रासायनिक खेती ही भी को आप उपयोग देखो ज्यादा से ज्यादा करने लग गया लेकिन अब बार चाहे आप प्रकृति अपन कहने लग रही है जहाँ आंधिना को मौसम अबार थे बताने लग रहा है मौसम अपन खुद चाल के कहने लग रहे हो भाई थे छेड़खानी करने लग रहे हो
1: भाई किसना भाई 7-8 दिन पहले की बात है अरे कोई काम पड़े हो शहर का नहीं चला और चूरू शहर आया कि भाई कोई देखो के बाजारों चीज वस्त लेने खातर अब साथन के पहली तो आयो तूफान
0: जोर को
1: और फिर इसो जोर को आयो मेर सागे ओला तो एक घंटा का मां देख लेते दूजनी छूट गई
0: और सर रूप दिखा दिया
1: हां और गांव जो चलया ने घराओ शहर आन वास्ते तो बी टाइम देखो के पसीनो तरासुर हो रहा
0: क्यों कौन सुहाओ
1: है तो बताओ के कुदरत का जगह खेला इन्हें या कुदरत की जगह पावर है शक्ति है भी को आपा मुकाबलो कर कौन सका आपनी तो भलाई इम ही है के प्रकृति ने आपा राजी रखा और जगह काम करना चाहिए आपने लिए भी सह के लिए खेती बाड़ी की दृष्टि उन पशुधन की दृष्टि उन जगह उपयोगी ही और अन अभी कोनी के भाई आपा वा बताऊं अनभिज्ञा अपन सब ठा है मानस सब जाने पण जदे आपा आंख मीच के या आपा अपने स्वार्थ खातिर कोई इशा काम करा ने जे क्यों प्रकृति नाराज हो जिया तो बिका नतीजा है किसना भाई के आंधी रोड़ा एकांत रह एक एक घंटा में बादल आ गया रोला पड़ लगा जदे जमीन तपगी नहीं तो बताओ आगे चाल के फिर सावनी के माँ आपने दिक्कत होगी
0: आपने जमीन के मायने जक्का भी कीड़ा कांटा जगह अपने फसल के लिए नुकसान दाई की
1: हाँ
0: तो माय नहीं रह गया
1: हाँ
0: और अब गल है देखो गर्मी भी बिया देखे जब पड़ रही है लेकिन भाई एक थोड़ा वक्त की गर्मी पड़ रही है
1: हाँ
0: और आपनी जमीन ने तो देखो लगातार कम से कम 1-1.5 महीने की गर्मी चाहिए जदबा जाकर अगली फसल के लिए तैयार हुए तो एक तो भाई प्रकृति के सागे आपा एक तो ई बात को ध्यान रखा के अब जहाँ आंधी उड़ो आन लाग रहे तो आप माटी दुनिया भर की उड़े
1: सा।
0: अगर मान लो आपा पेड़ पौधा जी ज्यादा हो तो बिग मायने बड़ो फर्क पड़ जाए जहाँ एक तो मान लो आपा गांव की बात करा और एक शहर की बात करा तो शहर के मायने तो देखो के जटे जोर की आबादी है मकान जुड़ रही है बैठे तो जोर की आंधी ऐसी तो ये तो बेरो कौन पड़े
1: कौन पड़े
0: और गाँव के मायने खुला घर
1: गांव तो ढूंढ पाते हैं है?
0: और फिर पेड़ पौधा भी देखो जितना होना चाहिए बिता हुई को नहीं तो बैठे जेब काली पीली आन दिया जा तो सिर छुपाने की भी दिक्कत हो जा कहीं जहाँ कर की कद आंधी जा तो आपन थोड़ो चैन आवे
1: तो भाई धरती जी की है ने इका श्रृंगार कैस का आपा पेड़ पौधा ने है भाई आदमी चोको सुवार करके नहाए दौड़ो फूटरा कपड़ा जगह धोड़ा पा पहना तो वो अपा अपने खातरी तो पहन रहा
0: सुंदर लगना
1: फूटरा आप खातरी तो पहन रहा
0: सही है,
1: नहीं गरम आपा निकला कोजा होड़ा गब्बा अरबी का गोबर लगा के निकल जिया वहां तो पहली बात तो घरारा चिमक जिया के भाई आज वो गड़बड़ है यहाँ किया और गली में निकला तो कोई मिलेगा तो वो मियाँ पट्टी दे जागो कुत्ता बिल्ली भाई भाग जा
0: सही है।
1: ओ की आ रही है।
0: सही।
1: तो देखो फुटराब जो है वो तो सन नहीं सोनो लग गए अब प्रकृति जी की है आप बोल रही को नहीं आ तो मुक्का ही मारा है
0: सीधा ही
1: हाँ
0: सजा ही दे रही है।

0: खरीफ की बात हुए चाहे रबी की हुए चाहे जायद की हुए, प्रत्येक फसल के लिए माटी के मां 17 प्रकार का पोषक तत्व एक संतुलित मात्रा में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिका कृषि विशेषज्ञ आपने स्टूडियो में वे भी अपन सलाह देवे, किसान भाई सलाह देवे कभी 3 साल के अंतराल से किसान देखो मिट्टी पानी की जांच करवानी चाहिए, ताकि अपन ये पतो चल जावे कि आपने खेत की माटी की स्थिति की है, कोई पोषक तत्व कम है भी की पूर्ति किया करा, कद अपन मिट्टी पानी की जांच करानी है, कद अपन पाड़ करानी है, कद अपन देखो जी घर रमाए कंपोस्ट खाद तैयार करेड़ी है, बाकिया गेरनी है कितनी कितनी मात्रा में गेरनी है, प्रति बीघा प्रति हेक्टेयर कितनी गेरनी है, और खाद गेरता ही अपन देखो तुरंत जगी बांध है बा करवा के माटी में मिलानी है, ताकि आपने खेत की जगी उर्वरा शक्ति है बा बनी रहे। क्योंकि कोई भी आप फसल जब खेत में बासिया तो बी के लिए एक तो पोषक तत्व है और एक पानी, ये दोनों बहुत जरूरी है। अब आपने तलसीर को पानी जुगाए फ्लोराइड की मात्रा है, नमक की मात्रा है, बी को ज्यादा इस्तेमाल करा, रासायनिक खाद ज्यादा आप खेत में टेकांगा तो भी खेत जगाए हो गया आंगने भर का पक्का हो गया, नमक की मात्रा बढ़ गई, बीस बीज है जुगा तो उगे को नहीं, जमीन में गलकी एक एक नाश हो गया, और उगे तो वो देखो के एकदम मरियो मरियो रह गया। कारण की है, कारण वो हो गयो के माटी के बाद की खाद और जहर जुगो है बीकी मात्रा बढ़ गई, अब सही को निपटे रखिया हुआ तो बी के लिए जरूरी है कभी ऐसा अप्रैल मई और जून 3 महीना जी की जोर की बरसात हुए जठ तक मोकली तावड़ी पड़े तो बी दौरान आपा किए गए जिया खेता में जगह जगह खड्डा करना ही है, शिणिया कोई बोझो डाली है वो काटियो बी के सारे गेर के दो कसी ऊपर रेत गेर दियो, तो ये श्यान दी उड़ा आवे तो भी कि आपने खेत की जगी रेत है वह उड़गे कुंजा आंधी में जगी रेत आ रही है जगी दूर हूं बाबा सनिया मैंने खीप में एक बुई एक आकड़ो एक मुरायली एक झाड़ी एक कंकेड़ो एक जो भी है जुगो आपा लकड़ी गेर दी। अब बहुत सा किसान है जगह एक एक खेई लकड़ी जगी खेता का गेर गेर ऊपर के या तो भारी दगड़ मेल दी या दो कसी रेत गेर दी, तो पांगे भिड़के रेत जगी है बा आगे को जा बा बठे या कूटिया सा बन जाए चार मेर, और जब आप खेत बावा बी टेम लेके कसी रुपए लकड़ती एक जगह मिरड़ो दे दियो और बाज की रेत है बाप बांध करावांगा या खेत न बुआवांगा तो बी टेम का मां सीधी हो जाएगी, बा अपने फसल के लिए देखो के एकदम के अमृत को काम करेगी हैं।
1: और एक सागे सागे देखो के खाद की है बा देखो अपन गोबर की खाद और तैयार करके चोकी त्रियासु बाद में अपन अपने खेत में देनी, रासायनिक खेती का नहीं तो देखो आपनो ध्यान बिल्कुल आपन हटाणो है। और आपना किसान भाई देखो 2-3-4-5 पशु लगभग करीब करीब घर के मायने ला जाए तो बने आपके जो धन पशु है चाहे वह मींगनी हुए चाहे गोबर हुए बने चोखी त्रियासु आप एक खाद तैयार करा। और अब जुगो अब आ रहे मान लो मई को वक्त है वो एकदम से बढ़िया वक्त चलने लाग रहे इससे पहली पहली आपन खाद तैयार करके और आपने खेत के मायने भी नहीं देनी है और बिरख्या जद मान लो होने को वक्त अभी टाइम आपने खेत के मायने में खिला देनी और फिर बढ़िया से लगाओ बांध
0: भाई। ए काम यहाँ तो आत को नहीं कहे भाई अपन अब गड़ा ही करना ही, पुरानिया जगह किसान है ने वे सब जाने और करें और आपा भी देखो का आपने कार्यक्रम के माध्यम से आपने जगह किसान भाई कार्यक्रम ने सुन रहे हैं बने भी आपा के बताता रहा है, नया जगह किसान बन कोई ध्यान नहीं है तो भी आपा देखो के रोज की आबाता ने बतावा के भाई आपा ने यहाँ खेती बाड़ी का जगह काम है वह करना चाहिए। अब खेतांग माज की कुछ योजना के अंतर्गत यहाँ कुआ बना लिया बिजली और संकट मिटियो है, अब आपने तो दिन के ही देखो के 6:30 बजे बिजली बनाना रो काम है जो चालू हो जाए
1: है, सूरज निकले और
0: सूरज निकले और एकदम फुल चस है आजकल और 10-11 बजे तो आ जाएगा एकदम खोपरी पर जाए कोई टोपली कोई तोलिए जो नहीं बने बने ने तो पसीनो चाल जाए
1: खराब हो जाए,
0: तो बताओ कि मैं सोलर प्लेट माऊ अपना बिजली बन रही है और खेतांग माजद पानी फसल में सब्जी में कोई देने बटन दबाए और फोन
1: चालू ही है
0: पशुआ खातर देखो के हरी घास की अब अपन 6-12 महीना बाइडी रखनी चाहिए, बीघे में एक आधी बीघे में जीता अपना पशु ही तो 20 आमो बाइडी रखो, कुत्र की मशीन की बिजली यारी घर घर में लाग रही खिता में लगा रखी किसाना, तो वो हरियो जो चारो है इन काट के ले आओ और मशीनों काट के कुत्र बना के पशुआ ने हरीर सुखी एकदम सुखी इतना छान के मिला के खुआओ ताकि आप

0: अपने पशुओं के शरीर में देखो, पानी की कमी को नहीं हो, दूध की कमी को नहीं हो, खेत की खेत रुखाड़ी होगी और चोखीज की खाद है, बाद देखो घर तैयार करो कंपोस्ट खाद, काचो जो गोबर है वो खेतों में सीधो ना गिरो, बी दीवल बने,
1: दीवल बने हाँ। नुकसान हो फायदो की
0: हाँ। नुकसान काचीज की खाद है ना, बा खेत में गेनो नुकसान को सोद है। कई किसानों को आप सुना हमारे खेत में तो पूरा में दिवड़ी हो गयो, जमीन है जगह उठेड़ी सी पाटेड़ी सी लागन लाग जा। अब बताओ बात, दिवड़ी इतनी जो खेत का मा हो जाए तो बात कोई सी फसल बाओ बात छोटे को नहीं
1: भाई, बिना खाने क्यों क्यों मिल सी, देखो दिवड़ो सी सीधी
0: हाँ।
1: बात पड़ी
0: हाँ।
1: जानवर चाहे कोई हो, बिना खाने जठे मिल सी वो बैठे भाग सी, तो है देखो जमीन का कीटाणु ही
0: हाँ।
1: कोई मान लो पेट भरने जी चीज बान मिलनी चाहिए, बा मिल बोग रहे तो बड़ी सी, तो आपने आ चीजा ने बढ़ानी नहीं बल्कि अपनी खेती की दृष्टि से नुकसान करें तो अन घटाने की कोशिश करें
0: हाँ।
1: और घटाने की कोशिश तो देखो जल्दी होगी कि भाई आप कोई खाद जगी घर तैयार करके तरीके से आपने खेत में दिया, और नहीं तो बेज का पोटा ही खेत में इन्हें लागे धक्को इन्हें हो जाएगा इन्हें हो जाएगा, काम तो क्यों आम को नुकसान करेगा
0: भाई। पशुधन जो है खेती का तो काम अपन करना ही करना ही, बार जकी के गर्मी को टेम है तो इमें आपने पशुआ ने जका किसान भाई हरियो घास बार रखियो ने बा ने खाने का मा ज्यादा ज्यादा देखो के हरियो चारो जो है वो देनो चाहिए कुतर काट के, ताकि गर्मी का मा एक तो किए का आपनो जो पशु है वो निरोग रहेगो स्वस्थ रहेगो, पानी की पूर्ति हो वो रहेगी, चा के खा आदमी थके हारियो खेत आवेर भी टेम जे रोटड़ी ढंकी नहीं सब्जी लगावन जे सागे नहीं है ने तो भूख कितनी लागेड़ी हो, थाली जे दावे ने जे देखता ही देखो कादी भूख मर जाए
1: मर जा,
0: और भोजन बढ़िया है थाली के मायो तो देखता ही जे भूख ने तो ही भूख लाग जा
1: बढ़ जा
0: है
1: बढ़ जा,
0: तो वो कारण है। अब ये तो मूक प्राणी है कदे ही उनके भाई आज भूख कम है मान दो केला आन दियो है, मैं तो चीकू खासिया मैं तो अंगूर खासिया अपन कदे ही गुन के, तो अब आने भी राजी रखना है प्रकृति ने भी राजी रखनी है, अब प्रकृति ने आप राजी रखांगा तो प्रकृति देखो के अपनी पूर्ति कर रही है ने, अनाज को है वो देखो खान वास्ते
1: सब्जी की सब्जी आवे
0: सब्जी देख लियो, पशुधन आप राख्या तो भी अपन दूध हो रही है, दूध बढ़ना राजगा कितनी बांध का व्यंजन है सारा अपने स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, तो प्रकृति ने भी अपन राजी रखनी पड़ सी, और जो अपनो पशुधन है जो अपना मूक प्राणी वाले भी राजी रखनी पड़ सी, मौसम की जो जो उतार चढ़ाव है ने ओ आ सालांगमा देखने का आयो है के गर्मी लगातार जगी है ने जी एक एक मन डेढ़ मन पली के पड़ती भोबर जान बिना की और शिलक तो ओड़गो तो बिया को रहयो। अब देखो के 5-7 दिन जी ही टेंपरेचर बढ़े और किने न किनो आंधी उड़ो आके गड़गज होके गर्मी हो जा तो भी वो टेंपरेचर जो डाउन आ गयो फिर ओजू बढ़े ओजू आ जा, तो इश्यू की है कि एक तो अपनी जगी धरती तपनी चाहिए हैं, क्योंकि तपे बिना धरती जगी है बाकी है कि भी में जगी ऊर्जा है वह बढ़नी जरूरी है, और ए उतार चढ़ाव जगह होने ए खेती की दृष्टि में भी सही को नहीं,
1: सही तो को नहीं, लेकिन हाँ। अब ये हिसाब से चलना पड़ेगा आप
0: हाँ।
1: अब तो जी आपन मौसम है तो ई मौसम के मायने आपन सो क्यों बदलना पड़ेगा
0: हाँ।
1: हिसाब से कौन सो नाज आपान बाणो चाहे बिको भी आपान ने के बदलाव करनो पड़ेगो, और कौन सी फसल कितने वक्त के लिए बढ़िया बने
0: हाँ।
1: भी आपान बदलाव करनो पड़ेगो
0: भाई, कृषि विज्ञान केंद्र जगह है तो बे आई साल के नया नया प्रयोग है नवाचार बे करता रहे, अखबार में भी देखो के बात छिपे खेती बाड़ी की है जी हाँ, बृहस्पतिवार ने एक पन्नो है जो अखबार में भरेड़ो ही आवे खेती बाड़ी को नवाचार हो गए कोई नई किस्म इजाद हुई है कि तो बीज कितनी मात्रा में सारी चीजें हमें भी गलावा जी आपा अपना जगह प्रोग्राम हुआ के माध्यम आपा बताता रहा बे जगह पावना ही बान आपा स्टूडियो में आमंत्रित करा तो बे भी जी आने कोई नई चीज है तो बा वार्ता भेंट वार्ता या फोन इन प्रोग्राम के माध्यम से आपने किसान भाइयों तक आपा पुकारो को पूरा प्रयास करा है, तो बी के हिसाब हो जब किए का अपना खेती बाड़ी का काम करांगा अपनो जो पशुधन है बिन खाने पीने की बल्कि स्वास्थ्य की हर एक चीज की हर एक बात की जब आप ध्यान रखांगा ने जदि आपने देखो के वो संसारिक चक्र जो है ने या गृहस्थी रूपी जगी गाडुली है इनके व्यवधान को नहीं आवे
1: है? नहीं तो देखो बीच बीच में परेशानी भी आवेगी, आरी बीमारी भी आवे, पशुधन भी बीमार हो जा, टाबर टिक रही, वे भी देखो कोई चीज इसी जगह चीज आपने नुकसान करे, मांगली नुकसान कर दी तो वे बीमार हो जा, तो

0: चारों जो कोई सिस्टम है बिन अगर आप मान लो तरीके से करता रहा तो आप प्रकृति अब भी आपनो सहयोग करेगी।
1: हाँ।
0: और आपने परिवार में भी को फायदो
1: भाई, फायदो आप ही होगो कि किसान जगाई भी का काम जगाई भी सारा मेहनत आ रहा है और मेहनत जब आदमी कर सी तो भी का शरीर की ऊर्जा है वह खर्च हो सी। अब ऊर्जा खर्च हो सी तो भी ऊर्जा की दोबारा पूर्ति के लिए आपनो जो भोजन है बिग माँ देखो के भात बांध की जी चीजा ही बाग होनो जरूरी है, है? अब बे खाने पीने में अपन चोखो जदी मिलेगो जद आपने घर दीणो होगो है, दीणो जे नहीं होगो तो आप चीजा की पूर्ति कर कौन सका,
0: कर कौन सका?
1: है? दूध की जगह तो दूध ही काम आओगे और घी की जगह घी काम आओगे, छा की जगह छा काम आएगी, रायते की जगह रायतो, कड्डी की जगह कड्डी, राबड़ी की जगह राबड़ी है। अब आपने इलाके में इतनी बढ़त पड़े है पर छा राबड़ी प्याजी मिला के जिया किलो खंड टिकेड़ी होने तो आपने काल जो एकदम बर्बर को ठंडो रहे,
0: ठंडो रहे
1: है, लू कुन लागे, दावड़ो कुन लागे, शरीर है जो एकदम सही रहे है, आदमी है जो बीमार को नहीं हुए, चोखी नींद आवे, चोखो हाजमो रहे है। पर यह चीजा आप जद ही खा सकांगा जद आपनो जो पशुधन है बिन आप राजी रखांगा और बिका खान पान की विशेष ध्यान रखांगा है जी। हाँ, प्रकृति आप जमीन में एक बीज को दाणो गिरा जार दाणा पासा करके दे रही है, पशुआ खातर आपन घास फूस है जो तैयार करके दे रही है फ्री कमाई है, और पशुओं जो आप दूध मिल रही है, दूध देखो कितनी प्रकार की चीजा है जी आप खान वास्ते बना रहा है, और वह सारी की सारी जी व्यंजन है उत्पाद जो है वो आपने स्वास्थ्य के लिहाज बहुत बढ़िया है। और जिया जिया अभी चीजों आप दूर हो तो गया तो बिया देख लो थे आदमी है जो कमजोर हो तो गई है,
0: कमजोर हो तो गए, बातचीत को आज देख लो के कोई मिनक ने देख लो कोई न कोई बीमारी भी कहला दे।
1: हाँ।
0: और पहले डांगे देखो के 70-70 साल तक ये भागता फिरता खेत के मायने लेकिन कोई सर्दी जुकाम ही कोनी होती,
1: एकदम पागे भर का रहता है,
0: पागे भर का रहता है।
1: हाँ।
0: पूरो काम करता पूरे दिन काम कर।
1: हाँ, हाँ।
0: अब यार देखो मिनखा की स्थिति आ कौन रही तो एक मैं देखो केवल मिन कोई दोष को नहीं खाने पीने को भी दोष हो गयो की भाई आप जो शुद्ध चीज मिलनी चाहिए बात भी कौन
1: आर्थिक युग है तो रसायनों को इस्तेमाल कर लगा, अनाज में जहर है जो मिलावट होके आ रही है, सब्जी उत्पादन हो रही है तो बिगमा जहर है, अब जो चारों ओर और जो खाने पीने की चीज आप पशुओं दे रहे हैं तो बीमे भी बात चीज मिल के पशुओं के पेट तक पुग रही है तो वो दूध जो है वो भी एकदम सही कौन रहे हो,
0: कौन रहे हो?
1: तो कुल मिला के जब आपने शरीर रूपी जी मशीन है इमें जिकी चीज आप खाने में पीने में काम ले रहे हैं बस सही नहीं जागी तो खराब तो होगी,
0: नुकसान कर सी बा अपन भी नुकसान कर सी और बस धीरे धीरे नई जी पीढ़ी बिन भी नुकसान करती। आप मान लो नई पीढ़ी में आशा रखा के भाई मजबूत भूकेला रे मोटेर पैदा होगा।
1: हाँ।
0: तो बाकी देखो के शुरुआत ही आप सही कौन कर रहा तो भाई मजबूत बनेगा
1: भाई। सार की बात किसना भाई एक ही है के प्रकृति के धरती के ऊपर मोगला जगह दरख्त लागेड़ाई बन काटो ना।
0: हाँ।
1: बांगी रक्षा करो और आगे जदे बरसा को दौर आवे आई साली आवे कोई नई बात को नहीं तो भी के पहली जगह अपन वृक्षारोपण की तैयारी करनी है जगह पूर्व प्लानिंग आप बोला वह देखो आम नमी करनी है खड़ा करना है कितनी दूरी पर करना है कितना डूंगा करना है लंबाई चौड़ाई जिया हुए बस सारी फिर भी अपन आगे चाल के देखो खाद भी देनी है बढ़िया किस्म का जगह पौधा ही को चयन करना है बरसात होने के बाद में लगानी है खाद जगी है वह जमीन में देसी जगी खाद है तैयार करी बात ज्यादा में ज्यादा खेतों का मापा इस्तेमाल करांगा आप पर्यावरण जो है वो शुद्ध रहेगा तो बीच देखो कह प्रकृति राजी रहेगी जट्ठे जक्के इलाके का मां हरियाली जितनी ज्यादा होगी बड़े देखो बरसात ज्यादा होगी बरसात होगी तो बीच आप देखो कि पीण के वास्ते मीठू पानी मिलेगा खेता में काम करांगा अपना कुंड भर जाएगा है और अपनी खेती बाड़ी का काम जगह बढ़िया होगा
0: चौको पशुधन ने पानी शुद्ध पीने मिलेगा तो ए देखो सगली जगी चीजा ही बांको आपने ध्यान रखना पड़ो और देखो सावधानी भी आपन रखनी पड़े गोपाल भाई सावधानी पर आप भी रखनी पड़ेगी कई बार होगी आपन बातें चीता करता कोई एक सांतरी सी लोक रचना आपने किसान बयान सुना दिया
1: सुनाओ सा
0: तो सुनावा या सांतरी सी एक लोक रचना सुजान सिंह खींची और साथियों की आवाज के मायने

0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ,
1: नए सत्र में पहले 100 प्रवेश पर फीस में 25% की छूट,
0: कृषि विज्ञान कॉमर्स व कला सभी विषय उपलब्ध,
1: बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति,
0: अनुभवी साफ सुरक्षित वाहन सुविधा और शानदार परिणाम,
1: हजारों छात्र आज सरकारी सेवाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में,
0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ 9413360977।
2: तो अभी देखो आप संदेश सुनो, और संदेश से पहले आप सुजान सिंह खींची और साथियों की आवाज के मैंने शांति सी लोक रचना
3: सुनी सा।
2: और गोपाल भाई देखो खेती बाड़ी से जुड़ी आप बात नहीं करने लग रहा।
3: हाँ हाँ।
2: और अब देखो के खेती बाड़ी से जुड़ी आपन बातचीत करनी है, पर मन करेगा भाई खेती बाड़ी के सागे सागे थोड़ी सी आप बिचाले एक पशुधन की बात और कर ले।
3: हाँ हाँ।
2: भैया तो आपने देखो के जिका किसान भाई बे सगलाई पशु बड़ा छोटा सगलाई रखे, पर जे गरीब मिनक की बात आवे
3: हाँ।
2: तो बिन आप सदा ही आ गया करा के भाई गरीब की जगी गाय है बा बकरी हुए
3: है सा
2: है?
3: है।
2: और बकरी देखो देखने में छोटी सी लागे, लेकिन किसान ने तो आप मान लो के भाई एक एटीएम मशीन की नहीं, जद भी ने जरूरत तो है आधी रात की भी जरूरत पड़ जाए तो भी का 5 रुपया किसान भाई एटीएम गए नहीं, जहाँ एटीएम में आप जमा मायने काट दियो टका टक टका टक पीस आ जा
3: आज जा।
2: तो भैया ये एक जगह बकरी है
3: हाँ।
2: एक बहुत ही फायदा

0: सो दो। और छोटे किसान के लिए तो आप मान लो कि भाई एक तरह से रामबाण है।
1: सही बात,
0: क्योंकि भाई जहाँ बड़ी सारी जगह हुए, बड़ा बड़ा खेत हुए, तो बैठे तो आप चाहे गाय रख लो, भैंस भी रख लो, सो क्यों रख सका।
1: ठीक बात,
0: लेकिन थोड़ी जगह हुए और थोड़ी जगह के मायने आपने जे घर के मायने भी जुगाड़ नहीं हुए तो आप छोटो पशु ही रखो जा सके। तो बकरी जे आप तीन चार बकरी पाल ली तो आ मान लो के मन्ने की एक मन्ने की तो आप भी कौन कह सका, लेकिन साल की निश्चित आय हो जाए भी मन्ने में आप काट सका। अब जो मान लो के घर के मायने हजार काम हो, आरी बीमारी भी होगी, छोटो मोटो कोई कारण का भी हो गयो, टाबर की जो मान लो कोई फीस को काम भी हो गयो, आजकल पढ़ाई में देखो मोकड़ा पीसा लागे
1: लाग गए साल,
0: और अचानक पांच सात दस हजार की जो जरूरत पड़ जाए तो एक दो बकरियों बेचो और आपको काम निकल जाए।
1: सही बात,
0: तो किसान बहन देखो के बकरी की है बात पालनी चाहिए और बकरी देखो तरीके से पालनी चाहिए, क्योंकि बकरी भी नए नए भांत भांत की देखो के जिकी नस्ल की बकरी आ रही
1: आ रही,
0: कुछ बकरी तो इसी हो जो की मान लो के दूध के रूप में पाली जावे और कुछ बकरी इसी हो जो की मान लो के कद काठी शरीर के हिसाब से दूसरे उपयोग में मिले इसका।
1: सही बात है,
0: तो आ नहीं कि भाई बकरी ने आपा पाला तो एक फॉर्मेलिटी नहीं, बढ़िया जगी नस्ल की बकरियां हैं वे आपा ल्यावा और बांसु देखो आपा चोखो दूध भी मिले, क्योंकि सागे सागे बांस की जगी खाद है बिन भी आपा काम में लिया, और दूध के रूप में तो देखो कि आजकल इसी सी बकरियां के दो दो तीन तीन लीटर वाली दूध भी दूध की बकरियां भी मिले लाएंगे।
1: भाई किसना भाई क्यों हो के पहले संयुक्त परिवार होया करता तो बिम की एक माने से जगह घर के माँ की के भेड़ा रहा करता, दस एक बीस जीता भी होता छोटा मोटा बूढ़ा ठेरा सब, तो बे के मिलजुल के सारा काम करया करता, खेती बाड़ी का काम भी पांगा खानान पीनान भोजन बनाना सारो जो को काम है ने वो सगड़ा को सगा होया करता।
0: पंद्रह पंद्रह बीस बीस होता।
1: अब जिया जिया के पढ़ाई लिखाई को हिसाब किताब बढ़ियो ने नौकरी पैसा नौकरियां बढ़ी तो बिया बिया के परिवार जगह इन्हें छोटा होता गया, एकल पिया परिवार जगह इन्हें ज्यादा हो गया, तो बिशु के जो मोगलो पशु रखता बटे दिक्कत आव लगी है भाई आपनो गार भैंस पांच पांच चार चार समय को नहीं तो आपने एक दिन खातर तो लियानी को नहीं राखनी को नहीं।
0: सही है,
1: है? पशुधन रखांगा आदमी का काम दाम इसका देखो दिन भर इसका चलता रहे
0: पूरे दिन चलता रहे फुर्सती को मिले।
1: हाँ तो बीम फिर की होएगा जिया छोटा परिवार हो गया जिया दो तीन सदस्य हैं एक जिया सिरो ही नस्ल की आप बकरी लिया है। तो एक तो बकरी जी की है तो भी का ठाण जटा आप बनावा तो बिन ज्यादा जगह की जरूरत कौन पड़े, क्यों छोटो सो ही जीव है।
0: हाँ बिल्कुल,
1: और एक खाने की जी आप बात करा तो खाने में भी जी एक तो भैंस खा एक बकरी खा रात दिन को अंतर है,
0: रात दिन को अंतर।
1: खेत में जा जिया आगे बिरखा दो चाल सिर दस मिनट लागे जचावड़ी को जी एक कटियो भर लियावा ने तो बकरी तो पूरे दिन की गई गाड़ी।
0: सही
1: है, है? चोखी आपकी खा के नसीहत हो जा। फिर बकरी जी की है बस साल का माह दो बारी ब्याह है, जे दो दो बच्चिया ले आवे तो चार बच्चिया हो गया,
0: चार बच्चिया हो गया।
1: अब बे चार बच्चिया इन जगह दो दो मनागा करके या तीन तीन मना करके बेचे तो बांका भी देखो कर रकम आजकल मोकली उठे
0: भाई। आप बतास कहा के साल के मैंने दुगुनो धन देने वाली एक
1: हाँ,
0: अब आप चाहे एफडी करा दो और चाहे आरडी करा दो और चाहे क्यू करा दो भाई साल का मैंने दुगुना दी होनी।
1: फिर एक तो वो जो आगू आगे बांगो वंश जो है वो बढ़ तो जावे, और जो बकरी है तो बा आगे के लिए देखो के नई बकरी आपने घर के मां तैयार होगी। फिर बकरी को दूध जुको है ने वो टाबरा के लिए और बड़े बुढ़ा के लिए जितो गुणिया है ने बीतो देखो और क्या

0: बकरी बकरी नाम लिया करता
1: और बकरियां दूध
0: देखो कि तो बकरी को दूध अब सहराम जगह नहीं रखे पशुधन ने तो वह कहता भाई गाँव गठों लियाओ चे का शरीर में था गड़बड़ होगी ज्यादा ज्यादा हो सके जी हाँ बकरी को दूध है जो पियाओ
1: इलाज
0: तो कहने को मतलब बकरी को दूध जो है वो इतो फोसरो और इतो उपयोगी हो बच्चा के लिए और बूढ़ा ठहरा के लिए।
1: हाँ।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
1: तो देखो अभी आप संदेश सुनो।
2: हाँ।
1: और संदेश पहली मुरली राजस्थानी और साथ ही आवाज के मायने सुनी शांति सी लोक रचना
2: सुनी सा।
1: और देखो के खेती बाड़ी की भी बात करी, पशुधन की भी बात करी, अबार बख देखो वही है के आपा आपने जो के सुनना रहे दल बस वो आगे की आने वाली फसल है भी की देखो तैयारी के मायने जुट रहे हैं।
2: हाँ हाँ।
1: और देखो कई बार आपने मान लो जून के लास्ट सप्ताह के मायने मानसून आ जाए।
2: हाँ हाँ।
1: और बी से पहली ज्या मान लो बीच के दौर के मायने जे ढंकी बिरख्या हो जा।
2: हाँ हाँ।
1: तो अपना किसान भाई जका देखो के बाजरी बाबा दिया करे। और बाजरी के लिए देखो के 8-10 आंगल दे मेड़ हो जा।
2: हाँ।
1: तो अब आने वाले वक्त के मायने देखो अपना किसान भाई जगह देखो वाली उठा लेगा। और बीच बीच के मायने देखो फिर क्या हुन भी लाग रही है।
2: हाँ।
1: तो हो सके अपनो बाजरो मान लो के आप 15-10 दिन के मायने जे अभी बिरख्या हो जा जे बाढ़ हो तो वो देखो के आगे जोर पकड़े
2: भाई। एक तो किसान भाई ने वो कहना चाहूंगा कि बार जो टेम चल रही है वो जायद फसलों को चल रही है। और जायद के मां जका भी किसान जी बाजरी की मूंग की कोई फसल बार रखी है तो भी देखो के पानी की जी व्यवस्था है वह बराबर बना के रखें। क्योंकि तापमान ज्यादा हो रही है बीच में ठीक है 5-5, 4-4 दिनों कदे आंगल कदे दो आंगल का सड़का भी लाग रही
1: पड़े
2: तावड़ो भी मोकड़ो पड़े।
1: हाँ।
2: ताती पून भी चले तो ब्यू किए के पानी जो आप छिड़काव करा वो उड़ जा
1: वेरी गुड।
2: हाँ, हाँ। क्योंकि आपने अठे इलाके की बालू रेत है बालू रेत जिकी हुए आ देखो के इकी जल धारण क्षमता है वह बहुत कमजोर हो
1: कमजोर हो
2: इन्हें चाहिए छिचका।
1: हाँ।
2: दो दो चार चार दिन अब छिचका तो आप रोजी कटू लिया
1: सही है
2: तो भाई जी हाँ प्रकृति है बात जी हाँ बरसात करे जिद करे भी साबू ही अपन चालू पड़े।
1: हाँ, नहीं तो हाँ। अपन ही तैयारी करनी पड़े कौन कोई
2: क्योंकि कूटिया जगह बना रखी है किसान ज्यादातर खेता कमाई ने और जो फसल बे बाहर रखी है या सब्जी जे

0: रखी है तो भी कमा पानी की कमी जगह बा नहीं होने दें क्योंकि पानी की कमी होता ही फिर की है कि फसल है जगी दो चार दिन में लटपटा जा
1: भैया गर्मी सहन कौन कर
0: पा हाँ एर इतनी मेहनत कर ली चाहे वह सब्जी हो चाहे फसल है बा एक बार जिया की है कि नाड़ गिर देने तो फिर समझनी है जी मुश्किल हो जाए
1: मुश्किल काम हो जाए
0: तो एक तो जायद फसलाम जी की पानी देणों को जो काम है वो बराबर करें और बाकी जे सगड़ा नहीं खेत बारा के जगह ठल पिया किसान है तो बन आप सलाह आई देनी चाहवांगा कि भाई दिन के उठता ही 6 बजे करके कलेओ और कसी फावड़ा लेकर खेत में उठ जाओ और 9:30-9:10 बजे तक खेत का मां काम करो बोझ डाली को काम है तो वो कर लियो कोई जंटिया जाटिया आएंगे नीचे जे कोई लकड़ी झापड़ लटके तो बन काट के मिर्डा दे दो या जगह जगह खेई बना के गेर गेर ऊपर दाबो दे दो और खेत का मां जे आप फावड़ा या छोटी जगी कसी आवे आधी फुट की भी जे आप खड्डा कर दिया एक एक दो दो फुट की दूरी पर आधी आधी फुट डूंगा तो वे भी देखो कि आपने खेती के लिए आज बहुत जोर का है कि एक तो आपने के नियम बना लियो कि दिन के आप खेत पैदल जैसे देखो कि सुबह ही घुमाई होगी
1: स्वास्थ्य ठीक रहेसी
0: आदमी है जो निरोग रहेसी खेत में रोज की जो चांद उजाड़ होने डर को नहीं के कोई लकड़ी को बरोटियो बानी के ले गयो कोई लट टूटेड़ा वो ले गयो भाई आपा खेत नहीं संभाल सिया तो थे जानो के अनजान खेत में तो और
1: नुकसान ही होवे
0: उजाड़ी होवे
1: उजाड़ी हो
0: रोज की खेत संभालांगा जावांगा कोई इया को नहीं कहा कि कोई लूंग की जंटी है जो छाएंगे और बरोटी बानी के आपको ले गयो है सांगरी का बहाने कई बरोट बानी के ले जाए चालू हुई जगह तो रोज की खेत संभाले गयो है कोई खुद एक झोपड़ो खेत में पुलिया पलिया लगा के चौकी तरी अरबिंद चाले हो क्योंकि आगे जब सावनी आप बाऊंगा तो भी टाइम देखो कि बैठ ठाम जगाई मैं अपने काम आऊंगा है छोटा दरखत है दबाम जी कुंडिया कांडिया का साधन अपने सगड़ा गए किसान गए तो बम जी आप रोज की खेत दसिया तो बंग मां रोज की देखो का पानी देवना को काम है वो भी कर सिया
1: और एक सागे सागे देखो का बाहर जो को वक्त है वो पानी को माटी को जांच को है क्योंकि हाँ। आगे आने वाले वक्त में आप फसल की तैयारी करांगा
0: कर सिया
1: तो बीस से पहले आपने देखो आपने खेत की माटी है पानी है की जांच हो कितनी ऐसी करवानी चाहिए हाँ। जो कोई कमी है तो भी कमी ना अपन दूर करने की कोशिश करनी चाहिए
0: हाँ।
1: और कोई जो चीज ज्यादा है तो आपने कम करने की कोशिश करनी चाहिए
0: सही बात है
1: तो आपनो जो खेत है बिन एकदम से आप तैयार करके रखा और जे बिरख्या को टाइम आवे बिरख्या आवे बी वक्त आप सागलो अपनो बीज है खाद है बस अगली तैयार रखा और आपने खेत ने वक्त के ऊपर बिजाई करा
0: भाई किसना भाई कोई भी काम करो चे किसान हो चे और कोई हो जो को योजना बना के फिर जो को काम न करेगो ने वो काम जो को है वो सही हो फलीभूत भी हो परिणाम जगाई में फूट रहा हो और ताकड़ में जल्दबाजी में आप करांगा बिना मनु करांगा ना कोई काम तो भी मैं आपा पेश को नहीं पास का
1: सही
0: है खेती बाड़ी का आप किसान है तो खेती बाड़ी का ही काम करेगो
1: तो देखो गोपाल भाई बात नहीं तो आप मोगली करता लेकिन कार्यक्रम को देखो वक्त पूरा हो गयो खातिर ओजू मिले तेन किसने भाई ने
0: और गोपाल भाई ने देव सीख करा राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम है गुलदस्ता। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से। पहला गीत हमने लिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में। भीगी पल के फिल्म का ये गीत है। और आज के इस फिल्म संगीत कार्यक्रम में कुछ हम नए पुराने

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम गुलदस्ता इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से। कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति। और जमाई राजा फिल्म का ये गीत अब आप सुनेंगे अमित कुमार और अलका याग्निक की युगल आवाजों में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

तो श्रोता वो प्रस्तुत है फिल्म संगीत की अगली प्रस्तुति अफसाना प्यार का फिल्म का ये गीत अब आप सुनेंगे आशा भोसले उदित नारायण की युगल आवाजों में। अनजान का लिखा हुआ ये गीत है जिसे संगीत से सजाया है बपी लहरी ने।

श्रुतम फिल्म संगीत की प्रस्तुति अभी आपने सुनी राजा फिल्म से। इस गीत को गाया था उदित नारायण और साथ दिया था अलका याग्निक ने। फिल्म संगीत की अगली प्रस्तुति अब आप सुनेंगे इश्क फिल्म से, और इस गीत को गाया है उदित नारायण और साथ दिया है विभा शर्मा ने। राहत इंदौरी का लिखा यह गीत अब आप सुन रहे हैं, जिसे संगीत दिया है अनु मलिक ने।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान।

0: आकाशवाणी चोरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: श्रोताओं, फिल्म संगीत की प्रस्तुति समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से जानम समझा करो। इस फिल्म का ये गीत अब आप सुनेंगे कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाजों में। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: I think it's happening.
1: What's happening?
0: Love is happening.
1: I love you.
2: Oh. तो श्रोताओं, फिल्म संगीत की ये प्रस्तुति अभी आपने सुनी कुमार सानू और अलका याग्निक की योगा लवासों में। आइए बढ़ते हैं फिल्म संगीत की एक और प्रस्तुति की ओर। ये गीत हमने लिया है राजकुमार फिल्म से। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

तो शतम फिल्म संगीत की ये प्रस्तुति अभी आप सुन रहे हैं राजकुमार फिल्म से। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत की अंतिम प्रस्तुति। श्रुति पाठक और सलीम मर्चेंट की आवाज में ये गीत आप सुनेंगे फैशन फिल्म से।

0: पुरुषोत्तम फैशन फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। रात्रि 8:45 होने वाले हैं और उससे थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या, और रात्रि 9 समय रहेगा News@9 का। इन समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने RJKR मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई U17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से

0: सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रेटजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनीतिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
5: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के

0: है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewzOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। IPL क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Kaur rape and murder case. Met department forecasts heat wave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
3: Almost free, open or safe banaye rakhna ye hamari sabse badi prathmikta hai. Is vision mein antarrashtriya kanunon ka palan avashyak hai. Brother, Bharat har paristhiti mein UAE ke saath kandhe se kandha milakar khada hai.
2: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that it looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. We have more from our West Asia correspondent.
4: The talks yielded a wide range of agreements on energy. India Strategic Petroleum Reserves Limited and Abu Dhabi National Oil Company signed a strategic collaboration agreement to raise UAE's participation in India's strategic petroleum reserves to 30 million barrels. A long-term LPG supply arrangement between Indian Oil Corporation and ADNOC was also concluded. On defense, the two sides signed a framework for a strategic defense partnership covering industrial collaboration, maritime security, cyber defense and information exchange. $5 billion in UAE investment to India was announced. $3 billion from the Emirates New Development Bank into RBL Bank, $1 billion from the Abu Dhabi Investment Authority into priority infrastructure projects, and $1 billion from the International Holding Company into Sammaan Capital. The two countries also signed agreements to establish a ship repair cluster at Vatnagar, a skill development framework for the maritime sector, and an agreement to set up an exaflop supercomputing cluster between India's SeaTac and UAE's G42. This is Vinod Kumar for Akashwani News from Abu Dhabi.
2: Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Speaking to Akashwani, Ambassador Deepak Mittal said, India and the UAE have taken several strategic decisions during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi to deepen cooperation in energy, technology, investment and trade.
5: Today, the visit of the Honorable Prime Minister, there were very strategic announcements, long-term decisions to deepen India's energy security and to deepen energy partnership between India and the UAE. The discussions between the leaders today also touched upon technology, the decisions to set up 8 exaflop supercompute facility in India, which will be based upon the Cerebras chip technology. That will form a very important part of our AI mission. Associated with was also the UAE decision to also partnership in developing the ship repair cluster in the Vadina in India.
2: Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening the shared planet and futures such as climate change. Briefing media New Delhi after the conclusion of BRICS foreign ministers' meeting, Secretary of Economic Relations and Minister of External Affairs Sudhakar Dalela said all the BRICS members and partner countries were highly appreciative and supportive of India's chairship priorities under the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.
6: All the BRICS members and partner countries were very appreciative and supportive of India's chairship priorities on the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Building on this deliberation in the last 2 days and based on these discussions, we have issued as chair statement and outcome document. It captures the common position of BRICS members on almost all the subjects under the three pillars of BRICS strategic partnership.
2: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today addressed the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers' meeting. He said India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reformed and effective multilateralism. Dr. Jaishankar said the breadth of the meeting reflects the importance that all leaders attach to strengthening multilateral cooperation in a rapidly changing world. Dr. S. Jayashankar also met foreign ministers of Iran, Malaysia, UK,

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: कार्यक्रम बाताई चाले सुनन आरा सारा है तालवा ने भाई मोहन गानी सुन
2: और भाई दुलाराम गानी सुन
1: मोकड़ा मोकड़ा।

0: राम राम। मन भाई आज आप बैठा नहीं तरह चौपाल में, आज तो की शांति है, आंधी उड़ो को नहीं,
1: बिल्कुल
0: है नहीं। लेला दो तीन दिन में तो यहाँ मान लो के जी दिन ढलना वे बी है जो त्यार है
1: आंधी उड़ा एकदम
0: है नहीं। और ओ भगत आंधी उड़ांग है और आंधी उड़ा लगे टके का हुआ है कि जो चिड़ जकी व्यवस्था है नहीं बिन उड़ा के ले जाए
1: बिल्कुल।
0: और आंधी उड़ा मौसम का ही कोने सामाजिक चाल चलने पर भी आंधी उल्टा है।
1: सही बात है,
0: बहुत सी चीजें ऐसी अपने सामाजिक ढांचा में बने जगह ने उड़ा के ले जा रहे हैं। और मोहन भाई भी उड़ने में एक परिवार भी है
1: बिल्कुल।
0: आज विश्व परिवार दिवस है और ये मौके सगड़ा ने बधाई देता तक सावचेती की बात भी आप करा
1: बिल्कुल।
0: आपने देश में संयुक्त परिवार की अवधारणा बहुत ठड्डी और जका रलवा परिवार शीर को जो परिवार होने परिवार को जो शीर संपो बिंगे कारण पूरी पूरी व्यवस्था है जकी आनंद की और मौज की एकल परिवार की जकी अवधारणा है आपने ठेको नहीं।
1: सही बात है
0: भाई, पांच भाई आ तो भी पांचों भाइयों का परिवार है जका एक सागर रहता है। और आंधना में आंधी उल्टा की बात कर नहीं, आंधना में माँ मई जून में डेढ़ महीने गर्मी की छुट्टी होती कक्के गार ताऊ गार बुए बुआ गार है ने सगड़ा टब्बर एक जगह होता तो इस घर शायद ही कोने रहे तो जगह घर में 20-25 टब्बर नहीं होता
1: पूरी टोली हो जीती
0: है ने
1: और गुआड़ी पूरी
0: भरेड़ी रहती। और भी भरेड़ी के माई तो संपो के घर गाने गिनना पड़ता का सगड़ा आ गया के पर फिर भी घर गाने कोई के नाक में सड़को नहीं आपस में लड़ता जो आप आ रहे था पहल बहुत बढ़ता दूसरे की बुलाई गलती हो बुलाई बोले थम तो मैं बताऊं तने तो फिर वो जो संयुक्त परिवार में पड़ेगी टब्बरों बात झिझक तो के माँ बाप अपनी मेहर तो खोल लेगा
1: सही
0: है व्यवस्था जमागे रखनी है किन्नी गलती नहीं करा क्योंकि पढ़ना तो फिर आपने ही है
1: सही
0: है ने तो वो एक संप बने रहे तो और संप के में भी आ होती कि घर को एक मुखिया हो तो चाहे भलाई वो शरण पद में छोटी हुशार है तो छोटी ने बास पेट चौधर और भलाई बडोडो है तो बडोडा का नाम एक मुखिया मान लियो कि भाई पांच भाई है तो बा में मान लियो छोटी छोटी हुशार है तो घर को सारो बारो ही कने
1: सही है।
0: फिर सगड़ा भी कह करता के लोग के लुगाई के टाबर के छोरी छापरी सगड़ा के रिश्तेदार कोई बात होती पूछता भी फलानिया ने बुझो भी घर में तो
1: सही है
0: शानो वही है और घर है भी हिसाब चाल तो
1: बिल्कुल
0: आमदनी आउंती जो सगड़ा आप आपको कमाऊता तो भी कमा के बिंक ने बेड़ो होता आपको हाथ में देता कर ले खर्चो चीज तो फिर बिंक ने पुटा मांगता के मन दे भाई के
1: सही
0: है नी काका मन दे ताऊ मन दे अने गांव से जानो होता तो भाड़ो मांगे ले जानता
1: बिल्कुल
0: अने तो एक वो संपो और एक आज के संप में परिवार की अवधारणा संयुक्त परिवार टूटता टूटता एकल परिवार आ गया एकल परिवार में अवधारणा आ गई के मैं दो पति पत्नी मारे दो बेटो बेटी या फिर मैं दो और मारे एक
1: सही है अब तो एक पर ही आ गया
0: अने तो तीन या चार सदस्य का परिवार है जे संजोग बूढ़ी बुढ़ी जीवे तो बाने दुआ और जोड़ लो छह पांच मान लो आई है नी और बिंग माँ भी आई स्थिति होगी बिंग माँ भी बैका नहीं आंधी उड़ा का जका झोंका है बिंग माँ भी एक मोबाइल और आ गयो
1: बिल्कुल
0: है
1: वो सबसे खतरनाक
0: चार जना चार कमरे चारों आपके कुंट में बैठे आप आपकी में कुण कद आयो कुण कद गयो गेरो को नहीं दुनिया की खबर है दुनिया में हजारों भाई लैबिंग ऊपर जुड़ रहे
1: बांको सारो पत्तो
0: है नहीं
1: भाई ऐड बैठे बैठे ना दिल्ली में क्यों हो रही है वो सारो पत्तो
0: वो गेरो है
1: पर आपने घर में परिवार में क्यों हो रही है वो गेरो बन
0: सोशल साइट्स होगी फेसबुक ट्विटर ऐसा हो गया जकांग ऊपर पांच पांच सात सात हजार दस दस हजार तेरा भाई लाए
1: अपने परिवार में चार लोग है भाई क्या कर रहे है आज किस मिल के आया आज पूरे दिन बांको किसो बीतो आपने किसो बीतो वो आपस में पत्तो को नहीं बाकी पल पल की आपने अपडेट है कि मुंबई में ही होगी और दिल्ली में ही होगी और इतना बयान दिया होगी वो राजनीतिक मामलों इश्यो होगी और सारी न्यूज रहे
0: प्लांट
1: की जंग आई होगी और आपने घर पत्तो बन रहा
0: तो

0: वो आंधी उल्टो जो थे बतायो
1: वो को खतरनाक है सेव खतरनाक है
0: एकांकी परिवार और आयो जो तानी ठीक है पण ओ जो मोबाइल और आंधी आई है
1: हां
0: आ तो और ही खतरनाक
1: खतरनाक है और ई भी खतरनाक इंगली और होगी मोहन भाई पहले आपने दुख सुख होता नहीं बांट लेता यूं तो के बाबू करोड़ो तो थोड़ा

0: आज एकल परिवार मानन से उम्मीद होगी 99 आ गया तो एक किया कट गयो सिर को ऊपर खड़ा रहे जोत लिया एक और नंबर कट्टो क्या हिसाब लियो बिटाबुर भी हिसाब लियो भाई मास्टरों भी हिसाब लियो स्कूल में जाके भी तलछट सगड़ी छाणो एक नंबर भाई टाबर वो कट्टो तो कट्टो किया सोमो सोची है ताने अरे बिटाबर के ऊपर देखो दबाव
1: सही बात है।
0: और दबाव में भी आत्मीयता है को नहीं बेकल परिवार के बता दिया नहीं आयो तो वो किताबा में लग गया मोबाइल में लग गया कालजू जुड़ेड़ो को नहीं तो टाबर का दुख आयो तो वो दुख गावे की आगे फिर वो टूटे और टूटे रोज के बारे में देखा कि टाबर है जगह आत्महत्या करे
1: बिल्कुल
0: है ने कम नंबर आनो नंबर न आनो या कोई थोड़ा सा दुख आयो भी जेल को नहीं सके और पहली दुआ होती चलता चलता दांत खट जाता दांत टूट जाता तो यहाँ सीखे पच्चा खट जाता कोई नहीं होता उग जाएगा
1: हाँ संभालनी अभी
0: संभालनी है नहीं
1: और इतना अनुभवी लोग आ मिनट में संभाल लेता
0: मिनट में संभाल
1: कहना रहता सारा लोग अब बात रही कुनी थे जी हाँ बता रहे होगा केल अपन सजूज रहे पर फिर अगर बिन्नू सारो नहीं मिलियो तो वो फिर इसी संगत में चल जाओ जगीबा बिगलिए ठीक कुनी आगे जाके बा खराब हो जाओ भाई कोई कौन दिक्कत इसी संगत में पूग जाओ बाद में
0: भी इतनी नुकसानदायक है नहीं कहने संगत तो साहिर तिर है संगत है नहीं बह कह रहे कालिए कम तोड़िए बैठे रंग तो को नहीं आए अपने अकल जरूर आए तो बा फिर जबकि अकल आईडिया जब बा ठीक हो तो ठीक है और अकल के गुण लाग गए तो बा फिर फोड़ा ही गाल है
1: सही बात
0: है नहीं तो बा निगे कुंड रखे बा निगे तो परिवार अपना आए तो किन्नी हो वो है नहीं कक्का ने तो कह दियो हमारे बच्चों को कहने की जरूरत नहीं है वह तो क्यों छेड़ेगा बताओ नहीं थे
1: सही बात है
0: आपका टाप रहेंगे आप रुखाड़ा आपके ने टेम को नहीं आपके ने मोबाइल है दूसरी दुनिया है फीसों कमाणु है टाप रहेंगे कितनी पीती फीस होगी बाप भर नगले दिन को ले गया था नहीं खटनु है
1: बिल्कुल भाई आज के टाइम में तो दूसरों कह भी कौन सके
0: हाँ
1: दूसरों कहो तो उल्टी गड़ा जा कोई टाइम गाँव कमाई नहीं है ओके गांव को पूरा एक परिवार की तरह रहता है टाबर बदमाशी करता तो आतो जातो कोई दकाल दे तो भी नहीं
0: दकाल के दे तो इल्लाबास इल्लाबास में गेड़ा होता कुछ मात करता देख जानता जद प्रसाद आतो आद मिल जान तो
1: और माँ बाप भी की गुण करता
0: बल बढ़िया करियो और कहें तो दो ही मारे दो और मारना चाहिए आगे
1: और आज यह स्थिति है कि बच्चों आपन दिख रही है कोई सामने बदमाशी भी कर रही है तो आप आ सोच के कौन कैसे कहेंगे अगर कहूंगा तो उल्टी अपना जो
0: घर का मेड ले गया है मुकदमे दाने कराने तैयार हो जाए बोले तू कौन है मार्टा पर करेगो तो करेगो सन्न लेनो देनो फिर सागे करो गया बता नहीं
1: इसलिए जरूरत पड़ी ये दिन न मनाने खातर नहीं तो परिवार दिवस की जरूरत
0: पड़ी बिल्कुल बिल्कुल
1: धीरे धीरे जी अलग अलग होता जा रहा है
0: परिवार टूटता गया परिवार में विखंडन आते गयो नुकसान होता गया जब फिर जबकि अंतरराष्ट्रीय संस्था आ सोचो का दुनिया भर की समस्या हो गई और परिवार होना बहुत जरूरी है और एक तो मोहन भाई आता है कोई भी यूनिटी होगी नहीं वो परिवार हो चाहे वो बिणज हो चाहे की हो एक दुकान में जे मान लियो थे दुकान करीब में पांच थे कर्मचारी रखे हो पांच वाई नैर नैरी बुद्धि होगी कोई लेट आओगो कोई काम सही करेगो कोई काम चोर होएगो कोई ईमानदार होगो कोई थोड़ी घनी बेईमानी करेगो नहीं वहां सगड़ा सा के थाने मिला गया थाने थार दुकान चलानी होगी ते नहीं धंधे को तो होता सिर तो अपन जाने ही बाकी बात आगे परिवार में जे पांच भाई है तो पांच भाई एक साथ हो गए को नहीं
1: सही है
0: एक बेईमान भी हो सके एक होशियार भी हो सके एक काम करनी भी हो सके एक काम उपलैरनेस रखनी भी हो सके एक उड़ाव काटनी भी हो सके एक
1: आधा
0: एक कम खर्चो करनी हो सके ज्यादा खर्चो करनी हो हजार बात का सगड़ा का नार नार विचार परिवार में होगा तो आ सोच लियो कि मैं चाहूं भी यही हो आ तो संभव होगा नहीं थोड़ो सो समझो तो इन्हें करना पड़ा थोड़ो सो इन्हें करना पड़ा
1: समन्वय बिठाना पड़ा सह के बीच में थोड़ा बहुत ऊंच नीच होगा तो भी ना एडजस्ट करना पड़ा
0: और दूसरे एक और के परिवार में जे खेंचातान हो बटा कठोर भी होना चाहिए कोई भी विवाद की जड़ है तो भी ना पहल पोत निस्तारण करना पड़ा चाहे भलाई बा माड़ी हो है नी पांति पुणा

0: मामला में आप देखा जिठ जिठ हालत बिगड़े बटे बटे मोड़ू है जित बिगड़े आप वो समझा देगा भाई वो खेत निभाणु है यो बाड़े में तंद रहनो है घर में तंद रहनो है लड़ता के भी रहे फिर बटा और कोई भी एक भाई अगर उदार है कहले रे भाई तो है अपना वो गई कर जा फिर भी ऊपर सवार और हो जाए के ना के इन्हें तो की जरूरत ही को नहीं यहाँ रडंगो सगड़ो ही ले लिया आप तो ओ जो को माहौल है नी भी माहौल को जो को अनबन थी और जो को परिवार हो नी गांव में रिश्तेदारी में बे और फायदा उठाए कब सी मौको है ए एक आबाना पड़ो फिर वह परिवार है जो को छित्र बितर हुआ और आ एक गांव एक घर की कहानी को नहीं हुई हरेक गांव हरेक घर की कहानी होगी
1: बिल्कुल
0: है ने परिवार नामक संस्था जो की कमजोर होती जाए कमजोर होने का कारण एक तो स्पष्ट जो को सोच है वो को नहीं
1: सही है
0: के अपन रल मिल के रहने पंच हाथ की पंचों आंगली भी बराबर को नहीं हुए और पंचों आंगली सागे रहेगी जो तो मुठ्ठी होगी एक एक आंगली को के मुठी
1: होगा
0: आए तो पहली चीज आ समझनी होगी के पांचों आंगली एक सी तो कोनी पर सगर ही पार पड़ेगी
1: टूटनो कारण हो ये कभी आपस में पूरी ढंग बात कौन करे
0: के बात कौन करे
1: इन बिनो बात सुन के वो ही तय कर लेवे
0: हां
1: हिसाब तो होए के देखो शाम के सारा बेड़ा बैठे एक दूसरे की समस्या हो जगी बतलावे परिवार को भी मतलब होगा
0: बीच सगड़ो ठड्डो है नी संवादहीनता है नी लड़ाई चाहे एक परिवार की कोनी गोरुएंगी हो गवाड़गी हो किन्नेगी हो भी लड़ाई को सगलो ठड्डो कारण तो एक बातचीत का भाव है
1: बिल्कुल
0: थारी मारी लड़ाई होगी मैंने कोई लक्ष्मीकांत जी कहो भाई मोहन भाई थार भी आ कहो मैं मोहन भाई ने पूछी को नहीं था नहीं मना ली मोहन भाई के ऊपर ताज को तेरी यहाँ हिम्मत किया हुई यहाँ कहने की या मैं गांट मान ली के मोहन भाई अच्छा आपने बारा मियाँ कहो मौको आओ जो देखा होगी नी जे लक्ष्मीकांत भाई आ कहो के मोहन भाई यहाँ कहो मैं मोहन भाई कन जाए के मोहन भाई मैं यहाँ सी सुनी तो मेरे बारे माँ कही मोहन भाई के नाम तो कोने कही कौन बताओ बोले कोई बताओ यहाँ सी कही कही के बोले ना कोने कही भले मैं लक्ष्मीकांत भाई को नाम ना बताओ सही पर मोहन भाई से बातचीत होगी जो क्लियर हो गयो के हाँ आ कोने कही
1: सही
0: और ये हो गयी के ना ना कही है चाल अंकवा तो फिर आपा दोनों मिल गए जे लक्ष्मीकांत भाई कहने गया बता भाई वो मोहन भाई खड़े कहो जद जे झूठ बोला जद की हो तो लक्ष्मीकांत भाई भी कोने के बेटा रल गया आस का सागे
1: सही
0: है तो संवाद को जो को स्तर है नहीं अठता नहीं होना चाहिए क्या आपने प्रति पीड़ा है किंगी अपन जाके बात कर लेगा देख भाई यहाँ से सुनियो जिक्र कोई बात है तो बता
1: बिल्कुल
0: तो फिर अगले के है पीड़ा बोल बता दो हाँ भाई
1: सही बात
0: सही सुनियो और मेरा दिक्कत है बता तू एक डबड़ी में बंद हो गया और भी डबड़ी का जगह ढक्कन खुला कोनी जब फिर हवा लागे कोनी हवा नहीं लागे जब फिर थाने बेरो का जो को विस्तार है खिलने को किन्नू है को परिवार फिर सगड़ो पहलो हमलो है और परिवार टूटता जा और परिवार टूटे जा थाने बेरो का आदमी भी टूटे
1: बिल्कुल
0: और रोजाना आप खबर पढ़ा थाने बांध बांध की घरे टाबर निसर गया या टाबर आत्महत्या कर ली या फिर मायता में दुखी हो गए के टाबर हो वो कामयाब को नहीं हुए अब क्या गा लागांगा बांध बांध के जिकी व्याधिया जिकी होने लागी और व्याधिया ने वेड़ो ही है कि परिवार ने आप समझा और बिंग जड़ा आप ढूंढा
1: और देखो आप जड़ सब बात चालू गरीबी के बारे में भी थोड़ा बता दिया के जो को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा 1993 का मैंने एक प्रस्ताव रखियो कि 15 महीने हर साल वो मनायो जाओगो बी के बाद में 1994 से हर साल अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवसीय दिन मनायो जावे और इको देखो मेन महत्व वही है जी आप चर्चा करन लाग रहे हैं कि परिवार के बीच में आपसी समझ जो है।

0: प्यार बढ़े, समानता बढ़े, प्रोत्साहित होए, एक दूसरे ने सहयोग देवे और समस्या को निवारण जद्दी हो। जब आप बात कर रहे हैं, आपस में बात करे, चर्चा करे, चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो, शिक्षा संबंधित हो, या सामाजिक हो, या बच्चा का अधिकार की बात हो, या लैंगिकता के आधार समानता की बात हो, तो विशेष बात आई है जगह पर आप बात करने लाग रहा है। ये दिन न मनायो जावे कि जको परिवार टूट रहा है, जका कमजोर हो रहा है, तो भाई ये चीज पर चर्चा करे और मजबूती दे आपके परिवार ने।
1: आप चीज तो समझनी पड़ेगी कि वो दुख एकला होगा नहीं मोहन भाई, ने मेरे एकला को ने थारे एकला को। परिवार में जो समझे या संयुक्त परिवार की जगह परिभाषा गोजरे भी हर एक को दुख है।
0: बिल्कुल,
1: मैं मेरो परिवार टूट तो देख रहे हूँ, थे थारो परिवार टूट तो देख रहे हो, पड़ोसी आपको परिवार ने टूट तो देख रहे है ना, अपना रिश्तेदार आपके परिवार ने टूटता देख रहे हैं। हर एक व्यक्ति आज के टाइम में, अब अपन बात कर रहे हैं नहीं, अपन जगह सुन रहे हैं, वे भी आपके परिवार का नजर पसार के देख रहे हैं, तो यहाँ लग गए के 80% अपना परिवार जगह टूटता जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, और टूटने को कारण कोई मोटी बात भी कोई
1: बात भी को नहीं, छोटा छोटा स्वार्थ है।
0: तो कोई अगर भी पर चर्चा करे तो वो कोई मुद्दो ही को नहीं हो, छोटी छोटी बातों के ऊपर, परिवार में बच्चा ने लेके होगी, कोई थोड़ी सी जमीन की बात होगी, या कोई पिस्सा ने लेन देन, इसी चीजों के ऊपर और इतना हंसता खेलता परिवार, बड़ा बड़ा परिवार अचानक से अलग हो जाए,
1: अलग हो जाए। और मेरे दोस्त हो उसके, भी मैं अगले दोस्त हो उसके, है ना, सो बात अपन बात दोस्तों के ऊपर बैठ के बात कौन करे।
0: बिल्कुल,
1: अच्छा पहली तो एक और हों तो का जो सगड़ांगा संयुक्त परिवार होता, जैसी व्याधि आई थी तो मेरे लिए गरे इसे संकट आयो, जो कोई एक भलो आदमी हो तो वो आगे कहते रहे क्या मिल लड़ो।
0: बिल्कुल,
1: आओ बैठा कोई रिश्तेदार में मामू पुम्पो कोई मोसो को तो देखो आगे बोल रहा जी नमो करवा जान
0: तो आज ही तक रहा
1: ना,
0: और आगे बिल्कुल बीच में बैठ के पंच आता आगे बात करवा के जता घर परिवार का दूर का रिश्तेदार ने बेमर जी तो बेहद जीता और आगे समझा के जता
1: अब का जगह पे पंच रुपए ही है नहीं बता रहे है होगे के राजनीति हुई तो बर्बाद हो गया बैग मौको है। पांच भाई है तो तीन भाई आपने का नहीं किया हुआ है, आने दोवा ने छिटको है, पांच ही आपने का नहीं है तो दोवा ने छिटको तीन और कुण सो पड़ो है अभी का नहीं आवा आप।
0: सही है,
1: तो वो गलत है, सही है बाको देखे बाद एक अच्छा पेरा लगे कि तीन है दो को कौन बोले एक है तो भी तोड़ो आपने का नहीं तो क्यों आवे है। तो आ तो स्थिति आगे जब फिर समझौता थोड़ी करावेगा भाई, तो आपका नहीं तोड़ना है जगह पक्ष में खड़ा होगा बराड बताओगा क्या जे आगे राड मिटगी तो जो एक हो जाएगा।
0: सही है,
1: ये कौन कौन देना तो फिर अपना फायदा होगा, तो फिर परिवार है जगह टूटता जाए। वह जगह आप भी कोई सोचे के ठेकी में परिवार तोड़ रहे हो तो थाले परिवार की क्या हालत होगी। इसी से लिखिए जो कभी थाले परिवार में हो जब एपेर के गाड़ थोड़ी गल है।
0: सही
1: है नी, तो वो जो को गेट बंद है नी इन गेट हुआ जो परिवार टूट गया। अच्छा दूसरा फिर ये हो गया कि जमानू आर्थिक आ गयो, पहली तो हो के मोटो पहनो मोटो खानो सगली चीज ही अठे तनिया होती के बड़ोड़ो भाई गाम गेड़ो है और छोटे छोटे भाई के टाबरा का रिश्ता करिए आगे बताओ मैं तो तेल टाबरा का फलाने जगह रिश्ता करिए बोले कोई कोई कोई बात नहीं।
0: अरे बात करिए तो बात पर रहता
1: रहता,
0: अरे यहाँ कहता अभी भाई साहब बात करिए तो भाई फाइनल है,
1: भाई फाइनल है मार तो गए नहीं
0: एक बिल्कुल भी किंतु परंतु कौन रहती भाई साहब बात करिए तो
1: करिए
0: बात बड़े ही खत्म।
1: आज की टाइम में स्थिति होगी कोई मास्टर जी बात करिए नहीं टाबर ना कह टाबर ताले स्कूल में गाल दिया बोले क्यों थारे तो चीज भाई जी मेलो टाबर तो बीम कोनी पड़े बीम जागो आज अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस को प्राय कहवांगा कि परिवार एक संगठन है और संगठन भलाई की शोगो हो चाहे वो दोस्तों को संगठन हो चाहे वो ऑफिस को संगठन हो चाहे वो राज्यांगो संगठन हो कि नहीं हो चाहिए ना जो को ने संघ आप तो भारतीय संघ है तो इन मूल की खासियत ही आज की यूनिटी परिवार ही तो आप परिवार ने संगठन ने बचा के रखा बुरे मौकों पर परिवारों उसका नुकसान भी हुए कई बार व्यक्तिगत इतने सदा नुकसान भी हो सके लेकिन भी ज्यादा आप फायदा होगा एवरेज आप काटा नहीं विकल के जमाने में आप कई बार यहाँ मान लो के एवरेज ज्यादा

0: कौन दे कई कम दे कई कम दे अपने ओ सतकाडा ने आपा के लगे टगे एवरेज तो सदे तो परिवार नामक संस्था को आपा एवरेज काडा तो हमेशा हर व्यक्ति मुनाफा में रहेगा
1: बिल्कुल
0: है ना तो ये मुनाफा ने कमावे और परिवार ने बनाए रखने की चेष्टा करे जेठ तानी अगर एकल परिवार है कोई बाप के एक भी बेटो है और बिंगे भी एक ही बेटो एकल परिवार परिस्थितियां बस है तो भी वो चेष्टा करे के वो बुआ गए मामे रह गए नाने रह गए किन्ने सास रह गए किन्ने लगाओ मेरे है गांव का कुटुंबे का जगह दूसरा दादा का परिवार है बहु किन्ने एत रख है और व्यक्ति व्यक्ति जो को जोड़ने की चेष्टा जकी करतो रहे
1: बिल्कुल
0: है ना बात डी मोकली अब एक आप रचना सुनांगा और फिर अब बात ना आगे बताऊंगा
1: बिल्कुल सुनाओ सर।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
1: तो देखो भी आपां एक मीठी सी लोक रचना सुनी और बहुत ही सांतरी अरबी में पहले आपां बात करा। अब देखो टाइम हो गयो बक्त बक्त री बात करनी बढ़ना।
2: बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा

0: तो देखो
1: आगे बात कौन भाई,
0: पुरानी बात बताऊं।
1: अच्छा पुरानी, हाँ।
0: राजा एक,
1: अच्छा
0: अर वो कोई शेर सपाटा पर निकलियो राज्य के दौरा पर यही घूमना फिरना, तो घूमता फिरता एक खेत में एक किसान काम करो भी पर नजर पड़ी, तो सोचो कि चलता चलता किसान ने बतला लिया।
1: अच्छा
0: भाई बड़ा को राजा हो घूम तो फिर तो कोई मिला जगह ना बतला तो जाओ के हाल चाल है के माहौल है के हो रही है, तो चले गयी उतर के खेत में घोड़ा पर अर्जा की किसान ने बतला लियो बात पूछ ली घर परिवार की, फिर पूछ लियो भाई

0: आमदनी कितनी हो जाए।
1: अच्छा
0: भाई खेती बाड़ी को काम करे तो कितनी आमदनी हो जाए, क्या घर परिवार चला रही हो तो किसान को आमदनी तो क्यों जा। आमदनी तो राजा के महाराजा के मंत्रियों का बांको मारे क्या की आमदनी जगह नहीं, फिर भी पूरे दिन लागू रहे की तो ही होगो जगह हो जाए, बस दाल रोटी को जुगाड़ हो जाए सुबह शाम भूख कौन मरा जद के, तो फिर जितो भी तू कमावे खर्चो के हिसाब हो ये बता दे जो किसान को हाँ आ बात काम की पूछी का खर्चो किया हो तो खर्चो यहाँ करूंगा जितनी भी मेरी आमदनी हो ना बिन मैं चार हिस्सा का मैंने बांट ली।
1: अच्छा
0: पहलो हिस्सो तो मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए काम आवे यानी मारपड़ लगा लू
1: ठीक बात है।
0: दूसरो हिस्सो में जो की उधार है बा चुका दू।
1: अच्छा
0: बिम लगा दू भाई उधार दे दू चुका दू नहीं उधार दे दू।
1: अच्छा
0: हाँ और तीसरो हिस्सो है वो मेरा जो कर्ज है वो तारनम लगा दू।
1: अच्छा
0: और चौथो कुआं में गिर दू
1: हाँ
0: तो रद्द सोचो आदमी तकड़ो है चार जगह वो आपकी आय ना बांटर चारो जगह एकदम उकचुक सो समझ को नहीं आया। राजा को और बता के और बता दू पहलो तो मैं मेरी पत्नी दूसरो में उधार दे दू और तीसरो मेरे जगह कर्ज वो उतार दू और चौथो में कुएं
1: में गिर दू।
0: तो राजा कही यानी ढंगू बता मन जगह ढंगू सुनो तो पहलो जगह मैं ईश्वर वो मैं मेरी पत्नी को जो भी खर्चो पानी भी मिला
1: ठीक बात है।
0: दूसरो जगह मेरा बच्चा है वहां पर लगा दू जगह उधार है
1: ठीक बात है
0: वो कदे न कदे चुकाओगा मनो
1: उधार दू माने।
0: तीसरो जगह है वो मेरा माता पिता है जगह मेरा सागर है जगह बाप को मेरे पर
1: कर्ज है
0: बे मन पाले अभी टाइम
1: ठीक बात है
0: जो वो बाप पर लगा दू। और चौथो जगह मैं कुएं में गिरूं वो दान पुण्य का मायने लगा दू जगह वो मेरे कोई साबुन में पुट्ठो मुड़ गया कहते कुछ वो नहीं जड़ दे दिया
1: वो
0: गये मेरे कहने से। राजा को आदमी तू जोरदार है और सवाल भी जोरदार पूछे जवाब भी जोरदार है तो तू एक काम कर आज के बाद में वो सवाल और वो जवाब कोई नहीं बताओगे। राजा ने बढ़िया लगे और राजा की इसी चीज ढूंढ तो रहते और बाद में जाके आपके राजमहल का मैंने जब मैंने पूछा कर तो और मजा लिया कर तो इस चीज में इंटरेस्ट आता भी जब इन्हे इनाम उनूम दिया दे के कहो का आज से तू कोई नहीं बताओगे जब तानी तू सोबर मेरो मुंडो नहीं देख ले जब तानी तू कोई नहीं बताओ। राजन बेरो आपा सोबरी किन क्या मिया अगले दिन राजा जाके आपके राजमहल के मायने सभा लागी। दूसरे दिन जो सभा के मायने सारा मंत्री बे बैठा तो बाकी बा बुद्धि देखनो चाहो कितनी परीक्षा लेते रहो तो छोटे मोटी राजा वांगी तो राजा बाना वही सवाल पूछ लियो क्या भाई एक आदमी हो जो कभी की आमदनी वो चार जगह बांट तो एक खुद पर लगाते और एक वो उधार दे देते और एक कर्ज में चुकाते और एक
1: गिर देता हूं।
0: अभी को मतलब बताओ तो बड़े बाकी जितना जना बैठे बोलियो को निर्बम से एक मंत्री हो जो को दिमाग तेज चाल तो थाली तेरा मुशार आदमी हो।
1: अच्छा
0: जब वो राजा
1: मान लो
0: जब वो राजा ने कहे देखो आज तो मैं कौन बता सकू तड़के था नहीं वो सवाल को जवाब है जो मैं बता दूंगा तो राजा को ठीक है तड़के भी हो जाए। अब वो जे बड़ो बारे निकलियो सभा मु इन बिना पूछा ता चिकरी कर राजा काल कठन कटक गयो तो अब कटे गयो ही है मेरे को नहीं
1: खोज काटो
0: खोज काटो संतरी मंत्री आवाना बताया ना भाई किन गया काल राजा जी जब गया तो आ इन ना गया कटे ही है मेरे को और थोड़ी देर पूछा ता चिकरी थान मेरे को राजा छानो थोड़ी रख
1: छानो खोज पानी में काट ले आदमी
0: मेरे पाड़ लियो
1: काटना चाहिए
0: पानी जगह गयो और बड़े किसान खेत में काम करो बैंगन रुक्यो मंत्री जी ले घोड़ो और पूछ गया किसान गन किसान खेत में लाग रही भी यही काम बिन जाएगी बतला लियो बतलाएगी बिन पूछो कल राजा आयो का आयो के बातचीत हुई का बातचीत ये हुई पूछा गया तेरी आमदनी कितनी और खर्चो कितना जगह तू के बतायो कम बता दियो सन बताना की बात थोड़ी है जगह मानी बता दे कम राजा ने बता दियो सन थोड़ी बताऊ जगह फिर भी मैं भी तो मंत्री हूँ राज्य को मेरी भी कोई इज्जत होती होगी थोड़ी बहुत बता दे जगह बता तो दू पर राजा एक वचन लियो मेरे से कहके कि जब तानी मेरो सोबर मुंडो नहीं देख ले जब तानी तू आ बात कोई नहीं बताओ। मंत्री थोड़ी देर दिमाग लगायो लगाया कि जब भी मैं हाथ दियो और 100 सिक्का काटिया सोना का और भी हर सिक्का के ऊपर
1: राजा की मोहर
0: चेहरो छपेड़ो जब इन्हें कहो देख राजा दिखेगी जगह दिखेगा वो एक बार वो दो बार

0: और तीन बार अरे यहाँ करके सौ बार राजा की शक्ल देख लिए तू
1: अब बता
0: ना बात वो बता दी जय की जय कहीं हम चार जगह बांटू अरे ये खर्च करूं अगले दिन बड़ा अर्जुन दरबार लाग्यो राजा मंत्री ने पूछो हाँ भाई होगी
1: एक दिन की मांगी मोल बता
0: मांगी जगी बता दी अब बात बता वो खड़े होके बता दी राजा ने कभी चार टुकड़ा इस हिसाब से बंटा के एक तो खुद के लिए हो गयो और दूसरो जगह उधार दे वो बच्चा के लिए जो भविष्य में काम हुआ अपना और जो कर्ज के मैंने दे रही हो वो माता पिता के लिए खर्च हो गयो और चौथो जो कुएं में गिर रहा वो दान पुण्य के लिए तो राजा कहो कि तुम भी किसानों मिल के आयो ना जगह मिल के आयो तो वो तन बता दियो गा कि मेरी भी सब बात हुई सोचबाई मुंडो नहीं देख ले कोई नहीं बताओ आ मन पत्तो को नहीं मैं तो गये और वो मन बता दी बाकी थे बिन बुला लियो पूछ
1: आ पूछ लियो
0: पूछ लियो किसान ने बुलायो बुलाई बिन राजा पूछो कभी आपनी बात हुई
1: कोल कोल को पक्को आदमी कोनी राजा के प्रति निष्ठावान कौन तो प्रांत के
0: कि तू मन सोबर नहीं देख ले जब तानी तू जवाब नहीं दे वो कोई ने भी बात को तो मेरी हड़ बात चलेगी जब कहे मैं वचन को पक्को हूँ राजा जी वचन को पक्को है तो तू अभी परसों तो मैं तेरे मिलियो भी बाद में सोबर मिलियो ही
1: दूसरे मिलियो है तो
0: मिलने की बात कौन थे यहाँ कहे सोबर मेरी शक्ल नहीं देख लेना जब तक नहीं बताओगे मैं तारी सोबर शक्ल देखीगा कहीं देखी तो वो सिक्को काट के दिखाई होगा एक ऊपर देखी जब राजा देख के मुस्कुराए वास्तव में बुद्धिमान है
1: मंत्री
0: वो आपको खर्चो चार जगह बांट के व्यवस्थित खर्च करे
1: व्यवस्थित खर्च करे है बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी बात है सब देखो मैं कह के रही अक्कल वह नहीं जको तो देखो कमाओ ही कमाओगो और मध्य मावर्ती ने जीजे दोष है नहीं काप के कर्म ही रेखा न्याय नारी है जको कर्म करेगो जको तो देखो आगे बढ़ेगो और यहाँ नहीं बाकी एक भाई यहाँ हो गयो एक बिया हो गयो मार माने दोष दे के इन यहाँ पाड़ो बिन बिया पाड़ो नहीं फिर भाई बात पाछी परिवार के ऊपर ने तो आप आपकी लकब आप आपकी बात है चलता चलता एक लोक रचना और सुन
0: बिल्कुल सुनाओ

0: हाँ तो देखो अभी अपन मीठी सी लोक रचना सुनी एक सा गई आज को जो कार्यक्रम है वो बस अठाई तक मोहन भाई ने
1: और दुलारा भाई ने
0: देव सीख और करा
1: राम
0: राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाता ही चाले। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। रात्रि के 10 बजे हैं और आइए अब सुनते हैं आपके ईमेल्स पर आधारित राजस्थानी लोकगीतों का फरमाइश।

कार्यक्रम गोरबंद सुनन हारा सगला हितालुआ ने मोकला मोकला राम राम लक्ष्मीकांत ओझा का निशु। कार्यक्रम की पहली फरमाइश सीमा मिश्रा और साथियों री आवाज में आप सुन रहे हो।

सिवमी शायर साथी यदि आवाज में या लोक रचना की फरमाइश माने भेजना रहा हितालु है सुनना चाहे है दत्तरी की फाटा फाटा छत्तीसगढ़ से हीरामणि।

वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोकेलाल वर्मा, और गांव जाखोद से लिख रहे हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। और वार्ड नंबर 47 शीतला चौक वाल्मीकि बस्ती मोचीवाड़ा चूरू से लिखा आ रहा है ताड़ू है वंशीधर पंवार, गोवर्धन पंवार, गुनगुन पंवार, लक्ष्मी नारायण पंवार, हेमंत, मनीष, बेबी, दिनेश, प्रवीण, संजू, सुमन, नानी देवी, बिलाल और पवन कुमार आप लिख रहे हो। सागर सागर हार्दिक नमस्कार लिख रहे हैं ये, और गौरबंद जी को कार्यक्रम है ये लिखा है कि बहुत ही बढ़िया लगा है माने, और राजस्थानी कोई भी राजस्थानी लोकगीत हो सीमा मिश्रा की आवाज़ में बहमत है मेरी लोकरचना सुनाओ और मेल शामिल करो। हेतालू जी का ये लिखा है, लिख रहे गाँव चौधरीवास हरियाणा से, मांगेराम सतोड़, रितु सिंह, हिमानी, शुभम और यश कुमार, और फरमाइश माने विजन आ रहे माँ नर्मदा श्रोता परिवार शिवकोठी ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश से। आप लिखना रहे तालू हो राकेश, पप्पू सेन, श्रीमती निशा सेन, ओम सेन, कुमारी सपना सेन, धर्मेंद्र सेन, मुकेश सेन, आकी मम्मी है द्वारकाबाई सेन और मनीषा बाई चौधरी, बड़वाह से पुष्पेंद्र रावल, फूलचंद अटौदे और राजेश मोरे माने परमेश भेजी है। तो आप सुना कार्यक्रम के मायने या पहली लोक रचना।

नीम की निमोली माने खारी लागे। हालांकि जेठ को महीनो चाल रहे है, निमोली जी की है, अब नीम का पेड़ पर दिखा भी लगी है, थोड़ा दिन में पकाओ भी आओगो और यही जिद खाऊंगा तो खूब ही बढ़िया लगेगी। अब आज की यहाँ पर लोक रचना बार सुन रहे हैं, मिश्री को बाग लगा दे रसिया, नीम की निमोली माने खारी लगे। अब ई लोक रचना के सागे कुछ मेल आपा शामिल करा, ए लिखना रहे तालु है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक अनिल, जयवीर सिंह ठाकुर और कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और आपार मारहरा दरवाजा एटा से लिख रहे नबी हसन अब्बासी, शहनाज नवेद हसन, सुहेल हसन, राशिद वारसी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी और गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं राजेश कुमार, प्रीति, कार्तिक और आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, देविका चौधरी और ग्राम रजोनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से लिखना रहा है ये उदयवान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश और बघेल परिवार का सगला सदस्य है ये। और छोटी बलिया फिल्म सिटी बम्बई से लिख रहा है ये अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले और इमरान अहमद फूल वाले, काफा सेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से लिख रहे हैं आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया मतनशा, आशु अहमद फूल वाले और ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मेहराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार।

0: द्वार से लिख रहा है और दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर यूपी से लिखना रहा है सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति। जेल रोड जलंधर से लिखना रहे रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत, लड्डू, टुक टुक और आका परिवार का सगले सदस्य है। डोडी लोहारा से योगेश, राधिका, डोमीन और आरती एलिखिया है। ग्राम पजोनिया जिला जलोन से लिख रहे सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसोलिया और मलियान। सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम मुस्कान, मास्टर जिव्यम जैन। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे। भाड़ापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी।
1: तू तो मन रूप के धीराणी लागे, प्यारी प्यारी मारी।
0: अब ई लोक रचना का मायने ही आपा यो मेल भी शामिल करा। ए हेतालु है जी का लिखना रहे पदमपुर जिला गंगानगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका। और नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से लिखना रहे महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर और राका परिवार का सगड़ा सदस्य है जिगा की माने मेल लिखकर भेजो है। आ फरमाइश आई है जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। फाजिलका पंजाब से लिखकर आ रहा है भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, तिवंशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आरवी खेड़ा और जीवन बुक गीत। पांडरकड़वा जिला यवतमाल महाराष्ट्र से लिख रहे हैं अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री और धनश्री। बल्लार शाह से लिख रहे सूरज लौंडे, प्राची और एकलव्य। आर्यनगर कोहका बिलाई से लिख रहे उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदली जंघेल। धमदा ग्राम सुखरी कला से लिख रहे हैं अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण। दरबार कॉलोनी सनावत से लिखना रहे किशोर कुमार सांवले, रेखा, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना चारुवी और प्रणव सांवले। मानसी गौरव कविता अनिल अरोड़ा परिवार लिख रहा है मोती नगर नई दिल्ली से। मुकाम पोस्ट फूल चिंचोली तालुका पंडरपुर से लिख रहे जाकिर मुलानी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, आका चाचा चाची और मुलानी परिवार का सगड़ा सदस्य है। ये माने उमेल लिखकर भेजा है और मिसरी को बाग लगा दे रसिया। सीमा मिश्रा और साथे रिगाइड ये आवाज में लोकरचना थी सुनी, एक स्वागत हरा मेल शामिल कर। आगली जी की लोकरचना की फरमाइश आई है, आ फरमाइश भी जेठ के महीने के लिए आई है और जेठ के महीने में संबोधन लेते हुए आलोकृष्णा ते सुनोगा बार एर बहुत ही बढ़िया थावड़ी सी लोकृष्णा है जिका हितालु माने लिखर विजयी की फरमाइश ए लिखा है निकिराम रिवार्ड, संतोष, ममता, कल्पेश, शैलेश रिवार्ड और आप लिख रहे हो गांव से इसवा जिला झुंझुनू से। और कई हितालु है जिका की माने लिखर विजय है कि भाई सीमा मिश्रा और साथी की आवाज में ही मारी लोकृष्णा शामिल कर ले हो। तो आप लिखना रहो गाँव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युद्धव कड़वासरा। सागर सागर लिखा है गोविंदपुरा नीमका थाना राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। अलसी सर झुंझुनू से लिख रहे हैं मंजीत सिंह, अर्शदीप, आकाशदीप, कर्मजीत, सुच्चा सिंह, नरसोत मुख्तियारो, सुरजीत सिंह, नरसोत भजन लाल और विकी। सागर सागर और ए लिखा है अलसी सर से जिको माने मेल भेजा है ए लिख रहे हैं कि बच्चा का जिका है अवकाश हो रहा है और संदेश में देना चाहूँगा कि भाई पढ़ाई के लिए जल्दी ही आओ और पढ़ाई करो। आप बच्चा ने और संदेश देना चाहिए है बहुत बढ़िया हरी बात जिको है टावरा थोड़ी भी पूछ गई है कि छुट्टियां होने आ रही है गर्मियां की पर जल्दी ही जब खत्म हो जाएगी तो माने स्कूल आना है और पढ़ाई करनी है पाछी। सागर सागर मेल आयो अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक। तो आप हितालु जिका की माने मेल भेजा हो अब सुना सीमा मिश्रा और साथियों की आवाज में एक यथावड़ी सी लोक रचना।

जेठ मारो भोलो ढाड़ो जी, जिठानी मारी तेरा ताड़ी जी। सीमा मिश्रा और साथियों की आवाज़ में या लोक रचना बार थे सुनी हो और मारा हेतालु है जिका की लिखर भेजी के लिए फरमाइश। आगे सागर सागर कई हेतालु माने लिखर भेजे है कि भाई कोई भी लोक रचना का मायने थे हमारी मेल शामिल करियो। तो अब बारी आ गई है भाई मारा हेतालुआ की जिका की मेल आज इस कार्यक्रम में अब आपा शामिल करा। आप लिख रहे हो गांव है यो नागर कोहरा, जिला राजा नांद गांव छत्तीसगढ़ से। बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। नागपुर महाराष्ट्र से लिखना रहे कमल साहनी, पिंकी साहनी, अफजल मलिक और संदीप मक्कड़। रामगढ़ कैंट से झारखंड से लिख रहे हैं निपी साहनी और सुनीता साहनी। गांव उगाला, जिला अंबाला, हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और परिवार का सगड़ा सदस्य है ये। और जिला अंबागढ़ चौकी से लिख रहे हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। कुमार खेड़ा सहारनपुर से लिख रहे हैं सैयद मसरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम और पांडर।

गढ़वा जिला यवतमाल से लिख रहा है अनिल बुरांडे और परिवार का सगड़ा सदस्य है ये माने मेल लिखकर भेजो है। और यो मेल मार्कन आयो है ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़ दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़ को। और गांव नथाना पंजाब से लिख रहे हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता। अगला मेल है गांव बांडीवाड़ा फाजिलका पंजाब से क्रियांश बगड़िया ओम रजत बेबी गरिमा बगड़िया। पटिंडा रोड मंडी डबवाली से लिख रहे राजेंद्र नारंग अंजू नारंग मोहित और तानिया नारंग। या मेल मार्कन आइए लिखन आ रहा ये है तालु है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू सुजाता शशांक और सीमा साहू। तेलंगाना निजामाबाद से लिख रहे हैं शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना। जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं मुकेश कश्यप शीतल सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक और बलबीर सिंह। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवांकर निर्मला विशाल नवांकर और मलकापुर से नारायण इंगले राजकुमार खर्चे आशीष मुहेरकर। नेपा नगर मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रकाश शाह कुशल शाह नीति शाह सुरभि अश्विन मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। और वडिंगखेड़ा पंजाब से लिख रहे हैं मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गाव्या मल्होत्रा भाई सुचा सिंह पाठक एम एन अमीर लिखकर भेजी है। अगली फरमाइश आप शुरू कर सा और यह अगली जी की फरमाइश आई है या गोरबंद कार्यक्रम चल रहा है और गोरबंद शीर्षक की ही फरमाइश मरकन आई है सीमा मिश्रा और साथियों की आवाज में कई है तालु मन और भी है जिका सीमा मिश्रा और साथियों की आवाज में ही लोक रचना सुनना चाहे है तो बाकी भी मेल आप ई लोक रचना के साथ आज शामिल करा। यह हितालु है जिकी आ माने फरमाइश गोरबंद की लिखकर भेजा है चंडीगढ़ सिटी से आप लिखकर भेजा हो सतीश अनेजा विमला अनेजा। और एक और फरमाइश आई है सीमा मिश्रा और साथियों की आवाज में ही हालांकि दूसरी लोक रचना थे लिखकर भेजियो पर एक सागर थारी लोक रचना शामिल कर रहे हैं। आप लिख रहे हो फवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिरसिला जिला चुरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा प्राची सोनगरा सोमल सोनगरा कार्तिक सोनगरा और सोनगरा परिवार का सगला सदस्य है ये। और गाँव फ्रांसी जिला हिसार से लिख रहे है राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डूडी एम आर ए लिखकर भेजा है कि भाई फरमाइश सीमा मिश्रा साथियों की आवाज में सुनाओ तो आप सुना कार्यक्रम की या अगली फरमाइश।

तो श्रोतालुओं, कार्यक्रम में बार चाल रही है गोरबंद आकाशवाणी के चूरू केंद्र से, और जगह जगह हितालु बार सुन रहे हैं, नया बार जुड़े हैं रेडियो से, बना कहना चाहे कि ये कार्यक्रम के मायने थे भी माने मेल भेज सको हो, और मारो ईमेल एड्रेस है gorbandchuru@gmail.com। आप आयो कार्यक्रम में गीत सुन रहे हैं गोरबंद को, और सागे सागे अब टेम आ गयो है कि भाई कुछ और मेल ई लोक रचना के सागे शामिल कर लिया जाए। लिखन आ रहा है कलानोर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरिया, जलंधर से लिख रहे हैं। बिडुल तहसील उमरखेड़ महाराष्ट्र से लिख रहे हैं गंगाधर पोपलवाड़, प्रियंका, सम्यक और स्वरित। एकता कॉलोनी रोहतक से लिख रहे सीताराम कागड़ा, बबीता बोट, निखिल और तन्वी बोट। लोको कॉलोनी हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, बरखा निहारिका, योगेंद्र कुमार और नरेंद्र कुमार चिंडालिया। शीतला गेट बीकानेर से लिखना रहा है मोहम्मद शफी खींची, मोहम्मद शरीफ खींची, मोहम्मद सुजैन खींची, नूर फातिमा खींची, मोहम्मद आजम खींची और अकमल हुसैन बियानी, अमजद अली खींची और एम शफी मिस्त्री। गजडुंडवाला उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख और अमन अफरीदी। सागर सागर मेल मारकन आयो है लिखना रहा है पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जाचोरिया, आरजू और गुड्डू। कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बबू डब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा। और ग्राम पीपल लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से लिख रहे दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश। और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी ने मेल आया और आना पर शामिल कराया। एक अंतिम लोक रचना और आप ये कार्यक्रम के माध्यम से बार सुन सिया, और जिका हेतालु है ये माने लिखकर भेजा है सीमा मिश्रा और साथियां दी आवाज में ही, और जेठ को मैनो चाह रहे है जेठ को मैंने कमाई नहीं तावड़ा से संबंधित आलोक रचना माने सुननी चाहिए मार से। ये लिखन आ रहा है पसंद करण आ रहा है रेडियो श्रोता है कृष्ण कुमार डाबी, भूपत कुमार डाबी, राधा तंवर, विक्रम, अर्चना और साक्षी डाबी। आप लिख रहे हो गांव टूकिया, तहसील सिंधरी, जिला बालोतरा, राजस्थान से। सागर सागर मेल मारकन आयो है कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, द्विहा निवादा, जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। और सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा, एस एम जावेद, शगुफ्ता अंजुम, गुमला झारखंड से लिख रहे। और गांव खारिया ढाणी, जिला सिरसा, हरियाणा से लिख रहे सतवीर सिंह बिजारणिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिजारणिया। सागर सागर गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से लिख रहे स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह और गुरलाल सिंह। सागर सागर लिखा है अविराज सिंह। और पहाड़गंज मुल्तानी टांडा से लिखना रहा है अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक माने मेल भेजो है। और कार्यक्रम का मायने यो अंतिम मेल जिसको आप शामिल कर रहे हैं ये लिखना रहा है हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। आप लिख रहे हो रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और विश्वकर्मा परिवार का सगड़ा सदस्य। तो सुना कार्यक्रम का मायने या अंतिम लोक रचना।

तो आज के कार्यक्रम गोरबंद का मायने कई हेताड़ु है जिका के माने मेल भेजो और गर्मी चाल भी रही है, गर्मी का मौसम भी है, लू भी चाल रही है, तावड़ो भी खूब है, आंधी अड़ुओ भी अबार आ रहे है, पर फिर भी सावचेत रहना बहुत जरूरी है क्योंकि लू को थपेड़ो है, लू लागता बार कौन लगे। एक मिनट का मायने अगर आप लू की चपेट में आ गया, तावड़े की चपेट में आ गया तो कई दिन लाग सी ठीक होने का मायने। तो हिवड़े का कहना तो लगे रहो, सागे सागे कैरी को पानी और बहुत सारी चीजें हैं जिकी सभी आप तावड़े से बच सका। हाँ सगड़ा हेताड़ुआ ने यो कहना चाहें जिगा जिगा सुन रहे हो अगला हफ्ता फिर वो जो मिल सा और जिगा जिगा नया हेताड़ु जुड़िया है बाने फिर बोलना चाहें कि भाई मारा कार्यक्रम का मायने थे और जो गोरबंद कार्यक्रम है आकाशवाणी चूरू से यो प्रसारित हो हर शुक्रवार ने रात ने 10 बजे में ले रहा हाँ। तो ई कार्यक्रम का मायने थे माने मेल भेज सको हो और मारो ईमेल एड्रेस है gorbandchuru@gmail.com। आ गोरबंद की जगह स्पेलिंग लिखोगा ना आ है GORBANDH गोरबंद चूरू CHURU gorbandchuru@gmail.com ऐप माने थे मेल भेज सको हो। और आज को यो जिको कार्यक्रम है गोरबंद है जिको कार्यक्रम अब यो अटे तक अब देव सीख और करा राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोरबंद। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 MHz पर। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत, और शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया द्वारा बांसुरी वादन।

0: शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में श्रोता हूँ, अभी आपने सुना पंडित हरि प्रसाद चौरसिया द्वारा बांसुरी वादन। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं और अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार। इन समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुरमुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। हुरमुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा

0: में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटी। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary.